सुप्रभात, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन सोमवार है, शक संवत 1947 के श्रावण मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 अगस्त 2026। सुबह के 7 बजे अब हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: जीवन सौरभ।
1: एक दिन जब ऑफिस के सभी कर्मचारी ऑफिस पहुंचे तो उन्हें दरवाजे पर एक पर्ची चिपकी हुई मिली। उस पर लिखा था, कल उस इंसान की मौत हो गई है जो कंपनी में आपकी प्रगति में बाधक था। उसे श्रद्धांजलि देने के लिए सेमिनार हॉल में एक सभा आयोजित की गई है। ठीक 11 बजे श्रद्धांजलि सभा में सबका उपस्थित होना अपेक्षित है। अपने एक सहकर्मी की मौत की खबर पढ़कर पहले तो सभी दुखी हुए, लेकिन कुछ देर बाद उन सब में ये जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी कि आखिर वो कौन था जो उनकी और कंपनी की प्रगति में बाधक था। 11 बजे सेमिनार हॉल में कर्मचारियों का आना प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे वहां इतनी भीड़ जमा हो गई कि उसे नियंत्रित करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करनी पड़ी। लोगों का आना लगातार जारी था। जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, सेमिनार हॉल में हलचल भी बढ़ती जा रही थी। सबके दिमाग में बस यही चल रहा था, आखिर वो कौन था जो कंपनी में मेरी प्रगति पर लगाम लगाने पर तुला हुआ था। चलो एक तरह से ये अच्छा ही हुआ कि वो मर गया। जैसे ही श्रद्धांजलि सभा प्रारंभ हुई, एक एक करके सभी उत्सुक और जिज्ञासु कर्मचारी कफन के पास जाने लगे। करीब पहुंचकर जैसे ही वे कफन के अंदर झांकते, उनका चेहरा फपक पड़ता, मानो उन्हें सदमा सा लग गया हो। उस कफन के अंदर एक दर्पण रखा हुआ था। जो भी उसमें झांक कर देखता, उसे उसमें अपना ही अक्स नजर आता। उस दर्पण पर एक पर्ची भी चिपकी हुई थी, जिस पर कुछ ऐसा लिखा था जो सबकी आत्मा को झकझोर रहा था। केवल एक ही इंसान आपकी प्रगति में बाधक है, और वो आप खुद हैं। आप ही वो इंसान हैं जो अपने जीवन में क्रांति उत्पन्न कर सकते हैं। आप ही वो इंसान हैं जो अपनी खुशी, अपनी समझ और अपनी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। आप ही वो इंसान हैं जो अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। आपका जीवन नहीं बदलता। जब आपका बॉस बदल जाता है, आपका जीवन नहीं बदलता। जब आपके दोस्त बदल जाते हैं, आपका जीवन नहीं बदलता। जब आपके पार्टनर या साथी बदल जाते हैं, आपका जीवन तब भी नहीं बदलता। जब आप खुद बदल जाते हैं, जब आप अपने खुद के विश्वास की सीमा को लांघकर उसके पार जाते हैं, जब आप ये समझ जाते हैं कि आप और सिर्फ आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं, तब आपका जीवन बदल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता जो आपका किसी के साथ है, वो आपका खुद से है।
0: जीवन सौरभ।

आपने सुना जीवन स्वरूप, जीवन का दर्पण। आइए अब आपको बताते हैं आज की सभा में प्रसारित किए जाने वाले अन्य कार्यक्रम। आपसे ठीक बात सुनेगा कार्यक्रम अक्षनिधि सूक्त 191 और अक्षनिधि के बाद रोजाना की तरह आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। वतन कराग ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 8 बजे। मदन लाल ढींगरा की पुण्यतिथि पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वरों का सुधा अनुपम का।

सुनो कहानी विध्वंस पर। ये कहानी सुनो कहानी कार्यक्रम सुनिए सुबह 8:30 पर। सुबह 9 बजे सुनेगा कार्यक्रम कला कल्लोलिनी सत्यदीप दुबे पर आधारित होगा अच्छा कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वरों के दानिश खान और मनीषा चतुर्वेदी के। हमारा विशेष कार्यक्रम सुनिए सुबह 9:30 पर। पंडित जसराज की पुण्यतिथि पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम।

सुबह 10 बजे का समय होगा रेडियो रिपोर्ट का और उसके बाद सुनेंगे आप परिक्रमा। हिंदोस्तान हमारा ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर। सुभद्रा कुमारी चौहान की जयंती पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम हमारा हिंदोस्तान हमारा। शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम सुनिए सुबह 11 बजे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा नुपुर शर्मा वेणु पिल्लई का। सुबह 11:30 पर सुनिए युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक बने रहिए मेरे यानी रत्नेश के साथ और आनंद लीजिए इन विभिन्न कार्यक्रमों का। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अक्षनिधि छोटे से अंतराल के बाद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 191 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं अपतृण सूर्या, छंद है अनुष्टुप, महापंक्ति और महाब्रहति।
2: कंकतो न कंकतोथो सती न कंकत।

0: तान हन्त्या यत्यथो हन्ति परायति अथो अभग्नति हन्त्यथो पिनष्टि पिंशति। यह औषधि उन अदृश्य जीवों के विष को समाप्त करती है। वह कूटी पीसी जाकर भी विषैले जीवों के विष को नष्ट करती है। शरासह कुशरासो दर्भासह सैरिया उत मौंजा अदृष्टा वैरिणाह सर्वे साकम न्यलिप्सत। इन विषैले जीवों में से कुछ सरकंडों, कुछ कुशाघास, कुछ छोटे सरकंडों में स्थित रहते हैं, कुछ नदी तालाबों के तटों पर पैदा होने वाले घास में, कुछ मूंज और कुछ वीरण नामक घास में छिपे रहते हैं। ये सभी लिपटने वाले होते हैं। नी गावो गोष्ठे असदन्नी मृगासो अविक्षत नी केतवो जनानाम न्यद्रष्टा अलिप्सत। जिस समय गौएं गोष्ठ में और पशु अपने स्थानों में विश्राम करते हैं तथा जब मनुष्य भी थक कर विश्राम करने लगते हैं, ऐसे में अदृश्य रहने वाले ये जीव बाहर निकलते हैं और उन्हें लिपटते हैं। एत उत्ये प्रत्यदृश्यन् प्रदोषम् तस्करा इव अदृष्टा विश्वदृष्टाः प्रतिबुद्धा अभूतन्। ये विषाणु चोरों की तरह रात्रि में दिखाई देते हैं। ये अदृश्य होते हुए भी सबको दिखते हैं, उनका प्रभाव दिखता है। हे मनुष्यों, इनसे सावधान रहो। द्यौर्वह पिता पृथ्वी माता सोमो भ्राता दितिः स्वसा अदृष्टा विश्वदृष्टास्तिष्ठे तेलयता सुकम्। हे विषाणुओं, तुम्हारे पिता दिव्यलोक, जन्मदात्री पृथ्वी, सोम भ्राता रूप और देव माता अदिति भगिनी स्वरूपा हैं। अतः स्वयं अदृश्य रूप होते हुए भी तुम सबको देखने में समर्थ हो। अस्तु, तुम किसी को पीड़ित न करते हुए सुख पूर्वक विचरण करो। ये अंस्या, ये अंग्याह, सूची का ये प्रकंकताः अदृष्टाः किम चनेह वह सर्वे साकम निजस्यत। जो जंतु पीठ के सहारे सरकते हैं, जो पैरों के सहारे चलते हैं, जो सुई के समान छेदते हैं, जो महाविषैले हैं और जो दिखाई नहीं पड़ते, ये सभी विषैले जीव एक साथ हमें कष्ट न पहुंचाएं। उत्पुरस्तात् सूर्य एति विश्वदृष्टो अदृष्टः अदृष्टान् सर्वाञ्जम्भ यंत सर्वाश्च यातुधान्यः। सबके दर्शनीय अदृश्य दोष विकारों के नाशक सूर्यदेव पूर्व दिशा में उदय होते हैं। वे सभी अदृश्य प्राणियों और सभी प्रकार की कुटिल चाल धारण करने वाले राक्षसी तत्वों को दूर करते हुए प्रकट होते हैं।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 191 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सब के मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

मैं अपने बचाव में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजों की कोई भी न्याय व्यवस्था मुझे सजा देने का हक नहीं रखती। इसी वजह से मैंने कोई वकील मुकर्रर करना मुनासिब नहीं समझा। जैसे जर्मनी के खिलाफ लड़ना अंग्रेजों की देशभक्ति है, वैसे ही अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई हमारी देशभक्ति है। मैं अंग्रेजों को 8 करोड़ भारतीयों का हत्यारा मानता हूँ, जिनको पिछले 50 सालों में बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया है। ये शब्द हैं कटघरे में खड़े उस नौजवान के, जिसमें अपने देश की आजादी का जज्बा हिलोरे ले रहा था और जिसका परिवार अंग्रेजों का विश्वास पात्र था। नाम था मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ढींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 को पंजाब प्रांत के हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता सिविल सर्जन थे और अंग्रेजी रंग में पूरी तरह रंगे हुए थे। मदनलाल ढींगरा को भारत की आजादी से संबंधित क्रांति के आरोप में लाहौर के कॉलेज से निकाल दिया गया। परिवार ने मदनलाल से नाता तोड़ लिया। मदनलाल को जीवन यापन के लिए पहले एक क्लर्क के रूप में, फिर एक तांगा चालक के रूप में और अंत में एक कारखाने में श्रमिक के रूप में काम करना पड़ा। कारखाने में श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने यूनियन बनाने की कोशिश की, तो वहां से भी उन्हें निराश होना पड़ा। कुछ दिन उन्होंने मुंबई में काम किया, फिर अपने बड़े भाई की सलाह पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड चले गए। विदेश में रहकर अध्ययन करने के लिए बड़े भाई ने तो सहायता दी ही, इंग्लैंड में कुछ राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं से भी उन्हें आर्थिक मदद मिली।

मदनलाल ढींगरा का क्रांतिकारी सफर लंदन से शुरू हुआ, जब वे लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहे थे। 1905 के आसपास का समय था। मदनलाल इंडिया हाउस में रहते थे, जो उन दिनों भारतीय विद्यार्थियों के राजनीतिक क्रियाकलापों का केंद्र हुआ करता था। ढींगरा राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के

प्रमुख घटनाओं में से एक थी। मदन लाल धींगरा का मानना था कि अंग्रेज प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपया भारत से इंग्लैंड ले जाते हैं और भारत को चूसकर मौज उड़ाते हैं। अंग्रेजी हुकूमत देशवासियों को बिना बात फांसी की सजा और आजीवन कारावास देती है। एक अंग्रेज 100 रुपया पाउंड की नौकरी पर भारत इसलिए भेजा जाता है कि वो 1000 भारतीयों को मौत का निशाना बनाए। अंग्रेजों की ये हवस साम्राज्य विस्तार के साथ साथ भारतीयों के शोषण की दास्तान बयां करती है। जैसे जर्मनी को इंग्लैंड पर कब्जा जमा कर उसे गुलाम बनाने का कोई अधिकार नहीं है, वैसे ही अंग्रेजों को भारत को पराधीनता की बेड़ियों में रखने का कोई अधिकार नहीं।

1 जुलाई 1909 की रात को मदनलाल वाइली से मिले और उनसे कुछ खास बात करने के बहाने उनके समीप पहुंचे। कोल्ड पिस्टल निकालकर कर्जन वाइली पर करीब से 2 गोलियां चलाईं, जिससे वो ढेर हो गया। नस नस में भरे हुए इस क्रांतिकारी के पराक्रम और देश के लिए दी गई कुर्बानी के कारण उन्हें पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उन्होंने शान से कहा कि मैं आपका कानून नहीं मानता। जिस तरह से जर्मन लोगों का ब्रिटेन पर राज करने का कोई अधिकार नहीं, वैसे ही आप लोगों को भी हम पर राज करने का अधिकार कैसे हो सकता है? जब जर्मन को मारकर अंग्रेज अपने को देशभक्त कहता है, तो निश्चित रूप से मैं भी देशभक्त हूँ। मातृभूमि का अपमान करने वालों की हत्या करना एक देशभक्त का पवित्र कर्तव्य है। मैंने वही किया है जो सच्चे देश प्रेमी को करना चाहिए। मुझे मृत्यु की जरा भी परवाह नहीं। अंग्रेजों का काला कानून मुझे फांसी की सजा दे सकता है, पर वो देशभक्ति की भावना को दफन नहीं कर सकता। मेरी फांसी के बाद देश में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग और तेज होगी। इंग्लैंड के ब्रिक्सटन जेल में मदनलाल और सावरकर को रखा गया था। ब्रिटिश हुकूमत ने 17 अगस्त सन 1909 को उन्हें फांसी पर लटका दिया।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूँ सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

वामपम पवित्र प्रतीकों से लेकर साम्राज्य की मुद्रा तक। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिकी पूर्वोत्तर के दलदली इलाकों और तटों पर एक अजीब गरीब बदलाव हो रहा था। यूरोपीय सिक्कों के आगमन से बहुत पहले इस क्षेत्र के मूल निवासी जैसे मुंशी समूह क्वाहोग क्लैम के खोल से मोती बनाते थे। इन मोतियों को वामपम कहा जाता था। ये केवल सजावट की चीजें नहीं थी, ये संधियों को दर्ज करने, कहानियां सुनाने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली पवित्र वस्तुएं थीं। सबसे कीमती गहरे बैंगनी रंग के मोती होते थे, जिन्हें शंख के गहरे हिस्सों से तराशा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इन बैंगनी मोतियों का उत्पादन इंटरैक्टिव डोमेन्स यानी पारस्परिक प्रभुत्व का परिणाम था। पत्थर जैसे सख्त क्वाहोग खोल को नाजुक बेलनाकार मोतियों में तराशने के लिए स्वदेशी कारीगरों को यूरोप से आपूर्ति किए गए धातु के ड्रिल की आवश्यकता थी, जो 1630 के दशक तक हडसन घाटी में आम नहीं हुए थे। इस तकनीकी संलयन ने लॉन्ग आइलैंड के तटीय क्षेत्रों को एक वास्तविक टकसाल में बदल दिया। 1640 के दशक तक डच और अंग्रेजी बसने वालों के लिए एक अजीब आर्थिक वास्तविकता बन गई थी। उपनिवेशों में सोने चांदी की कमी थी और फिर फर, जो कि पशुओं की खाल होती थी, का व्यापार धन का प्राथमिक इंजन था। बसने वालों और स्वदेशी समूहों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए वामपम पसंद की मुद्रा बन गया। ये वो पैसा था जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापार को गति दी, जिसका उपयोग वीवर की खाल से लेकर मक्के और यहाँ तक कि जमीन के विशाल टुकड़ों को खरीदने के लिए किया जाता था। हालांकि डच वेस्ट इंडिया कंपनी और स्वदेशी उत्पादक इस पैसे को दो पूरी तरह से अलग नजरियों से देखते थे। उनके लिए वामपम सामाजिक पारस्परिकता का हिस्सा था, एक उपहार जिसके बदले में दुनिया को संतुलन में रखने के लिए दूसरा उपहार दिया जाना चाहिए। उनके लिए ये वस्तु थी जिसे कर यानी टैक्स के दायरे में लाया और नियंत्रित किया जाना था। सितंबर 1639 में डच डायरेक्टर विलेम कीफ्ट ने नीति में एक कट्टरपंथी बदलाव का प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय मुंशी समूहों पर सुरक्षा शुल्क लगा दिया और डच किलों की लागत वहन करने के लिए वामपम और वीवर की खाल के रूप में ट्रिब्यूट की मांग की। मुंशी इस बात से आक्रोशित थे। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने डचों का स्वागत किया था, उनके संकट के समय उनकी देखभाल की थी और उन्हें अपनी जमीन पर मुफ्त में बसने की अनुमति दी थी। वामपम, जो संतुलन का प्रतीक था, उसे अनचाही सुरक्षा के लिए टैक्स के रूप में मांगना सामाजिक पारस्परिकता की विफलता थी। वामपम के आध्यात्मिक और राजनीतिक मूल्य की यही मौलिक गलतफहमी 1640 में प्रथम डच मुंशी युद्ध का प्राथमिक कारण बनी। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, लॉन्ग आइलैंड के वामपम उत्पादक एक दुखद बंधन में फंस गए। यूरोपीय बाजार अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से एकीकृत होने के कारण उन्हें केवल अपनी जमीन और मोती बनाने के लिए आवश्यक धातु के औजारों तक पहुंच बनाए रखने के लिए डचों को शांति और सैन्य सहायता का वचन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जंगल के वे आध्यात्मिक मोतीशाही अधीनता के हथियार बन चुके थे, जो उन लोगों की बेदखली का रास्ता तय कर रहे थे जिन्होंने उन्हें बनाया था। वामपम उस समय के एक डरावने अवशेष के रूप में आज भी मौजूद हैं। जब
पवित्र प्रतीकों को साम्राज्य की ठंडी मुद्रा के रूप में पुनर्गठित किया गया था।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई।
1: रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो मित्र स्वाति। श्रोताओं, आप प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनो कहानी। कहानीकार हैं प्रख्यात कहानीकार मुंशी प्रेमचंद और कहानी का शीर्षक है विध्वंस।

जिला बनारस में एक गांव है बीरा। वहां एक विधवा वृद्धा संतानहीन गौड़िन रहती थी जिसका नाम था भुनगी। उसके पास एक थुर भी जमीन न थी और न रहने को घर। उसके जीवन का केवल एक ही सहारा था उसका भाड़। गांव के लोग प्रायः एक बेला चबेना या सत्तू पर ही निर्वाह करते हैं, इसीलिए भुनगी के भाड़ पर रोज भीड़ लगी रहती। वो जो कुछ भुनाई करती उसे ही भूनकर या पीसकर खा लेती और भाड़ की ही झोपड़ी के एक कोने में पड़ी रहती। वो सुबह सवेरे उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा सा ढेर लगा रहता। दोपहर के बाद ही उसका भाड़ चलता था, लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथानुसार भाड़ ना चलता या गांव के जमींदार पंडित उदयभान पांडे के दाने भूनने होते, उस दिन उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता। पंडित जी उससे बेकार में दाने ही ना भुनवाते, बल्कि उसके घर का पानी भी उसे भरना पड़ता और कभी कभी तो इस तरह से भाड़ बंद ही रहता। वो पंडित जी के गांव में रहती थी, इसीलिए उन्हें उससे सभी तरह की बेगार लेने का अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता, अन्याय केवल इतना था कि बेगार सूखी लेते थे। उनकी धारणा ये थी कि जब खाने को दिया गया तो भला बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बेलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे से भूखा बांध दे। यदि वो ऐसा नहीं करता तो ये उसकी दयालुता नहीं है, केवल अपने हित की चिंता है। पंडित जी को तो उसकी चिंता ना थी, क्योंकि एक तो भुनगी एक दो दिन भूखी रहने से मर नहीं जाती और यदि देवयोग से मर भी जाती तो उसकी जगह कोई दूसरा गौण बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। पंडित जी की क्या यही कम कृपा थी कि वो भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। इस दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। उसे तो सांस लेने की भी फुर्सत न थी। ग्राहकों की जल्दबाजी कभी कभी उसे झुंझला भी देती। इतने में जमींदार साहब के यहाँ से दो बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुंचे और हुक्म हुआ, भुनगी इन्हें अभी भून दे। भुनगी दोनों टोकरे देखकर सहम उठी। अभी तो दोपहर का समय है और सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भूनना असंभव। घड़ी तो घड़ी और मिल जाते तो एक अठवारे के खाने भर का अनाज हाथ आता। देव से इतना भी ना देखा गया, इन यमदूतों को भेज दिया। अब प्रहर रात तक सैत मैत में भाड़ जलाना होगा। एक निराशा के भाव से उसने दोनों टोकरे ले लिए। तब चपरासी ने उसे डांट कर कहा, सुन देर ना लगाना नहीं तो तुम जानोगी। तब भुनगी ने डरते हुए कहा, तू यहीं बैठ जाओ, जब दाने भुन जाए तो लेकर चले जाना और किसी दूसरे के दानों को छू तो हाथ काट लेना। तब चपरासी ने कहा, बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाने भुन जाने चाहिए। चपरासी तो ये ताकीद करके चलते बने और भुनगी अनाज भूनने में लग गई। लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई हंसी ठिठोली तो नहीं थी। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता। अतेव तीसरा प्रहर हो गया और आधा काम अब भी पूरा ना हुआ। उसे डर लगा कि जमींदार के आदमी आते ही होंगे, आते ही गालियां देंगे मारेंगे, और उसने वेग से हाथ चलाना शुरू कर दिया। रास्ते की ओर देखती जाती और बालू नांद में डालती जाती, यहां तक कि बालू ठंडी हो गई, सेवड़े तक निकलने लगे। उसकी समझ में ना आया लेकिन कि क्या करे, न भूनते बनता था न छोड़ते बनता था। वो सोचने लगी
हे ईश्वर, कैसी विपत्ति है! पंडित जी कौन सी मेरी रोटियां चला देते हैं, कौन मेरे आंसू पोंछ देते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो तब सर पे सवार। इसीलिए ना कि उनकी चार अंगुल धरती से मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल? ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकार पड़े हैं, कितनी बकरियां उजाड़ पड़ी हैं। वहां तो केसर नहीं उपजती, फिर मुझी पर क्यों आठों पहर दोष? कोई बात हुई और यही धमकी, कोई भी बात हुई और यही धमकी कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सर पर कोई होता तो क्या मुझे ये बोछारें सहनी पड़ती? वो इन्हीं विचारों में थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश ध्वनि में कहा, क्योरी दाने भुन गए? तब भुनगी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूँ, देखते नहीं हो क्या? चपरासी बोला, सारा दिन बीत गया और तुझसे इतना सा अनाज ना भूना गया? ये तू दाना भून रही है कि उसे चौपट कर रही है? ये तो बिल्कुल सेवड़े हैं सेवड़े, इनका सत्तू कैसे बनेगा? हमारा सच्चा नाश कर दिया, देख तो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। और परिणाम ये हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया। वो अभागिनी विधवा लाचार हो गई। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा ना रहा। गांव वालों को भी भाड़ के विध्वंस से बहुत ही दुख हुआ। कितने ही घरों में दोपहर को दाना ही ना मयसर होता। लोगों ने जाकर फिर पंडित जी से कहा, पंडित जी बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए। लेकिन पंडित जी, उन्होंने कुछ ध्यान ही ना दिया, वो अपना रौब कैसे घटा सकते थे। तब बुढ़िया से उसके कुछ शुभ चिंतकों ने कहा कि जाकर किसी गांव में क्यों नहीं बस जाती। लेकिन भुनगी का हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं करता। इस गांव में उसने अपने जीवन के 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक कोने पेड़ पत्ते से उसे प्रेम था। जीवन के सुख दुख उसने इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय में वो इसे कैसे त्याग दे भला? ये कल्पना ही उसे संकटमय जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से तो यहाँ का दुख ही उसे प्यारा था। इस तरह एक पूरा माह गुजर गया। सुबह का वक्त था। पंडित उदय भान अपने 2-3 चपरासियों को लेकर लगान वसूल करने निकले। कारिंदों पर तो उन्हें तनिक भी विश्वास नहीं था। नजरानों में हो, डांट बांध में हो या रसूम में, वो किसी अन्य व्यक्ति को शरीक ही नहीं करते। बुढ़िया के भाड़ की ओर ताका तो उनके बदन में आग लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। बुढ़िया बड़े ही वेग से उस पर मिट्टी डाल रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही ये काम हाथ में लिया था और सूर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेश मात्र भी शंका ना थी कि मैं जमींदार के खिलाफ काम कर रही हूं। और क्रोध इतना चिरजीवी हो सकता है, इसका ख्याल भी उसके मन में ना था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना कीना रख सकता है, उसे इसका ध्यान भी ना था। वो स्वभावतः मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती। लेकिन हाँ, हतभागिनी, तूने धूप में ही बाल सफेद किए। सहसा उदयभान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से? भुनगी ने डर कर देखा तो सामने जमींदार खड़ा था। उदयभान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है? तो भुनगी डरते हुए बोले, सब लोग ने कहा, तो ही तो बना रही हूं। उदयभान ने कहा, मैं इसे अभी फिर से खुदवा डालूंगा। ये कहकर उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी। मिट्टी गीली थी तो सब कुछ लेकर बैठ गई। दूसरी ठोकर नांद पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब उसे भी क्रोध आया। कमर सहलाते हुए बोली, महाराज तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का तो डर करो। मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पाओगे? इस चार अंगुल धरती में से क्या सोना निकलेगा? मैं तुम्हारे भले की कहती हूँ, दीन की हाय मत लो,
मेरा रोआ दुखी मत करो। उदयभान ने फिर कहा, अब तो यहाँ फिर भाड़ ना बनाएगी। भुनगी ने इस पर कहा, भाड़ ना बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? तेरे पेट का हमने ठेका तो नहीं लिया है। भुनगी कहने लगी, टहल तो तुम्हारी ही करती हूँ ना, तो खाने कहाँ जाऊं? गांव में रहोगी तो टहल तो करनी पड़ेगी। टहल तो तभी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी। गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। तो उदयभान ने आदेश दिया, तो छोड़कर निकल जा। क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने से असामी काश्तकार बन जाता है। मैं तो इस झोपड़े में ही बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर, उनके बाप दादे परदादे इसी झोपड़ में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। तब उदयभान ने खींच कर कहा, अच्छा तो अब तू कानून भी बगाड़ने लगी। हाथ पैर पड़ती तो मैं एक बार रहने भी देता, लेकिन अब तो तुझे निकाल कर ही दम लूंगा। और चपरासियों से कहा, अभी जाकर इसकी पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखें कैसे भाड़ बनता है। और तब एक ही पल में हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर और आकाश से बातें करने लगी। उसकी लपटें किसी उन्मंत की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। और भुनगी, वो अपने भाड़ के पास उदासीन भाव से खड़ी ये लंका दहन देख रही थी। और तभी अकस्मात वेग से वो उसी अग्नि कुंड में जाकर कूद गई। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत ना हुई कि उस आग के मुंह में जाए। और क्षण मात्र में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। और ये वही पल था जिसमें पवन भी वेग से चलने लगी। साए साए की आवाज, ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ रही थी। भाड़ के समीप किसानों की कई छोटी बड़ी झोपड़ियां सब उस उन्मंत ज्वालाओं का ग्रास बन गई। इस भांति प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ी। सामने पंडित उदयभान के बखार थी और अब ज्वालाएं उस पर झपटी। गांव में हलचल हुई, आग बुझाने की तैयारियां होने लगी। लेकिन पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़की और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच लिया। देखते ही देखते वो भवन उस नौका की भांति जो उन्मत्त तरंगों के बीच छकोरे खा रही हो अग्निसागर में विलीन हो गया। और वो क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्म आवेश में प्रस्फुटित होने लगी, भुनगी के शोकमय विलाप से भी अधिक करुणकारी थी।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कहानी विध्वंस और कहानीकार प्रख्यात लेखक मुंशी प्रेमचंद, और आवाज दे रही थी मैं, यानी आपकी रेडियो मित्र स्वाति। आप दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जॉन अंडरहिल और 1644 का नरसंहार, जब भाड़े के सैनिकों ने लिखी साम्राज्य की पटकथा। 1644 की कड़ाके की ठंड में डच वेस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसे व्यक्ति की ओर रुख किया जिसकी निर्दयी कार्य कुशलता की प्रतिष्ठा अटलांटिक सीमाओं के पार तक फैली हुई थी। कैप्टन जॉन अंडरहिल एक अमेरिकी मर्सिनरी यानी भाड़े का सैनिक थे, जिनका विवाह एक डच महिला से हुआ था। अंडरहिल ने न्यू इंग्लैंड के पेकोट युद्ध के दौरान इतिहास में अपना नाम पहले ही खूनी अक्षरों में दर्ज कर लिया था। वह 1637 में मिस्टिक रिवर पर हुए उस कुख्यात नरसंहार के मुख्य सूत्रधार थे, जहां उनके आदेश पर एक पूरे पेकोट गांव का विनाश कर दिया गया था। अब वे पूर्ण विनाश की वही भूख लेकर प्रथम डच मुंसी युद्ध के दौरान WIC की सेवा में आए। हडसन की घाटी में संघर्ष के ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां डच बसने वाले और मुंसी समूह हत्याओं और प्रतिशोध के अंतहीन चक्र में फंस गए थे। स्वदेशी प्रतिरोध को हमेशा के लिए कुचलने के इरादे से अंडरहिल ने फरवरी 1644 में WIC सैनिकों के एक दल का नेतृत्व करते हुए एक कुख्यात अभियान चलाया। उनका लक्ष्य आधुनिक न्यूयॉर्क के पाउंड रिज के पास स्थित एक किलाबंद टैंक टेकेस गांव था। अंडरहिल की रणनीति अधिकतम आतंक फैलाने के लिए सोची समझी थी। उन्होंने रात के अंधेरे में बस्ती के चारों ओर अपनी सेना तैनात की और उन पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। जब कोने में घिरे इंडियंस ने बाहर आकर लड़ने से इनकार कर दिया तो अंडरहिल ने भीषण अंत का रास्ता चुना। उन्होंने अपने आदमियों को पूरे गांव को आग लगाने का आदेश दिया, ये जानते हुए कि निवासी अपने ही लकड़ी के लॉन्ग हाउस के भीतर फंसे हुए थे। वह दृश्य अकल्पनीय भयावहता का था, क्योंकि ग्रामीणों ने WIC सैनिकों के हाथों मारे जाने के बजाय आग की लपटों में जलकर मरना बेहतर समझा। जब तक आग शांत हुई 500 से अधिक इंडियंस लोग मारे जा चुके थे। ये घटना न्यू नीदरलैंड के इतिहास के सबसे क्रूर अत्याचारों में से एक थी, जिसने 5 साल तक चले पूरे संघर्ष में खोए अनुमानित 1600 स्वदेशी जीवन का लगभग एक तिहाई हिस्सा ले लिया था। अंडरहिल की भाड़े की सेवा का प्रभाव केवल शवों की संख्या तक सीमित नहीं था। उनके अभियान के निचली हडसन घाटी में जनसंख्या की तबाही और स्वदेशी राजनीतिक संरचनाओं के पतन को तेज कर दिया। जीवित बचे मुंसी समूह के लिए डच कंपनी का वह दावा, जो कभी यूरोपीय दस्तावेजों में केवल एक कानूनी कल्पना थी, अब एक भयानक वास्तविकता बन गया। 1650 के दशक तक इंडियन समुदाय के नेता स्टेटन आयलैंड जैसी जगहों के लिए संपत्ति के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे और अपनी जमीन अभी और हमेशा के लिए सौंप रहे थे। अंडरहिल की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कंपनी राज्य का विस्तार केवल व्यापार और संधियों का मामला नहीं था, बल्कि यह अक्सर हिंसा के पेशेवर एजेंटों की विशेषज्ञता पर बनाया गया था। 17वीं शताब्दी के सीमांत क्षेत्रों में एक भाड़े के सैनिक की मशाल किसी भी व्यापारी के बही खाते की तुलना में संप्रभुता के नक्शे को अधिक प्रभावी ढंग से फिर से लिख सकती थी। अंडरहिल जैसे क्रूर पुरुषों के माध्यम से WIC समुद्री घुसपैठियों के एक समूह से बदलकर देश के निर्विवाद मालिक में बदल गई।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: लश्कर और सीधी स्टीमशिप युग का मानवीय ईंधन। 1880 के दशक में एक P&O स्टीमशिप भाप के जहाज के डेक पर खड़े होने की कल्पना कीजिए। डेक के ऊपर का दृश्य अविनाशी आकर्षण और गहरी संतुष्टि से भरा है। अमीर यात्री शामियाने के नीचे आराम कर रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, जबकि जहाज हिंद महासागर के शांत पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे जहाज उन मानसूनी हवाओं से बेपरवाह है जो कभी यहाँ के जीवन को नियंत्रित करती थी। लेकिन पॉलिश किए हुए टी की लकड़ी के नीचे जहाज के दम घोटने वाले भीतरी हिस्सों में एक अलग ही दुनिया मौजूद है। ये लश्करों और सीधियों की दुनिया है। वे गुमनाम समुद्री मजदूर जिन्होंने हिंद महासागर को ब्रिटिश झील बनाना संभव बनाया। जैसे जैसे 19वीं शताब्दी आगे बढ़ी, औद्योगिक क्रांति ने हिंद महासागर को बदल दिया। 1869 में स्वेज नहर के खुलने और भाप तकनीक के उदय का मतलब था कि जहाज अब हवाओं के गुलाम नहीं रहे। हालांकि इन नए यांत्रिकी दिग्गजों को चलाने के लिए भारी मात्रा में मानवीय श्रम की आवश्यकता थी। 1914 तक ब्रिटिश व्यापारिक बेड़े में 51,600 से अधिक लश्कर कार्यरत थे। लश्कर मुख्य रूप से भारतीय नाविक थे, हालांकि वे बेड़े के संचालन के लिए अनिवार्य थे, लेकिन वे एक सख्त नौसैनिक पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर थे। उनका जीवन एशियाटिक आर्टिकल्स द्वारा शासित था, एक कानूनी ढांचा जो बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करता था। इसे विशेष रूप से यूरोपीय नाविकों को दिए जाने वाले अनुबंधों से अलग और कम सुरक्षात्मक बनाया गया था। ये वे डेक हैंड और विशेषज्ञ थे जिन्होंने पारंपरिक डाऊ और जंग जहाजों से निकलकर भाप युग के जटिल रखरखाव और संचालन को संभाला था। जहाज के निचले हिस्से में और भी गहराई पर सीधी काम करते थे। ये अफ्रीकी मजदूर थे जिनमें से कई गुलाम मूल के थे या वे स्वतंत्र लोग थे जिन्होंने बॉम्बे या जंजीबार जैसे बंदरगाहों में नए जीवन की तलाश की थी। उनका काम शायद समुद्र के इतिहास में सबसे कठिन था। वे फायरमैन थे। उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर की तीव्र गर्मी में सीधी अपनी शिफ्ट कोयले को उन दहकती भट्टियों में झोंकने में बिताते थे जो बॉयलरों को चालू रखती थी। ये कमर तोड़ देने वाला और खतरनाक काम था जो ऐसी अंधेरी जगहों पर किया जाता था जहां रोशनी के नाम पर केवल आग की लपटों की चमक होती थी। लश्कर और सीधी की कहानी औद्योगिकरण और विस्थापन की कहानी है, जबकि स्टीमशिप को अक्सर प्रगति के प्रतीक के रूप में सराहा जाता है। जिसने मानसून के अत्याचार पर विजय प्राप्त की वो प्रगति एक विविध बहुजातीय कार्यबल के कंधों पर बनी थी। ये लोग एक नई प्रकार की अफ्रो एशियाई पहचान का प्रतिनिधित्व करते थे, एक ऐसी पहचान जो सुहाली तट के बाजारों या गुजरात के संघों में नहीं बल्कि वैश्विक पूंजीवाद के इंजन के रूप में गढ़ी गई थी। वे पाल वाली प्राचीन दुनिया और कंटेनर जहाजों वाली आधुनिक दुनिया के बीच के सेतु थे। लश्करों और सीधियों के बिना ब्रिटिश झील सूख जाती और 19वीं सदी के हिंद महासागर का आपस में जुड़ा जाल रुक जाता। वे शांत और कालिक से सने हुए नायक थे जिन्होंने उस वैश्वीकृत दुनिया को ऊर्जा दी जिसे हम आज पहचानते हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल।

0: कला कल्लोलिनी, जहां कला लहर बनकर बहती है और कलाकारों की आवाज वक्त की बंदिशों को तोड़कर सदियों तक गूंजती रहती है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे महानायक की जिसने रंगमंच को सिर्फ जिया नहीं बल्कि उसे एक नई परिभाषा दी। आइए मिलकर रुख करते हैं इस कलात्मक सफर की ओर। बहती है जो अनवरत सदियों का इतिहास लिए, रंगों की सुरों की लफ्जों की प्यास लिए, ये भावों की सरिता है, ये सुरमई रागिनी है, कला के अनंत समंदर से उठी ये कला कल्लोलिनी है। कुछ अनकहे किस्से हैं, कुछ जाने पहचाने हैं, कुछ अनकहे किस्से हैं, कुछ जाने पहचाने हैं, ये कभी घुंघरू बनकर छनकती है, कभी चित्र बनकर सजती है, ये कभी नाटक के मंच पर जीवन की हकीकत बनकर गरजती है। समय का पर्दा अब धीरे धीरे सरकने वाला है, इतिहास के पन्नों से एक सितारा मंच पर उतरने वाला है।
1: और आज कला कल्लोलिनी की लहरें हमें बहा कर ले जा रही हैं एक ऐसे समंदर की तरफ जिसने भारतीय रंगमंच को अपनी शर्तों पर जीना सिखाया। एक ऐसा शख्स जिसने नाटक को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा का आत्म साक्षात्कार बना दिया। जी हाँ, आज बात हो रही है पद्म भूषण से सम्मानित आधुनिक भारतीय रंगमंच के कबीर, अक्खड़ फक्कड़ और अद्वितीय नाटककार निर्देशक सत्यदेव दुबे की। आइए शुरू करते हैं उनकी जीवन यात्रा। दोस्तों, समय का पहिया पीछे घूमता है। सन 1936 की 13 जुलाई को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की शांत वादियों में एक बालक ने आंखें खोली। नाम रखा गया सत्यदेव दुबे।
0: घर में कला और संस्कृति का एक अनूठा माहौल पहले से मौजूद था। एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे सत्यदेव के पिता का बिलासपुर में अपना एक स्थानीय सिनेमा हॉल था। उस दौर में जहां आम बच्चों के लिए सिनेमा देखना किसी सपने जैसा होता था, वहीं छोटे सत्यदेव के लिए वह जादुई पर्दा उनका अपना घर था। वो अक्सर अंधेरे हॉल के किसी कोने में बैठ जाते और पर्दे पर चलने वाली कहानियों, लाइव परफॉर्मेंस और इंसानी जज्बातों को बड़े कौतूहल से निहारते। फिल्मों के उन किरदारों को देखकर उनके बाल मन में कहानी कहने और दृश्यों को रचने की समझ अनजाने में ही अपनी जड़ें जमाने लगी थी। लेकिन नियति का खेल भी बड़ा निराला होता है। जिस लड़के को आगे चलकर भारतीय रंगमंच का सबसे बड़ा कप्तान बनना था, उस समय उसका दिल थिएटर के विंग्स में नहीं बल्कि क्रिकेट के हरे मैदान पर धड़कता था। बचपन और शुरुआती लड़कपन के दिनों में सत्यदेव के सिर पर क्रिकेट का भूत सवार था। धूप में तपते हुए हाथ में बल्ला थामे वो गेंद की हर हरकत को वैसे ही भापते थे जैसे आगे चलकर उन्होंने अभिनेताओं के हाव भाव को भापा। वो एक पेशेवर क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखते थे। खेल के मैदान की वो एकाग्रता, अनुशासन और कुछ कर गुजरने की जिद, शायद ये सब उन्होंने क्रिकेट की पिच से ही सीखा था, जिसे उन्होंने बाद में थिएटर के तख्ते पर उतार दिया। किसे पता था कि बिलासपुर के मैदानों पर चौके छक्के लगाने का सपना देखने वाला ये लड़का एक दिन माया नगरी मुंबई की पिच पर उतरकर भारतीय नाटक और सिनेमा की पूरी कप्तानी ही बदल देगा।
1: पिता के सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर से निकलती रोशनी की वो चमकीली लकीर, सिल्वर स्क्रीन पर नाचते हुए किरदार और बिलासपुर की तपती दोपहरी में चमचमाता क्रिकेट का बल्ला, सत्यदेव दुबे का बचपन इन्हीं दिलचस्प रंगों से बुना गया था। बिलासपुर की उस माटी में कुछ अजीब सी कशिश थी। अरपा नदी के किनारे खेलते हुए इस बालक के भीतर शब्दों की एक नदी बहने लगी थी। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई सरकारी ओहदा संभाले, पर नियति ने तो इस बालक के हाथों में रंगमंच की चाबी सौंप रखी थी। दुबे जी का बचपन कोई बहुत ठाट बाट का नहीं था, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी खोज जो उन्हें शांत नहीं बैठने देती थी। वो किताबों में खो जाते, कहानियों के पात्रों को अपने आसपास ढूंढने लगते।
0: बिलासपुर की शांत हवाओं को पीछे छोड़ जब 16-17 साल का वह दुबला पतला लड़का बंबई के खचाखच भरे वीटी स्टेशन पर उतरा तो उसके पास ना तो कोई बड़ा सूटकेस था और ना ही जेब में पैसों की खनक थी, तो बस आंखों में एक अजनबी सी चमक और दिल में कुछ बड़ा कर गुजरने की बेचैनी। सेंट जेवियर्स कॉलेज की ऐतिहासिक इमारत के ऊंचे मेहराबों के नीचे अंग्रेजी साहित्य के पन्नों को पलटते हुए सत्यदेव दुबे के विचारों को नए पंख मिल रहे थे। कॉलेज उनके लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि एक जादुई प्रयोगशाला बन गया था। वहां वह रोज नए विचार गढ़ते थे, लेकिन इस वैचारिक उड़ान के पीछे एक कड़वी हकीकत भी थी, पेट की भूख और खाली जेब। माया नगरी की चमचमाती रोशनियों के बीच इस नौजवान के संघर्ष की कहानी बड़ी बेदर्द मगर बेहद खूबसूरत थी। जब रात को पूरी मुंबई सो जाती तब सत्यदेव के पास सिर छुपाने की कोई छत नहीं होती थी। कई रातें उन्होंने रेलवे स्टेशनों के ठंडे बेंचों पर या फुटपाथ के सन्नाटे में आसमान को चादर बनाकर गुजारी।
1: श्रोताओं, कहते हैं ना कि जौहरी की नजर में हीरा कभी नहीं छुप सकता। कॉलेज के इन्हीं कई दिनों के बीच नियति ने उनका हाथ थाम लिया। उनकी मुलाकात रंगमंच के उस दौर के सबसे बड़े पारखी और थिएटर यूनिट के मसीहा इब्राहिम अलकाजी से हुई। अलकाजी साहब ने भीड़ में खड़े इस अखड़ स्वाभिमानी और बेहद प्रतिभाशाली लड़के की भीतर सुलगती कला की चिंगारी को पहली ही नजर में पहचान लिया। उन्होंने सत्यदेव को तराशना शुरू किया और बस यहीं से फुटपाथ के उस फकीर का भारतीय रंगमंच के सुल्तान बनने का आधिकारिक सफर शुरू हो गया। कहते हैं जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो कोई शोर नहीं होता, बस एक गहरी अनंत खामोशी छा जाती है। मुंबई की उस उमस भरी शाम को भी शायद समय कुछ पल के लिए ठहर गया था। ये सिर्फ दो इंसानों की मुलाकात नहीं थी, ये रंगमंच के अतीत और भविष्य का एक ऐतिहासिक आलिंगन था। एक तरफ थे इब्राहिम अलकाजी, अनुशासन का दूसरा नाम, सलीका, संजीदगी और थिएटर का वो कड़क पैमाना जिसे छूना हर किसी के बस की बात नहीं थी, और दूसरी तरफ बिलासपुर की धूल से उठकर आया वो अल्हड़ नौजवान सत्यदेव दुबे।
0: अलकाजी का अनुशासन और दुबे का अनगणनपन, इन दोनों का मिलन ऐसा था जैसे बहती हुई उफनती नदी को एक मजबूत बांध मिल गया हो। अलकाजी ने सत्यदेव को शब्दों का सलीका सिखाया और सत्यदेव ने अलकाजी के रंगमंच को अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू दी। इब्राहिम अलकाजी 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली भारतीय थिएटर निर्देशकों में से एक थे। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से प्रशिक्षित, उन्होंने भारतीय रंगमंच में भारी आधुनिकता और पेशेवर रवैया पेश किया। उन्होंने मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन और गिरीश कर्नाट के तुगलक जैसे 50 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया। 1962 से 1977 तक एनएसडी के प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में अभिनय और रंगमंच की शिक्षा को एक नई दिशा दी। सत्यदेव दुबे एक बहुमुखी रंगकर्मी, अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। 1950 के दशक के मध्य में मुंबई आकर वे इब्राहिम अलकाजी की थिएटर यूनिट में शामिल हो गए। अब अलकाजी एनएसडी के लिए दिल्ली चले गए तो दुबे ने थिएटर यूनिट की बागडोर संभाली। उन्होंने गिरीश

0: भी किया। इसके अलावा दुबे ने ही धर्मवीर भारती के अंधा युग की क्षमता को पहचाना था और उसे अलकाजी के पास भेजा था। अलकाजी ने 1962 में एनएसडी में इस नाटक का मंचन किया, जिसने भारतीय रंगमंच के इतिहास में एक नया प्रतिमान स्थापित किया। ये मुलाकात महज एक इत्तेफाक नहीं थी, ये नियति का वो गुप्त समझौता था जिसने फुटपाथ पर सोने वाले एक भूखे फकीर को भारतीय रंगमंच का शहंशाह बनाने की पहली इबारत लिखी थी।
1: सत्यदेव दुबे ने जब महसूस किया कि हिंदी रंगमंच अपने मूल लेखन की कमी से जूझ रहा है, तो उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने मराठी, कन्नड़, बंगाली भाषा के सर्वश्रेष्ठ समकालीन नाटकों को चुना और उन्हें हिंदी में इस तरह ढाला कि वे नाटक हिंदी भाषी दर्शकों की अपनी रूह का हिस्सा बन गए। गिरीश कर्नाड के हैवदन और ययाति जैसे कन्नड़ नाटकों को हिंदी मंच पर लाकर उन्होंने पौराणिक कथाओं को आधुनिक संदर्भ दिए, तो वहीं बादल सरकार के बंगाली नाटक एवं इंद्रजीत के जरिए उन्होंने उस दौर के युवाओं के भीतर की सामाजिक छटपटाहट और अकेलेपन को आवाज दी। वे सही मायने में भारतीय भाषाओं के बीच एक मजबूत और जीवंत सांस्कृतिक सेतु बन गए थे। दुबे जी का ये दृढ़ विश्वास था कि नाटक भव्य सेट, कीमती पर्दों या भारी भरकम साजो सामान का मोहताज नहीं होता, बल्कि रंगमंच की असली ताकत तो अभिनेता, शब्द और दर्शकों के बीच का सीधा संवाद है। उन्होंने बेहद कम खर्चे में सिर्फ कुछ कर्टन्स, एक दो कुर्सियां और बेहतरीन लाइट अरेंजमेंट के दम पर ऐसे नाटक तैयार किए जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखते थे। उनके इस मिनिमलिस्टिक प्रयोग का सबसे बड़ा उदाहरण अंधा युग का मंचन था, जहां उन्होंने किसी बंद ऑडिटोरियम में भारी भरकम खर्चों के बजाय बाण गंगा के खुले खंडहरों को अपना सेट बनाया और प्रकृति तथा माहौल को ही अपने नाटक का एक जीवंत हिस्सा बना दिया।
0: गुरु इब्राहिम अलकाजी के जाने के बाद दुबे जी ने थिएटर यूनिट को देश की सबसे जीवंत रंग कार्यशाला में तब्दील कर दिया, जहां नाटक सिर्फ शाम को मंच पर दिखाने के लिए नहीं होते थे, बल्कि रोज अभिनय, आवाज के उतार चढ़ाव और शब्दों के उच्चारण पर कड़ा विमर्श होता था। दुबे जी भाषा और संवाद अदायगी को लेकर बेहद सख्त थे और यदि कोई अभिनेता किसी शब्द का उच्चारण गलत करता तो वे पूरे नाटक का रिहर्सल तब तक रोक देते थे जब तक वह शब्द बिल्कुल शुद्ध ना निकले। उनका यह अक्खड़पन और गुस्सा किसी दुर्भावना से नहीं, बल्कि कला के प्रति उनके अगाध समर्पण से पैदा होता था और यही वजह थी कि उनका कड़ा अनुशासन कलाकारों को मांझकर हीरा बना देता था। सत्यदेव दुबे के लिए रंगमंच कोई व्यवसाय या मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि वह एक गहरी दार्शनिक साधना और आत्मखोज का माध्यम था। उन्होंने विजय तेंदुलकर के नाटक गिधारे और सखाराम बाइंडर जैसे नाटकों का निर्देशन किया, जो समाज के पाखंड, मानवीय क्रूरता और दबी हुई कुंठाओं पर बेहद तीखा प्रहार करते थे। इन प्रयोगधर्मी नाटकों को लेकर उस दौर में बड़े विवाद भी हुए और सेंसरशिप की तलवारें भी चली, लेकिन दुबे जी कभी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं हुए। उनका मानना था कि नाटक का काम दर्शक को केवल सुलाना या बहलाना नहीं, बल्कि उसकी सोई हुई चेतना को झकझोर कर जगाना है। इसलिए वे रंगमंच और कलाकारों की आत्मनिर्भरता के बहुत बड़े पैरोकार थे। वे हमेशा लोगों से इस बात का आग्रह करते थे कि नाटक को कभी मुफ्त या पास पर नहीं, बल्कि हमेशा टिकट खरीद कर ही देखना चाहिए। उनका मानना था कि जब एक दर्शक टिकट खरीदता है तो वह न केवल कला का सम्मान करता है, बल्कि उस नाटक और कलाकार की आजादी को भी जिंदा रखता है।
1: श्रोताओं, सत्यदेव दुबे सिर्फ पर्दे के पीछे से धागे हिलाने वाले सूत्रधार नहीं थे, उनके भीतर एक ऐसा अभिनेता भी छुपा था जो मंच की खुशबू पाते ही जाग उठता था। अक्सर जब थिएटर की रिहर्सल खत्म होती या शाम को दोस्तों और शागिर्दों की महफिल जमती तो लोग उनसे कुछ सुनाने की जिद कर बैठते। दुबे जी मुस्कुराते, उनके चेहरे की कड़कड़ाहट पल भर में गायब हो जाती और उनकी आंखें किसी गहरे दार्शनिक सोच में डूब जाती। वे हमेशा धर्मवीर भारती के अंधा युग के उस पात्र की पंक्तियां सुनाते जो उनके दिल के सबसे करीब था, अश्वत्थामा। एक ऐसा पात्र जो भटक चुका था, जो कुंठित था, लेकिन जिसके भीतर सत्य को जानने की छटपटाहट थी। जब दुबे जी अपनी बुलंद और भारी आवाज में हाथों को हवा में लहराते हुए ये संवाद बोलते तो कमरे में बैठा हर शख्स अपनी सुध-बुध खो बैठता था।
0: यह मेरा नहीं, यह उस युग का अंधापन है जिसमें हम सब जीते हैं, जिसमें हम सब मरते हैं। मैंने तो सिर्फ उस प्रतिशोध को चुना जो इस समूचे ब्रह्मांड के माथे पर लिखा था। अब न कोई न्याय है, न कोई धर्म है, सिर्फ एक अंतहीन रात है और मैं हूं। इन पंक्तियों को बोलते हुए उनकी आवाज में जो दर्द, जो गुस्सा और जो दार्शनिक ठहराव होता था वह सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता था। उन्हें ऐसे जटिल पात्र बहुत पसंद थे जो सफेद या काले नहीं होते थे बल्कि इंसानी स्वभाव के भूरे रंगों को दर्शाते थे। वह कहते थे कि नाटक का असली मजा तब है जब वह आपको अंदर से बेचैन कर दे। आज भी जब थिएटर की पुरानी गलियों में अंधा युग का जिक्र होता है तो लोगों के कानों में अश्वत्थामा के रूप में गूंजती सत्यदेव दुबे की वह बुलंद आवाज आज भी सजीव हो उठती है।
1: इसी वैचारिक आजादी और कड़े अनुशासन की पाठशाला से दुबे जी ने अभिनेताओं की एक ऐसी अद्वितीय पौध तैयार की जो आगे चलकर न केवल थिएटर के स्तंभ बने बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और दिग्गज अभिनेता कहलाए। उनके तराशे हुए हीरो में अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, रत्ना पाठक शाह, अमोल पालेकर और सतीश कौशिक जैसे नाम शामिल थे जिन्होंने अभिनय की परिभाषा ही बदल दी। रंगमंच की इसी धुरी पर काम करते हुए 70 के दशक में सत्यदेव दुबे की मुलाकात मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल से हुई। ये मुलाकात भारतीय समानांतर सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। दोनों की कलात्मक ट्यूनिंग इतनी बेहतरीन थी कि श्याम बेनेगल के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली फिल्मों की आत्मा दुबे जी के शब्द ही बने। दुबे जी ने बेनेगल की कालजयी त्रयी, अंकुर, निशांत और मंथन के संवाद और पटकथा लिखी जिन्होंने भारतीय सिनेमा को यथार्थवाद का एक नया चेहरा दिया। इसके बाद 1977 में आई फिल्म भूमिका के लिए तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। उन्होंने बेनेगल की फिल्म कलयुग की पटकथा पर भी काम किया था।
0: शब्दों का जादू बिखेरने के साथ साथ दुबे जी ने पर्दे पर अपनी अदाकारी का हुनर भी दिखाया। उन्होंने श्याम बेनेगल की ही फिल्म निशांत में एक पुजारी की बेहद जीवंत और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने गोविंद निहलानी की मशहूर फिल्म आक्रोश में भी अभिनय किया। इतना ही नहीं, कला सिनेमा से इतर उन्होंने मुख्यधारा के सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने साईं पराजपे की बेहद लोकप्रिय फिल्म चश्मे बद्दूर के तीखे और मजेदार संवाद लिखे और निर्देशक उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे की पटकथा भी तैयार की। सत्यदेव दुबे ने श्याम बेनेगल की टीवी सीरियल भारत एक खोज में चाणक्य और फिल्म निशांत में पुजारी की भूमिका निभाई। पटकथा लेखन से लेकर कैमरे के सामने अभिनय करने तक सिनेमा का ये पूरा सफर उनके बहुमुखी और अक्खड़ कलाकार होने का सबसे बड़ा प्रमाण था। मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल सत्यदेव दुबे को भारतीय कला जगत का एक अद्वितीय और अपरिहार्य स्तंभ मानते थे। वे अक्सर दुबे जी के बारे में कुछ बेहद खास बातें कहा करते थे। बेनेगल अक्सर तारीफ करते थे कि दुबे जी के पास अभिनेताओं को तराशने की एक जादुई कला थी। अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी जैसे दिग्गज कलाकारों को बेनेगल ने अपनी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं दी। वे सब दुबे जी की थिएटर वर्कशॉप की ही देन थे। बेनेगल मानते थे कि दुबे जी जिस अभिनेता पर हाथ रख देते थे वे सोना बन जाता था। श्याम बेनेगल दुबे जी के अक्खड़पन और उनकी फकीरी के मुरीद थे। वे कहते थे कि दुबे एक ऐसे विरल कलाकार थे जिन्होंने कभी पैसों या शोहरत के लिए अपनी कला से समझौता नहीं किया। वे सिनेमा में काम जरूर करते थे लेकिन उनका दिल हमेशा थिएटर के लिए ही धड़कता था। सीधे शब्दों में कहें तो श्याम बेनेगल के लिए सत्यदेव दुबे सिर्फ एक सह लेखक या दोस्त नहीं थे बल्कि वे उन्हें एक ऐसा क्रिएटिव पार्टनर और थिएटर गुरु मानते थे जिसने भारतीय सिनेमा और रंगमंच को सच बोलना सिखाया।
1: श्रोताओं, वो पूरी तरह से एक फकीर और सन्यासी की तरह जिए जिनका एकमात्र धर्म और परिवार सिर्फ और सिर्फ रंगमंच ही था। दुबे जी ने जीवन के आखिरी पड़ाव तक नए लड़कों और लड़कियों को तलाशने और उन्हें तराशने का काम कभी बंद नहीं किया। मुंबई का प्रसिद्ध पृथ्वी थिएटर उनका दूसरा घर बन चुका था। वे घंटों वहां के कैफे में ही बैठे रहते थे जहां कोई भी नया लड़का स्क्रिप्ट लेकर उनके पास आ सकता था। वो बिना किसी फीस के सिर्फ चाय की चुस्कियों पर नए निर्देशकों को नाटक की बारीकियां सिखाते थे। उन्होंने हमेशा नए और युवा नाटककारों को मंच दिया क्योंकि उनका मानना था कि थिएटर को जिंदा रखने के लिए नए खून और नए विचार का आना बेहद जरूरी है।
0: थिएटर और फिल्मों के अलावा दुबे जी ने जन माध्यमों की ताकत को भी बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने धर्मवीर भारती के अंधा युग को न केवल मंच पर उतारा बल्कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी उसके कई प्रयोग किए। उन्होंने ध्वनि और संवाद के उतार चढ़ाव का ऐसा ताना बाना बुना कि बिना दृश्यों के भी सिर्फ आवाज के दम पर दर्शकों के सामने महाभारत के युद्ध का सन्नाटा सजीव हो उठता था। रेडियो नाटक के शिल्प को आधुनिक बनाने में भी उनका यह योगदान अतुलनीय है। वे कभी विवादों से डरे नहीं बल्कि वे मानते थे कि अगर कला समाज में हलचल ना पैदा करे तो वो कला ही नहीं है।
1: श्रोताओं, भारतीय रंगमंच और कला जगत में सत्यदेव दुबे के अद्वितीय क्रांतिकारी और युगांतकारी योगदान के लिए उन्हें समय समय पर देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। उनकी इस अनूठी नाट्य साधना और कला के प्रति अटूट समर्पण को सर्वोच्च सम्मान देते हुए साल 1971 में देश की सर्वोच्च कला संस्था द्वारा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद भारतीय समानांतर सिनेमा को अपनी लेखनी और संवादों से एक नया और यथार्थवादी धरातल देने के लिए साल 1977 में आई उनकी प्रसिद्ध फिल्म भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके जीवन भर के संघर्ष, अमूल्य योगदान और एक महान मेंटोर के रूप में उनके कद को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें बेहद प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से भी विभूषित किया। आखिरकार उनके इसी फकीराना जज्बे और कलात्मक महानता को सलाम करते हुए साल 2011 में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से अलंकृत किया जो उनके जीवन की कला यात्रा पर राष्ट्र की ओर से एक गौरवशाली मोहर थी।
0: दुबे जी मुंबई के एक बेहद साधारण से किराए के कमरे में किताबों और नाटकों की स्क्रिप्ट के बीच अपनी फकीरी में मस्त थे। वे अक्सर अकेले ही मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करते या पृथ्वी थिएटर के बाहर एक कप चाय हाथ में थामे घंटों बैठे रहते। उनके जीवन में ना तो पैसों का लालच था और ना ही किसी सांसारिक सुख की चाह। उनका कोई पारंपरिक परिवार नहीं था क्योंकि उन्होंने अपनी कला को ही अपनी संतान और अपना संसार मान लिया था। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, तो उन्होंने हंसकर कहा था, जिसके पास शब्दों का मेला हो और मंच की रोशनी हो वो भला अकेला कैसे हो सकता है। उनका ये निश्चल समर्पण दिखाता है कि वे सिर्फ नाटक करते नहीं थे, वे खुद में एक जीवंत नाटक थे। सत्यदेव दुबे ने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपनी कलात्मक ऊर्जा और जीवंतता को बनाए रखा, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव पर उनका शरीर थकने लगा था। साल 2011 के सितंबर महीने में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसके बाद वे कोमा में चले गए। इसके बाद अगले कुछ महीनों तक मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चलता रहा। आखिरकार अपनी बीमारी से एक लंबा और संजीदा संघर्ष लड़ने के बाद 25 दिसंबर 2011 को 75 वर्ष की आयु में मुंबई के टोपीवाला राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज और BYL नायर चैरिटेबल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन का कारण लंबे समय से चल रही बीमारी और दिल का दौरा पड़ना था। उनके जाने से भारतीय रंगमंच का एक बेहद प्रखर, निडर और स्वर्णिम युग हमेशा के लिए समाप्त हो गया, लेकिन अपनी कला और विचारों के रूप में वे आज भी हर रंगकर्मी की चेतना में जीवित हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, हिंदी रंगमंच के दिग्गज सत्यदेव दुबे अब हमारे बीच नहीं रहे। रंगमंच के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता अद्भुत थी। यह एक बड़ी क्षति है, उनकी आत्मा को शांति मिले। फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने कहा, थिएटर जगत के दिग्गज सत्यदेव दुबे का देहांत हो गया। साथ साथ घूमने फिरने के दिनों की प्यारी यादें मुझे घेर लेती हैं। अलविदा दुबे जी, ढेर सारा प्यार। निर्देशक केन घोष ने कहा, सत्यदेव दुबे के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उन्होंने बड़ी विनम्रता से इश्क विश्क की नई कास्ट के साथ एक एक्टिंग वर्कशॉप आयोजित की थी। शांता गोखले उन्हें याद करते हुए कहती हैं
1: कि सत्यदेव दुबे को बहस छेड़ना बहुत पसंद था और उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब वो युवा रंगमंच कलाकारों को अपने विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने के बजाय प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित कर पाते थे। आधी सदी से भी अधिक समय में उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी में 100 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया, युवा नाटककारों की खोज की और उन्हें अपनी रचनाओं को फिर से लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही अभिनेताओं की कई पीढ़ियों को प्रशिक्षित भी किया। आप हमेशा कलाकारों और अभिनेताओं के दिलों में मशाल बनकर जलते रहेंगे। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने सत्यदेव दुबे को अपना थिएटर गुरु माना है। वो अक्सर याद करते हैं कि कैसे दुबे जी ने उन्हें मंच पर बिना डरे संवाद बोलना और अपनी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करना सिखाया। उन्होंने दुबे जी को एक निडर, स्पष्टवादी और रंगमंच के प्रति जुनूनी व्यक्ति बताया।
0: सत्यदेव दुबे अक्सर कहा करते थे कि एक सच्चे अभिनेता का काम केवल संवाद बोलना या चेहरे पर मुखौटा लगाना नहीं है। उनके लिए अभिनय एक आत्मसमर्पण था। वे कहते थे, एक अच्छा अभिनेता वह नहीं है जो मंच पर आकर खुद को दिखाए, बल्कि वह है जो मंच पर आकर अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा दे और उस पात्र को अपने भीतर जीने दे। अभिनेता का शरीर और उसकी आवाज सिर्फ एक माध्यम है, असली खेल तो उसकी आत्मा की ईमानदारी का है। सत्यदेव दुबे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारतीय कला जगत उनके जिक्र के बिना हमेशा अधूरा रहेगा। वे एक ऐसे फकीर थे जिन्होंने कभी महलों की चाह नहीं की, क्योंकि उनके हिस्से में मंच की वो जादुई रोशनी थी जो इतिहास बदल देती है। उन्होंने सिनेमा को दिग्गज अभिनेता और कालजयी शब्द दिए और हमें सिखाया कि कला कभी मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज को झकझोरने के लिए होती है। तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में आज इतना ही। अगले भाग में हम आपको फिर ऐसे ही महान शख्सियत से रूबरू कराएंगे। रंगमंच के कबीर फिल्मकार और नाटककार सत्यदेव दुबे जी पर चर्चा आपको पसंद आई होगी। अब समय है आपसे विदा लेने का। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी और मैं था दानिश, और लेखन दीपक नेमा।
1: आपके लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मैंने यानी मनीषा,
0: और मैं दानिश। नमस्कार।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।

जी हाँ, जब जिक्र पंडित जसराज का हो और उनके गायन का, तो हम जब उनको सुनते हैं तो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं।

श्रोताओं, पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 में हिसार में हुआ और इस फानी दुनिया को उन्होंने अलविदा कहा 17 अगस्त 2020 में।

1962 में पंडित जसराज का विवाह हुआ मधुरा शांताराम जी से, जो बेटी रही मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक वी शांताराम जी की।

जिन अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया उनमें प्रमुख हैं 1975 में पद्मश्री, 1987 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, 1990 में पद्म भूषण और सन 2000 में उन्हें सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: प्रारंभिक आधुनिक समुद्रों की भयावहता, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वीओसी का क्रूर अनुशासन। प्रारंभिक आधुनिक समुद्रों की यात्रा अकल्पनीय आतंक की दुनिया में उतरने जैसी थी, जहां मृत्यु अपने सबसे विभत्स और भयानक रूपों में आती थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों में, जैसे कि एन्क्यूजेन या फॉर्च्यून, जो जापान के मार्गों पर चलते थे, वहां का वातावरण पेचिश, अत्यधिक भीड़ और उल्टी की निरंतर दुर्गंध का एक अस्थिर मिश्रण था। इन तैरते हुए नरक तुल्य जहाजों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कंपनी अनुशासन की एक ऐसी प्रणाली पर निर्भर थी जो औसत नाविक को पूर्ण समर्पण के लिए डराने के लिए डिजाइन की गई थी। वीओसी के लिए एक नाविक आज्ञाकारी दास से अधिक कुछ नहीं था। किसी श्रेष्ठ के आदेश के प्रति थोड़ी सी भी अनिच्छा या बुदबुदाहट के संकेत पर एक नाविक को नियमित रूप से रस्सी से पीटा और धमकाया जाता था। हालांकि जो लोग अधिक गंभीर अपराध करते थे, उनके लिए डच नौसैनिक कानून की भीषण रचनात्मकता ने कहीं अधिक विभत्स रूप ले लिया था। गंभीर दंडों में सबसे आम था यार्ड आर्म से गिराना। उदाहरण के लिए, एन्क्यूजेन पर यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत शराब लेते पकड़ा जाता तो उसे उसके हाथ बांधकर रिंगिंग में ऊपर खींच लिया जाता और फिर 40 या 50 फीट नीचे गिरा दिया जाता था। रस्सी के अंत में लगने वाला अचानक झटका पीड़ित के कंधों को उखाड़ने या तोड़ने के लिए काफी था, जिसके बाद उसे कोड़े मारने के लिए मस्तूल से बांध दिया जाता था। चाकूबाजी या झगड़े में शामिल लोगों के लिए सजा और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अपराधी को अपना हाथ जहाज के मस्तूल के खिलाफ रखने के लिए मजबूर किया जाता था और उसकी हथेली के केंद्र से एक तेज चाकू पार कर दिया जाता था, जिससे वह लकड़ी से चिपक जाता था। अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए नाविक को चाकू को अपने ही हाथ में खींचकर बाहर निकालना पड़ता था, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उसे अपने ही मांस को काटना और टेंडन को अलग करना होता था। नौसैनिक अनुशासन की सबसे निचला स्तर कील हॉलिंग था। दोषी व्यक्ति को वजन से बांधकर ओवरबोर्ड फेंक दिया जाता था और एक रस्सी द्वारा जहाज के नीचे से दूसरी तरफ खींच लिया जाता था। अंधेरे पानी के नीचे खींचे जाते समय नाविक को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, डूबने की उच्च संभावना और जहाज के तल पर जमे सत राग्र और तीखे शंख जो आरी की तरह काम करते थे। इसका परिणाम अक्सर पीड़ित के शरीर से मांस का खून से लथपथ पट्टियों के रूप में उखड़ जाना होता था। जापान में भर्ती किए गए सैनिकों और भाड़े के लड़ाकों के लिए यह तलवार की दवा ही एकमात्र ऐसा अधिकार था जिसका वीओसी का मानना था कि वे सम्मान करते हैं। सतर्कता में मामूली चूक का अंत भी अंतिम होता था। पेड्रो नामक एक सैनिक को केवल इसलिए फायरिंग स्क्वाड द्वारा मार दिया गया क्योंकि वह किले की दीवारों पर पहरा देते समय सोता हुआ पाया गया था। टॉर्चर और जुर्माने की इस व्यापक प्रणाली ने सुनिश्चित किया कि चाहे वह एम्स्टर्डम का कोई गरीब नाविक हो या हीरोडो का कोई साहसी व्यक्ति, वह कंपनी राज्य का एक आज्ञाकारी सेवक बना रहे जो रस्सियों ब्लेड के निरंतर प्रत्यक्ष भय से बंधा हुआ था।
2: आपने ट्यून किया 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। वक्त हो चला है रेडियो रिपोर्ट का।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन सभागार में, जहां स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व कार्यक्रम के तहत प्रस्तुति हुई प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति की।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन सभागार में।
1: जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का।
2: प्यार भरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। ये मेरे सौभाग्य कि आज ऐसे मीठे वाले दिन में मुझे गाने का मौका मिल रहा है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब साल की शुरुआत होती है और 15 अगस्त को मुझे गाने का मौका मिलता है, मुझे लगता है कि ईश्वर ने बहुत मेरे पर कृपा की। और आप जैसे लोग जो भोपाल हम जानते हैं, भोपाल इतना कल्चरली कॉन्शियस है, यहाँ पे शास्त्रीय संगीत की इतना प्रचार है इस स्टेट में और भोपाल में, आज के दिन मैं यहाँ गा रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर टुडे। मैं सबसे पहला जो गीत गा रही हूँ ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत निर्देशन में मैं गा रही हूँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहला गाना दिया था और ये मैंने फिल्म भैरवी के लिए गाया, जिसके शब्द, बहुत सुंदर शब्द अमित खन्ना साहब ने लिखा है। इसी गीत से शुरुआत कर रही हूँ।

0: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: ये थी रेडियो रिपोर्ट आजादी का महापर्व की। फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए वक्त परिक्रमा का सुनते हैं परिक्रमा।

सबसे पहले बात आज के कार्यक्रम की। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी एवं संस्कृति विभाग की ओर से जश्न आज़ादी मुशायरा का आयोजन 17 अगस्त यानी आज रविंद्र भवन के अंजनी सभागार में किया जाएगा। मुशायरे में देश के विभिन्न शहरों से आए शायर अपनी रचनाएं पेश करेंगे। शामिल होने वालों में विजेंद्र परवाज, फारूक अंजुम, नौमान शोक, मनीष शुक्ला, इरफान जाफरी, साजिद रिजवी, डॉक्टर परवीन कैफ, प्रोफेसर रहमान मुसव्विर, डॉक्टर भावना श्रीवास्तव, शायान कुरैशी और अनुराग अर्श शामिल हैं।

वहीं रविन्द्र भवन के हंसध्वनि सभागार में 15 अगस्त शनिवार की शाम जब कविता कृष्णमूर्ति ने सुर छेड़े तो उन्हें सुनने के लिए दर्शकों की दीवानगी साफ नजर आई। 1500 लोगों की क्षमता वाले सभागार में भीड़ इतनी बढ़ गई कि करीब 500-600 दर्शकों को जमीन पर बैठना पड़ा। फिर भी बड़ी संख्या में लोग बाहर रह गए, जिस पर आयोजकों को बाहर स्क्रीन लगानी पड़ी। कविता ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय के बाद हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए प्रस्तुत किया। फिर दिल ने कहा चुपके से, हवा हवाई आज मैं ऊपर आसमां नीचे, निम्बोड़ा निम्बोड़ा तू हीरे बोले चूड़ियां, मेरा पिया घर आया, और डोला रे डोला जैसे गीत कविता कृष्णमूर्ति से लाइव सुनना लोगों के लिए यादगार हो गया। उनके साथ जॉन कुमार सानू ने भी मंच साझा किया।

संस्कार सुधा फाउंडेशन की ओर से सतरंगी सावन सीजन 5 का आयोजन किया गया। मानस भवन में हुए इस दो दिनी आयोजन के आखिरी दिन रविवार को देशभक्ति गीतों पर नृत्य प्रतियोगिता रखी गई। तीज क्वीन बनने के लिए एमपी के अलग अलग शहरों से आई होम मेकर्स के बीच कॉम्पिटिशन हुआ। इसमें 30 महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में रैंप वॉक किया।

क्या कभी आपने सोचा है कि किसी म्यूजियम की गैलरी में रखी मिट्टी की पुरानी मटकी या पारंपरिक कलाकृति हमसे क्या बात करती है? संग्रहालय सिर्फ अतीत की धूल जमी चीजों को सजाने का शोकेश नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली, पहचान और सामाजिक रिश्तों की सबसे जीवंत कहानी है। इस सोच के साथ अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप की रविवार से शुरुआत हुई। अबूधाबी से लेकर कुम्हारपुरा तक देश विदेश के अलग अलग कोनों से 22 क्यूरेटर और शोधकर्ताओं ने हिस्सा लिया, ऑनलाइन और ऑफलाइन भागीदारी की।

मानव संग्रहालय के बाद अब बात ट्राइबल म्यूजियम की। कलाकारों के भावों में संघर्ष और वियोग देखने को मिला। मौका था ट्राइबल म्यूजियम में नाट्य मंचन का। रविवार को संभावना के तहत इसका आयोजन किया गया, जहां कुंती लीला की प्रस्तुति से दर्शकों ने पौराणिक कथा के भाव महसूस किए। ट्राइबल म्यूजियम में रविवार को लोक संस्कृति और पौराणिक रंगमंच का साक्षी बना। मणिपुर के प्रख्यात रंगकर्मी डॉक्टर सिनाम बासु सिंह के निर्देशन में पेश इस नाट्य में महाभारत के आख्यानों के जरिए कुंती के जीवन संघर्ष और पुत्र वियोग की मार्मिक गाथा को प्रस्तुत किया गया। इस नाट्य शैली में कुंती के किरदार के माध्यम से दिखाया गया कि किस तरह विपरीत परिस्थितियों और अपनों के विछोह के बीच भी कर्तव्य पथ पर अडिग रहा जाता है।

चित्रांश सुर सरिता ग्रुप ने स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के जज्बे के साथ संगीतमयी कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ हरियाली तीज का अनोखा संगम देखने को मिला। गीतों और विचारों के जरिए प्रकृति, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति के प्रति सदस्यों ने समाज की जिम्मेदारी को व्यक्त किया।

आकार वीडियोटेक की ओर से रविवार को आयोजित आकार फिल्मोत्सव 2026 की स्क्रीनिंग NITTR के सभागार में की गई। इस मौके पर तीन फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई, जिसमें लताज किचन, स्टेशन वाली चाय और पिंडी दे गुरुचरण हैं।

वहीं बोट क्लब पर साइबर क्राइम के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए द आर्ट रिवॉल्यूशन की ओर से नुक्कड़ नाटक साइबर चक्रव्यूह खेला गया, जिसमें 5वीं से 9वीं क्लास के बच्चों ने अभिनय किया। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी साझा करने, बैंकिंग फ्रॉड, सोशल मीडिया से जुड़े साइबर अपराध और डिजिटल माध्यमों से के सुरक्षित इस्तेमाल जैसे विषयों को प्रभावशाली ढंग से रखा।

0: आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को कपूरथला के राज परिवार में हुआ था। उनकी प्रबल इच्छा थी कि वे भारत को विदेशी सत्ता से मुक्त होते हुए देखें और इस दिशा में कार्य करें। उनकी इस इच्छा को बढ़ावा दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोखले जी की मार्फत ही वे गांधी जी से मिली। अपने माता पिता के स्वर्गवास के बाद उन्होंने गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में भाग लेना शुरू कर दिया। गांधी जी के निर्देशन में उन्होंने पंजाब के बुनकर संघों को व्यवस्थित करने, जालंधर जिले के ग्राम उद्योगों को पुनर्गठित करने, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, निरक्षरता जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और स्त्रियों की दशा सुधारने जैसे कार्यों को बखूबी अंजाम दिया। गांधी जी की प्रेरणा से वे कांग्रेस में शामिल हुईं और नमक सत्याग्रह में भाग लेकर गिरफ्तार हुईं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और कारावास की यातनाएं भी सही। भारत के स्वतंत्र होने पर वे देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री बने। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना का श्रेय भी राजकुमारी अमृत कौर को ही जाता है। उनका मानना था कि भारत की प्रगति बालकों के चरित्र निर्माण और उत्थान से संभव है। एक सक्रिय और समर्पित राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता का जीवन जीने के बाद 6 फरवरी 1964 को नई दिल्ली में उनका देहांत हो गया।
2: आज शाम 7 बजे बाशोक में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन है। अधिक से अधिक संख्या में आए और लाभ उठाए। आज शाम 7 बजे बाशोक में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन है।
3: अरे नमस्कार राम भरोसे काका।
4: नमस्कार नमस्कार भैया, क्या बात है? आज दोनों अकेले ही? साथी लोग कहाँ हैं?
3: वो सब आपकी दुकान पर है। हम तो न्यूज़पेपर लेने चले आए थे। कहाँ से आ रहे हैं काका?
4: मैं दिल्ली से लौट रहा हूँ।
3: इसीलिए 2 दिन से आप दुकान पर दिखे नहीं। पर ये अचानक दिल्ली जाने का कार्यक्रम कैसे बन गया?
4: अरे वो अपने चौक वाले दीनू काका है ना, उनकी बहू विमला माँ बनने वाली है और उसको पीलिया हो गया है। डॉक्टर ने दिल्ली ले जाने को कहा था तो उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती करवा के आ रहा हूँ।
3: क्या वो बहुत बड़ा अस्पताल है काका?
4: हाँ बड़ा है और सुविधाजनक भी। वहाँ कई बीमारियों का इलाज होता है। बहू का इलाज शुरू हो गया है। अरे उसे फायदा भी है।
3: इतना अच्छा संस्थान किसने बनवाया काका?
4: बेटा इसकी स्थापना राजकुमारी अमृत कौर ने की थी।
3: राजकुमार और राजकुमारी ही तो बनवा सकते हैं ये सब, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है?
4: अरे अमृत कौर वैसी राजकुमारी नहीं थी।
3: फिर कैसी थी?
4: चलो पहले दुकान चलते हैं, फिर विस्तार से बताऊंगा तुम्हें।
5: क्यों रे छोटू, आधे घंटे से तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू कहाँ भटक रहा था?
3: बस स्टैंड ही गया था, काका से पूछ ले। और ये ले अखबार।
6: अरे राजू भाई चाय पिलाओ यार, बढ़िया अदरक वाली।
5: अच्छा छोटू मैं चलता हूँ।
3: अरे रुक जा, आज काका राजकुमारी अमृत कौर के बारे में बताएंगे।
7: भैया चाय ले लो, चाय ले लो।
3: हाँ ले, चाय भी आ गई, चल बैठ। हाँ तो काका, उनका नाम राजकुमारी अमृत कौर था। और
4: अमृत कौर सिर्फ नाम की राजकुमारी नहीं थी बेटा, अपने कामों से उसने लोगों के दिल पर राज किया। अमृत कौर के पिता पंजाब की रियासत कपूरथला के राजा के बेटे थे। अमृत कौर की माँ सामाजिक कार्यकर्ता थी। अपनी माँ से उसने समाज सेवा का पाठ सीखा। राजकुमारी अमृत कौर की शिक्षा इंग्लैंड में हुई।
6: हाँ भैया राजकुमारी जो थी,
4: लेकिन उनका मन तो भारत में रमता था। वो भारतीय संस्कृति के रंग में रंगी हुई थी।
8: राजकुमारी अमृत, यू आर ग्रेट। तुम इंग्लैंड की नंबर 1 प्लेयर हो। यह हमारे कॉलेज के लिए फक्र की बात है। तुम क्रिकेट और हॉकी दोनों की ही कैप्टन हो। तुम्हें बेस्ट प्लेयर ऑफ इंग्लैंड का अवार्ड दिया जाता है।
9: मैं इस समय अपनी माँ को याद कर रही हूँ, जिन्होंने मुझे अपने सारे कामों की शक्ति दी। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
8: अमृत कौर, आप भविष्य में इंग्लैंड के लिए खेलती रहेंगी या कुछ और भी इरादा है, मतलब शादी वादी?
9: नहीं नहीं, शादी तो कतई नहीं, वो जिंदगी भर चलता रहेगा। मेरी नजर अपने भारत पर है। उस सरजमी को मेरी जरूरत है और मुझे उसकी।
8: अमृत कौर की भारत को ही नहीं इंग्लैंड को भी उतनी ही जरूरत है। ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व जिसने हमारे ब्रिटेन का नाम रोशन किया, हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा बनी। धन्य है भारत देश जिसने ऐसे महारथियों को पैदा किया।
9: मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने मेरे नाम से एक अवार्ड शुरू किया, और चाहती हूँ इस अवार्ड में जात पात रंग भेद का भेदभाव ना हो, ये योग्यता और व्यक्तित्व के आधार पर दिया जाए। और जो मुझे आज ये सम्मान राशि दी गई है उसे मैं कॉलेज के विकलांग छात्र एल्विन के लिए समर्पित करती हूँ।

0: और एक दिन इंग्लैंड का जहाज भारत जाने को तैयार था। इंग्लैंडवासी और दूसरे नागरिक अपनी प्रिय साथी को भावभीनी विदाई दे रहे थे।
1: आप जा तो रही हैं भारत, पर यहां आपको हम सब बहुत मिस करेंगे। ये देखिए, दोनों स्टूडेंट फेडरेशन के सारे मेंबर्स आपको विदाई देने आए हैं।
2: अलविदा दोस्तों। दोस्ती की महक भारत से इंग्लैंड तक पहुंचती रहेगी। सबकी जय हो, अनीति का नाश हो। अलविदा, फिर मिलेंगे।
0: और भारत लौटने के बाद वो सीधी पंजाब के कपूरथला रियासत के एक गांव में पहुंची।
2: भाइयों, मेरे स्वागत और सम्मान में जो भव्य समारोह आप करने की बात कर रहे हैं, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। वो सारा पैसा आप गांव के विकास में लगाइए।
3: राजकुमारी अमृत कौर की
4: जय।
3: राजकुमारी अमृत कौर की
4: जय।
3: राजकुमारी अमृत कौर की
4: जय।
2: मैं देख रही हूँ भारत में महिलाओं की दशा अच्छी नहीं है। अब हम सबको मिलकर लड़कियों की शिक्षा और उनके समग्र विकास के लिए काम करना होगा। लोगों को जागरूक करना होगा। मैं 20,000 रुपया गांव के खेल मैदान और स्कूल के लिए देना चाहती हूँ।
3: राजकुमारी अमृत कौर की
4: जय।
3: राजकुमारी अमृत कौर की
4: जय।
3: राजकुमारी अमृत कौर की
4: जय।
0: अमृत कौर महिलाओं के उत्थान के लिए जुट गईं और इस महायज्ञ में कई लोगों को शामिल कर लिया। छोटे छोटे गांव कस्बों तक पैदल यात्रा की।
5: राजकुमारी जी, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? मुझ असहाय पर कोई दया नहीं करता, सब मुझे पापी कहते हैं।
2: अरे उठो, कौन हो तुम? रो मत बहन, रोने से कुछ नहीं होगा। बोलो क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
5: मैंने प्रेम विवाह किया था। हम दोनों कुछ दिन साथ रहे, फिर एक दिन अचानक मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैंने उसके बच्चे को जन्म दिया, लेकिन लोग मुझे गांव में नहीं रहने देते। मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैं कोई पापी नहीं हूँ दीदी, मैं पापी नहीं हूँ।
2: हाँ, तुमने कोई पाप नहीं किया। किसी से प्रेम करना पाप नहीं है, ईश्वर ने हमें सबसे प्रेम करना सिखाया है। चलो, तुम्हारे बच्चे की परवरिश मैं करूंगी। चलो चल पड़ो, रुको मत, जीवन के सत्य को स्वीकारो, प्रेम के प्रकाश को सब में बांट दो। आइए पिताजी।
6: अरे बेटी, क्या कर रहे हो? अरे देखो, ये किताब देखो, गोपाल कृष्ण गोखले कल ही दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं और गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन पर लिखी ये पुस्तक तुम्हारे लिए दी है।
2: ये मेरे जीवन में एक नया मोड़ है। अफ्रीका में लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं पिताजी। मैंने एक प्रण किया है।
6: बोलो बेटा।
2: मुझे सौगंध है गीता की, सौगंध है बाइबल की, मैं अविवाहित रहकर लोगों की सेवा करूंगी।
6: ठीक है, अब मैं आगे क्या बोलूं? ईश्वर तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो और बढ़ते चले जाओ इस सेवा मार्ग पर। बढ़ो और आगे बढ़ो।
2: पिताजी, माँ की जनसेवा मैंने बचपन से देखी है, आपके त्यागी स्वभाव ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। मैं जीवन के अंतिम क्षण तक इस सेवा मार्ग पर चलती रहूंगी।
6: देखो बेटा, ऐसा काम करो जिससे इस दुनिया में जरूरतमंद गरीब लोगों का कल्याण हो। राह में कांटे जरूर मिलेंगे, पर तुम्हें निडर होकर यह कार्य करना होगा, समझे बेटा?

0: राजकुमारी जी, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। उनका कहना है हम राजकुमारी जी से मिले बगैर नहीं जाएंगे यहाँ।
1: पिताजी, सबसे पहले तो आप सबसे ये कह दीजिए कि मुझे राजकुमारी कहकर संबोधित नहीं करें। मैं सिर्फ अमृत कौर हूँ, मैं सब लोगों की बहन बेटी हूँ बस। हाँ, आप चलिए और उनसे कहिए परेशान ना हो, मैं उनसे अवश्य मिलूंगी।
2: वाह बेटी वाह, तुम्हारी बातें सुनकर मैं अभिभूत हो उठता हूं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईश्वर सबको तुम जैसी बेटी दे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे सभी प्रयत्नों में तुम्हारा साथ दे।
3: गांधी जी के भारत लौटने पर अमृत कौर ने उनसे कई बार भेंट की।
0: महात्मा गांधी की
4: जय!
0: महात्मा गांधी की
4: जय!
0: महात्मा गांधी की
4: जय!
1: बापू, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे मिलने की कई दिनों से इच्छा थी, आज सौभाग्य मिला। आपके साउथ अफ्रीका के सत्याग्रह से मैं अभिभूत हूँ। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है।
5: बेटा, सीखा है तो और लोगों को सिखाओ। सेवा मार्ग सबके लिए है। अपने पति को इस काम के लिए प्रेरित करो।
1: मैंने अविवाहित रहने का प्रण किया है। मैं गरीबों और असहायों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहती हूँ।
5: अरे, तुम कह रही थी मुझसे तुमने बहुत सीखा है, अब मैं तुमसे सीख रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आओ देखो, ये कुष्ठ रोगी, इन्हें सहानुभूति नहीं, इन्हें तो स्नेह चाहिए।
1: लाइए, मुझे दीजिए, मैं मलहम लगा देती हूँ। आओ इधर आओ। आज मेरे मन को कितनी शांति मिल रही है। मैं आपसे मिलकर धन्य हूँ बापू।
5: तुम्हारा नाम ही सिर्फ अमृत नहीं है, तुम्हारे पास प्रेम का अमृत भी है। उस अमृत को बांटते चलो, जीवन की सत्यता इसी में है।
1: आज मुझे मेरे गुरु मिल गए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे आज दीक्षा मिल गई। बताइए, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं?
5: तुम लोगों के लिए जियो और ऐसे काम करो कि मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूं, तुमसे हमेशा प्रेरित रहूं, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी।
1: बापू, मैं नतमस्तक हूं, मेरा मानव जीवन सफल हो गया।
3: और राजकुमारी अमृत कौर निकल पड़ी अकेली, गाते हुए, एकला चोलो रे। और आंधी तूफान सबसे जूझते हुए उनके कदम आगे बढ़ते रहे। कई बार अमृत कौर ने गांधी जी से साबरमती आश्रम में रहने की अनुमति मांगी, पर गांधी जी ने कहा, बेटी तुम घर पर रहो और माता पिता की सेवा करो। 1924 में अमृत कौर की माता और 1930 में पिता का स्वर्गवास हो गया।

0: पिताजी आप चले गए और मां भी। नहीं, ये आंसू नहीं, श्रद्धा सुमन है। मां, अब मेरे जीवन का हर पल जनसेवा के लिए होगा, भारत देश के लिए होगा। मेरा अगला कदम बुनकर और हरिजन कल्याण के लिए होगा।
1: 23 दिसंबर 1932, राजकुमारी अमृत कौर अखिल भारतीय महिला मंच को संबोधित कर रही थी।
0: मेरी प्यारी बहनों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने हमारे देश में सांप्रदायिकता का जहर घोला है। आज मैं अखिल भारतीय महिला मंच से उसका जोरदार विरोध करती हूँ।
1: राजकुमारी अमृत कौर 16 वर्ष तक महात्मा गांधी की सचिव रहीं और कई आंदोलनों का संचालन किया।
0: आगे बढ़ो, चलो। अब हमें बंदूक, तोप, लाठियां कोई नहीं रोक सकता। हम आजादी लेकर रहेंगे। अंग्रेजों,
2: भारत छोड़ो!
0: अंग्रेजों,
2: भारत छोड़ो!
0: अंग्रेजों,
2: भारत छोड़ो!
0: महात्मा गांधी की
2: जय!
0: महात्मा गांधी की
2: जय!
0: महात्मा गांधी की
2: जय!
1: उन्हें सरकार ने कालका में गिरफ्तार कर लिया, फिर वहां से अंबाला जेल में भेज दिया। जेल में एक संतरी उनका हाल चाल पूछने आया, तब उन्होंने कहा,
0: अंबाले की इस काल कोठरी में मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। मैं, बाइबल, गीता और पानी का एक बर्तन। बाहर सरकार हमें तंग कर रही थी और जेल में चूहे। दोनों में अंतर नहीं है। जेल में गंदगी और खराब भोजन भी हमारे साथी हैं।
3: बीबी जी, आपका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, आप जेलर से निवेदन कर लें तो आपको रियायत मिल सकती है।
0: नहीं चाहिए, मुझे रियायत नहीं चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, संपूर्ण आजादी।
1: और फिर वो दिन भी आया, 15 अगस्त 1947, जब हम आजाद हो गए, हमें आजादी मिल गई।
0: भाइयों, देश आजाद हो गया, हम सबके लिए कितनी खुशी की बात है। पर अभी हमारे सामने कठिनाइयों के पहाड़ खड़े हैं, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। अब हमें इनसे लड़ना है।
4: राजकुमारी अमृत कौर की
2: जय!
4: राजकुमारी अमृत कौर की
2: जय!
4: राजकुमारी अमृत कौर की
2: जय!
0: नहीं, जयकार मेरी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जय बोलो भारत माता की, जय उन शहीदों की जिनके बलिदान से हम आजाद हुए और आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जय हो जनता जनार्दन की, भारत माता की
2: जय!
0: भारत माता की
2: जय!
3: अमृत कौर जी, अब आपकी आगे की क्या क्या योजनाएं हैं?
0: सबसे पहले मैं पूरे भारत देश का दौरा करना चाहती हूँ। सांप्रदायिकता का ये बीज जो अंग्रेज बो गए हैं, उसे जड़ से उखाड़ना होगा। हम मिलकर रहेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा।
5: हम सब आपके साथ हैं, युवा पीढ़ी आपके साथ है।
0: तो बस, अब और कुछ नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, वीर दल सजा रहे। वीर तुम बढ़े चलो।
1: एक राजघराने से ताल्लुक रखने वाली राजकुमारी चाहती तो सारे ऐशो आराम पा सकती थी, पर नहीं, उसने तो गांधी जी की राह पकड़ ली। वैभव विलास को छोड़ जेल में चक्कियां पीसने का काम किया, अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया, गरीब असहाय लोगों के लिए।
6: काका, राजकुमारी अमृत कौर आजादी के बाद कहां रही और उन्होंने क्या किया?
1: अमृत कौर ने आजाद भारत में पहली स्वास्थ्य मंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। देश को आजादी तो मिल चुकी थी पर जनता के सामने बहुत समस्याएं थी। अमृत कौर ने सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे संतु निरामय वाला रास्ता पकड़ा और चल पड़ी फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे संस्थान की स्थापना की।
0: भाई देखिए, हमारा देश तो आजाद हो गया पर अभी भी हम बाल विवाह, पर्दा प्रथा, निरक्षरता जैसी कुरीतियों के गुलाम हैं। और इन सबसे लड़ने के लिए पहले इस देश की स्त्री को साक्षर होना होगा। माँ साक्षर होगी तब पूरा परिवार साक्षर होगा।
3: और राजकुमारी जी, दीपावली नजदीक है, सारा देश दिवाली मनाने को बेताब है। आप भी कुछ दिन आराम कीजिए, आप तो लगातार काम में लगी हैं, कहीं आप स्वयं अस्वस्थ ना हो जाएं।
0: सेक्रेटरी साहब, मुझे मेरे कामों से ही ऊर्जा मिलती है, अगर आराम करने बैठ गई तो बीमार हो जाऊंगी। हमें अज्ञानता के अंधेरों को दूर कर शिक्षा की रोशनी पूरे देश में फैलानी है।
3: अरे सुनो, आप लोग कहाँ चले आ रहे हैं? आप कल आना, मंत्री जी अभी व्यस्त हैं।
0: अरे आने दीजिए उन्हें, आइए कहिए क्या बात है। लीजिए लीजिए, पहले पानी पी लीजिए।
7: जी मंत्री जी, मैं एक आम आदमी हूँ, हमारे कस्बे के बच्चों को शिक्षा की पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है, बच्चे गलत रास्तों पर जा रहे हैं।
0: आश्चर्य, ये बात मेरे कानों तक क्यों नहीं पहुंची? सेक्रेटरी साहब।
3: जी मैम।
0: ये क्या चल रहा है, इन महाशय को मुझ तक पहुंचने का मौका क्यों नहीं मिला?
3: नहीं वो वैसी बात नहीं मैडम, वो
0: मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। आज ही इनकी समस्या पर गौर कर अभी से अमल कीजिए। अरे अरे, भारत की प्रगति बालकों के चरित्र निर्माण और उत्थान से ही संभव है।
1: अमृत कौर एक दिन गहरी नींद में सो रही थी, तभी उन्होंने एक सपना देखा।

0: राजकुमारी अमृत कौर।
1: कौन है, कौन है, कौन मेरे ही यज्ञ में विघ्न डाल रहा है?
0: मैं हूं यमराज। उठो, जागो, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। तुम्हारे पुण्य कर्मों का घड़ा भर गया है, अब छलक रहा है, तुम्हारा जीवन पूरा हुआ। चलो स्वर्ग चलो।
1: नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे बहुत काम करने हैं, बहुतों को मेरी जरूरत है। मैं मृत्यु से नहीं डरती, पर अपने अधूरे कामों को छोड़कर नहीं जा सकती।
0: तुम्हें यमराज का आदेश मानना ही होगा, चलो मेरे साथ।
1: ठीक है, मैं मृत्यु का वरण करने को तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है।
0: मुझे भी मंजूर है, बोलो।
1: मुझे दोबारा मानव जन्म मिले और भारत में ही फिर से अपने भाई बहनों की सेवा करती रहूं, जन्मों जन्मों तक।
0: ठीक है, पर तुम अमृत कौर बनकर दोबारा जन्म नहीं ले सकती। हर जन्म में नया रूप लेकर आओगी। जब रोगियों के घावों को जो सहलाएगा वो हाथ तुम्हारा होगा। जब भी अत्याचारियों के खिलाफ कोई आवाज उठाने आगे आएगा उसकी आत्मा में तुम रहोगी। जाता हूं, मैं फिर आऊंगा, तब तक तुम अपने काम निपटा लो।
2: देखा तुम लोगों ने, कर्म ही उनके लिए पूजा थी, और लगातार काम करते करते कब जीवन की संध्या हो गई पता ही नहीं चला उन्हें। 75 वर्ष पूरे कर ये सूर्य अस्त हुआ, और अस्त होते हुए सूर्य ने कहा था, जीवन नाम ही चलने का है।
3: वाह काका, आज का दिन सार्थक हो गया।
2: बेटा, सार्थकता तो तब मानी जाएगी जब हम सार्थक काम करें। तो चलो, शहर में स्वास्थ्य शिविर लगने वाला है, लोगों को जानकारी दो, स्वस्थ रहे घर तेरा मेरा, तभी होगा सच्चा सवेरा।
4: निर्देशन मॉरिस लाजरस, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: भारतीय चांदी से बना लंदन, बंगाल की मलमल और सेंट पॉल कैथेड्रल। सितंबर 1666 में पुडिंग लेन की एक बेकरी से उठी एक चिंगारी ने ऐसी भयावह आग का रूप धारण किया जिसने लंदन को राख के ढेर में बदल दिया। जब धुआं छटा तो 13,000 घर और 89 चर्च गायब हो चुके थे, जिससे एक ऐसा वित्तीय घाटा हुआ जिसका अनुमान आज के समय में 37 बिलियन लगाया जाता है। राजधानी को पुनर्जीवित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते मुनाफे का सहारा लिया। जब शहर खंडहर में तब्दील था तब कंपनी लंदन के कुलीन फैशन सर्कलों में सफेद सोना, बंगाल की उत्कृष्ट मलमल जिसे बुनी हुई हवा कहा जाता था, इसका व्यापार कर रही थी। सैद्धांतिक रूप से इन भारतीय वस्त्रों और मसालों से होने वाली आय लंदन को 4 बार फिर से खड़ा कर सकती थी। इस विशाल पुनर्निर्माण के लिए अधिकांश धन 160 साल के कोयला कर से आया, जिसने लंदन शहर को अपने वैश्विक व्यापार मुनाफे का उपयोग करके अपने कर्ज चुकाने की अनुमति दी। इस पुनरुत्थान की स्थापत्य पहचान क्रिस्टोफर व्रेन द्वारा 52 चर्चों का पुनर्निर्माण था, जिसमें राजसी सेंट पॉल कैथेड्रल भी शामिल था। ये बहाली प्रभावी रूप से भारतीय कपड़ा उद्योग से निकाले गए धन की देन थी। हर बार जब आप उन ऐतिहासिक चर्चों के शिखरों को देखते हैं तो आप वास्तव में बंगाल, मैसूर और गुजरात के उन भूले बिसरे बुनकरों की मेहनत को देख रहे होते हैं। आधुनिक लंदन के पत्थर भारतीय चांदी से जुड़े हुए थे, जो शहर के अस्तित्व को पूर्व के प्रेत और आत्माओं का एक गहरा वसीयतनामा बनाते हैं।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के अमर कथाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की।
3: हिंदी साहित्य के विशाल आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनकी आभा समय बीतने के साथ और अधिक उज्जवल होती जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने कम लिखा किंतु इतना उत्कृष्ट लिखा कि उनका नाम अमर हो गया। ऐसे ही महान साहित्यकारों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे हिंदी की आधुनिक कहानी के अग्रदूत में गिने जाते हैं। आज शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम के इस अंक में हम बात कर रहे हैं हिंदी के साहित्य के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और बहुमुखी प्रतिभा संबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की।
2: गुलेरी जी बहुभाषाविद, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, निबंधकार, आलोचक, संपादक और विद्वान शिक्षक भी थे। उन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, बंगला और मराठी जैसी अनेक भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। वे भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान थे। उन्होंने प्राचीन अभिलेखों, शिलालेखों और भारतीय सभ्यता का गंभीर अध्ययन किया। उनका मानना था कि अपने इतिहास को जाने बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता।
3: हिमाचल प्रदेश के गुलेर नामक गांव के वासी ज्योतिर्विद महा महोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री जी की तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी ने 7 जुलाई 1883 में चंद्रधर को जन्म दिया। घर में बालक को संस्कृत भाषा, वेद, पुराण आदि के अध्ययन, पूजा पाठ, संध्या वंदन तथा धार्मिक कर्मकांड का वातावरण मिला और मेधावी चंद्रधर ने इस सभी संस्कारों और विद्याओं को आत्मसात किया। जब गुलेरी जी 10 वर्ष के ही थे कि इन्होंने एक बार संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया था। पंडित कीर्तिधर शर्मा गुलेरी का यहां तक कहना था कि वे 5 वर्ष में अंग्रेजी का टेलीग्राम अच्छी तरह पढ़ लेते थे। चंद्रधर ने सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। चंद्रधर बीए की परीक्षा में सर्वप्रथम रहे।
2: सन 1904 ईस्वी में गुलेरी जी मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। चंद्रधर का अध्यापक के रूप में बड़ा ही मान सम्मान था। अपने शिष्यों में चंद्रधर लोकप्रिय तो थे ही, इसके साथ अनुशासन और नियमों का भी वे सख्ती से अनुपालन करते थे। उनकी असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस बुला भेजा और हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिलाया। आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहे।
3: कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण करने के बाद चाहते हुए भी वे आगे की पढ़ाई परिस्थितिवश जारी न रख पाए। हालांकि उनके स्वाध्याय और लेखन का क्रम अबाध रूप से चलता रहा। 20 वर्ष की उम्र के पहले ही उन्हें जयपुर की वेदशाला की जीर्णोद्धार तथा उससे संबंधित शोध कार्य के लिए गठित मंडल में चुन लिया गया था और कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स शीर्षक में अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की।
2: हिंदी साहित्य के प्रख्यात साहित्यकार थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 20 वर्ष की उम्र के पहले ही उन्हें जयपुर की वेदशाला के जीर्णोद्धार तथा उससे संबंधित शोध कार्य के लिए गठित मंडल में चुन लिया गया था और कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स शीर्षक से अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की।
3: अपने अध्ययन काल में ही उन्होंने सन 1900 में जयपुर में नगरी मंच की स्थापना में योगदान दिया और सन 1902 से मासिक पत्र समालोचक के संपादन का भार भी संभाला। प्रसंगवश कुछ वर्ष काशी की नागरी प्रचारणी सभा के संपादक मंडल में भी उन्हें सम्मिलित किया गया। उन्होंने देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला और सूर्य कुमारी पुस्तकमाला का संपादन किया और नागरी प्रचारणी सभा के सभापति भी रहे।
2: पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र हैं, जो मात्र एक कहानी उसने कहा था के बल पर हिंदी साहित्य के संपर्क में आने वाली पीढ़ियों के स्मृति पटल पर छाए रहे हैं। पूर्व दीप्ति शैली में लिखी इनकी ये कालजयी रचना निस्वार्थ प्रेम, बलिदान और त्याग की अमर गाथा है। लेकिन गुलेरी जी ने अपने पूरे साहित्यिक जीवन में केवल एक कहानी नहीं लिखी थी। 1911 ईस्वी में उनकी दो अन्य कहानियां भी प्रकाशित हुई थीं, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। कथ्य और शिल्प की दृष्टि से ये दोनों कहानियां भी अपने समय की अद्भुत कहानियां थीं।
3: इन तीनों कहानियों के पात्र साधारण हैं। इन साधारण पात्रों को लेकर गुलेरी जी ने असाधारण सौंदर्य की सृष्टि की। जीवन की जिन स्थितियों के चित्र उन्होंने अपनी कहानियों में चित्रित किए वे आज भी नवीन हैं। साहित्य की विशिष्टता क्षण क्षण नए सौंदर्य के प्रकट करने में है। मौलिकता ही वह तत्व है जो किसी रचना को नित्य नया सौंदर्य प्रदान करती है। गुलेरी जी की तीनों कहानियां मौलिक होने के साथ साथ परिस्थितियों पर इच्छा शक्ति की विजय की रचनाएं हैं, इसलिए ये आज भी ताजगी और ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। हिंदी साहित्यकाश के जगमगाते नक्षत्रों के मध्य इन उत्कृष्ट कहानियों के रचनाकार के रूप में गुलेरी जी का यह यश ध्रुव तारे की तरह सदा अटल रहेगा। जहां अनेक लेखक लंबी लंबी रचनाएं लिख रहे थे, वहीं गुलेरी जी ने कम लिखकर भी अमर स्थान प्राप्त किया। उनकी प्रत्येक रचना गुणवत्ता की दृष्टि से अत्यंत उच्च स्तर की है।
2: गुलेरी जी भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के समर्थक थे। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान और नैतिक मूल्यों की स्थापना दिखाई देती है। वे शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम मानते थे। उनकी रचनाओं में मनुष्य सर्वोपरि है। जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर उन्होंने मानवता को महत्व दिया। उनका विश्वास था कि सच्चा साहित्य वही है जो मनुष्य को बेहतर इंसान बना सके।
3: हिंदी के अनन्य आराधक और बहुआयामी प्रतिभा के धनी अमर कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा जी का साहित्यिक जीवन 20वीं शताब्दी के उन्मेष से प्रारंभ होता है। यह समय पुरातत्व इतिहास तथा भाषा विज्ञान संबंधी अनुसंधानों का था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मैथिली शरण गुप्त जैसे साहित्य सेवी इस समय अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुके थे। ऐसे साहित्यिक परिवेश में गुलेरी जी भी समालोचक, सरस्वती, अभ्युदय एवं आनंद कादम्बिनी जैसी पत्रिकाओं के विशेष रूप से जुड़कर हिंदी जगत के बौद्धिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गए थे।
2: विजेंद्र स्नातक के शब्दों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और एकता प्रियदर्शिनी हिंदी के उत्कृष्ट विद्वान थे। उन्होंने पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक संबंधों से परिपूर्ण विषयों पर सामान्य भाषा में निबंध लिखे, किंतु भाषा प्रौढ़, परिमार्जित एवं विषय अनुकूल है। कछुआ धर्म और मोरेसी मोही कुठाओ इनके बहुचर्चित निबंध हैं। इसके अलावा उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निबंधों की बात करें तो शैशुनाग की मूर्तियां, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म और आँख। कविताओं की बात करें तो एशिया की विजयदशमी, भारत की जय, वैनाक, वर्ण, अहिताग्नि, झोकी कमान, स्वागत और ईश्वर से प्रार्थना। कहानी संग्रह की बात करें तो उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा।
3: उस युग के कई अन्य निबंधकारों की तरह गुलेरी जी के लेखन में भी मस्ती तथा विनोद भाव की एक अंतरधारा लगातार प्रवाहित होती रहती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जैसे धुरंधर पंडित थे वैसे ही सरल और विनोदशील प्रकृति के थे। हिंदी कहानी का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में हिंदी की पहली कहानी लिखी गई। दूसरे दशक में कई प्रतिष्ठित कहानीकारों का उदय हुआ। इस दूसरे दशक में ही ऐसी कई कहानियां भी सामने आईं जो हिंदी की अमर कहानियां मानी जाती हैं। इसी दूसरे दशक की उपलब्धि चंद्रधर शर्मा गुलेरी और उनकी कहानियां हैं।
2: आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहानीकार गुलेरी जी के संदर्भ में जो कहा है वो सर्वथा उपयुक्त है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों की संख्या तो बहुत थोड़ी है, पर इन स्वल्प रचनाओं के बल पर वे साहित्य में अपूर्व गौरव के अधिकारी हुए हैं।
3: यूं तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, लेकिन निबंध विधा पर जबरदस्त पकड़ रखने वाले गुलेरी जी हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकार भी हैं। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके द्वारा रचित हिंदी की सर्वकालिक श्रेष्ठतम कहानियों में से एक उसने कहा था है। इसके अतिरिक्त उन्होंने दो अन्य कहानियां भी लिखी हैं, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। कथ्य और शिल्प की दृष्टि से ये कहानियां भी उल्लेखनीय हैं। इस परियोजना पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों में कथ्य और शिल्प एक समीक्षात्मक अध्ययन। इस परियोजना के अंतर्गत उनके द्वारा रचित उपर्युक्त तीन कहानियों के आधार पर साहित्य की इस सर्वाधिक प्रभावशाली और लोकप्रिय विधा के प्रणेता के रूप में गुलेरी जी की विशिष्टताओं को रेखांकित करना इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य है।
2: गुलेरी जी की कहानियां शाश्वत नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की दृष्टि से अद्वितीय हैं। उसने कहा था का प्रकाशन आज से एक शताब्दी पूर्व हुआ था। अपने युग के प्रायः समस्त प्रतिष्ठित आदर्शों, प्रेम और प्रेमी का आदर्श, युद्ध और वीरता का आदर्श,

0: है।
1: परियोजना के लिए हमने शोध प्रविधि की द्वितीयक पद्धति का प्रयोग किया है। तथ्यों के संग्रह के लिए अध्याय रचनाओं पर किए गए पूर्व शोध ग्रंथों, संबंधित पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं एवं इंटरनेट की मदद ली है। गुलेरी जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं सशक्त कथाकार थे, यद्यपि उनकी प्रसिद्धि का आधार उसने कहा था है, लेकिन उन्होंने दो और कहानियां भी लिखी हैं, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा।
0: सुखमय जीवन ये शीर्षक कहानी 1911 ईस्वी में भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी छद्म लेखन को आधार बनाकर लिखी गई एक रोचक कथा है। मात्र किताबी ज्ञान के बल पर जीवन के अनुभवों की आंच में तपे बिना लेखक बनने और हर पुस्तक को बिना विवेचन ब्रह्म वाक्य की तरह लेने वालों पर इस कहानी में सशक्त व्यंग किया गया है।
1: जयदेव शरण वर्मा ग्रेजुएट होने के बाद कुछ पुस्तकों से ज्ञान संग्रह करके सुखी वैवाहिक जीवन पर एक पुस्तक लिखते हैं। वे स्वयं अविवाहित हैं। वैवाहिक जीवन के बारे में उनका अनुभव नगण्य है। समालोचकों द्वारा कहानी की कटु आलोचना होती है और पुस्तक की मात्र 17 प्रतियां बिकती हैं। गुलाब राय वर्मा नाम के एक जागरूक ब्रह्म समाजी तथा उनकी बेटी कमला को यह पुस्तक बहुत पसंद आती है। उन्हें लगता है इस पुस्तक का लेखक बहुत ही अनुभवी होगा, जबकि गुलाब राय की पत्नी का विचार है कि पुस्तक सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखी गई है। संयोग से जयदेव शरण वर्मा और कमला की मुलाकात होती है। संक्षिप्त परिचय के बाद एक दिन जयदेव कमला के समक्ष प्रणय निवेदन करते हैं। कमला और उसके पिता उन्हें खूब फटकारते हैं, लेकिन जब जयदेव उन्हें बताता है कि वह अविवाहित है और पुस्तक उसने सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखी है, तो कमला और बाबू गुलाब राय पानी पानी हो जाते हैं और जयदेव के साथ मिलकर कमला का विवाह तय हो जाता है।
0: यह कहानी प्रारंभ से अंत तक छद्म लेखकों और छद्म पाठकों पर तीखा प्रहार करती है। नाटकीय स्थिति के द्वारा कहानी में व्यंग की अभिव्यंजना की गई है और संवाद काफी चुटीले हैं। कुछ समीक्षकों ने इस कहानी को अति नाटकीयता और असंभाव्यता के कारण सामान्य कोटि का माना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सुखमय जीवन में तो कहानी अच्छी तरह बन भी नहीं पाई, उसकी चरम घटना में विस्मय का अत्यंत अस्वाभाविक और अतिरंजित प्रयोग है, किंतु यदि इस कहानी को व्यंग रचना के रूप में देखा जाए तो अस्वाभाविकता और अतिरंजन स्वाभाविक और अनिवार्य तत्व बन जाते हैं।
1: बुद्धू का कांटा का प्रकाशन भी 1911 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी लेखक की व्यंग दृष्टि स्पष्ट है। यह कहानी एक प्रेम कथा है। इस कहानी में लेखक ने अपने आदर्शवादी चरित्रों की रचना की। कहानी का ढांचा उपन्यास का सा है, इसलिए वे रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी के पिता बाबूजी और इलाही का विस्तृत शब्द चित्र खींचते हैं। इस कहानी का एक अंश पनघट शीर्षक से अलग छपा बताया जाता है। रघुनाथ प्रयाग से पढ़कर आया है और जो गांव के तौर तरीकों से बिल्कुल अनभिज्ञ है। भागवंती कुएं में पानी भरने वाली महिलाओं के दल में एक ही हंसोड़, चुलबुली और बड़बोली किशोरी है। वह रघुनाथ के बुद्धूपन पर फप्तियां कसती है, क्योंकि वह कुएं से पानी का लोटा भी नहीं खींच सकता और औरतों से बात करते करते पसीना पसीना होने लगता है। मजाक और फप्तियां सीमा से कुछ और आगे बढ़ जाती हैं और रघुनाथ बुरी तरह परास्त होता है।
0: फिर वही लड़की नदी किनारे उसे मिलती है और उसकी हर बात की नकल उतारती है। इस पर वह उसे पकड़ने के लिए उठता है और पैर रपट जाने से नदी में गिर पड़ता है। अब भागवंती उसे डूबने से बचाती है। इस भागदौड़ में भागवंती के पैर में कांटा चुभता है, जिसे रघुनाथ निकालता है और अपनी जेब में रख लेता है। संयोग से इसी लड़की के साथ माता पिता द्वारा रघुनाथ का संबंध निश्चित किया गया होता है। विवाह के फेरों के बाद जब वे दुशाले की ओट में एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों हतप्रभ रह जाते हैं। बाद में मिलन के समय भागवंती अपनी उद्दंडता के लिए पति रघुनाथ से क्षमा मांगती है और रघुनाथ रखे हुए कांटे को दिखाकर अपनी मनोभावना को प्रकट करता है। इस प्रकार कुल मिलाकर यह कहानी एक प्रेम कथा बन जाती है।
1: 1915 में प्रकाशित उसने कहा था हिंदी की सर्वाधिक श्रेष्ठतम कहानी है। हिंदी में कहानी विधा का स्वतंत्र विकास इस कहानी से माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शामिल है। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि कर्तव्य, त्याग, मानवता और वचन पालन की अनुपम कथा है। कहानी में प्रेम एक आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में प्रकट हुआ है। गुलेरी जी तांगे वाले के संवाद में तथा सिपाहियों के वार्तालाप में हास्य, विनोद और जीवन की ताजगी पर उतना ही बल देते हैं जितना प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति पर।
0: यथार्थ चित्रण, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, सरल भाषा, प्रभावशाली संवाद, मानवीय संवेदना, देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा, उत्कृष्ट कथानक, इन्हीं गुणों के कारण ये कहानी आज भी हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। अभी तक उसने कहा था को लहना सिंह के ही प्रेम और बलिदान त्याग की कहानी के रूप में देखा जाता रहा है। एक पक्षी प्रेम की दृष्टि से पाठ्यक्रमों में इसे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसे सूबेदारनी के उदात्त गंभीर प्यार और अडिग विश्वास की कहानी के रूप में भी देखा गया है। इसी आधार पर इसका नामकरण भी हुआ है।
1: यह कहानी कालजयी रचना सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि इसी एक कहानी के बल पर गुलेरी जी एक शताब्दी से हिंदी जगत पर छाए रहे। विमल राय द्वारा इस कहानी पर फिल्म बनाए जाने के बाद इसकी लोकप्रियता में और भी विस्तार हुआ। यह कहानी प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति की है। आध्यात्मिक इस अर्थ में कि इसमें प्रेमी प्रेमिका के बीच शारीरिक संबंध की ऊष्मा नहीं है, बल्कि प्रेम एक ज्योति की तरह दोनों के हृदय में विद्यमान रहता है, और वह अनुभूति इतनी सुखद, इतनी निर्मल है कि युद्ध की विभीषिका भी उसे भंग नहीं कर पाती।
0: अपनी पहली दो कहानियों में गुलेरी जी ने नायक और नायिका के बीच प्रेम की उत्पत्ति की सूचना स्पष्ट शब्दों में दे दी है, किंतु तीसरी कहानी में केवल संकेत दिए हैं, बाकी पाठक के अनुमान के लिए छोड़ दिया गया है। श्रेष्ठ कला होती भी सांकेतिकता में ही है। पहली दो कहानियों में घटनाओं को सीधे साधे कालानुक्रम में रखा गया है। उसने कहा था शीर्षक से ही पाठक के मन में जिज्ञासा क्रमशः तीव्रतर होती जाती है, किंतु इसका समाधान कहानी के अंत में जाकर होता है।
1: अपनी तीन कहानियों के आधार पर ही गुलेरी जी ने हिंदी के विशिष्ट कहानीकार के रूप में ख्याति पाई। पुरानी पीढ़ी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, अमर नाथ झा, डॉक्टर बाबू राम सक्सेना, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र आदि से लेकर नई पीढ़ी के समर्थ आलोचकों तक उन्हें श्रेष्ठ कहानीकार स्वीकार किया है। जिस प्रकार गुलेरी जी की कहानियों में उनके अनुभव और जीवन दृष्टि में क्रमशः परिपक्वता आई है, उसी प्रकार उनकी कहानी कला में भी। उनकी कहानियों में संयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है।
0: अपनी तीनों कहानियों में उन्होंने विकास के तीन सोपान पार किए हैं, और हर सोपान पर इनकी कहानी कला परिपक्व होती गई। कथाकार गुलेरी जी की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी कहानी, उसने कहा था कि लोकप्रियता का सिक्का आज भी जमा हुआ है। गुलेरी जी विद्वान थे, उनकी विद्वत्ता की झलक उनकी कहानियों में साफ दिखाई देती है, लेकिन इस विद्वत्ता को उन्होंने ना तो अपने ऊपर हावी होने दिया, ना ही अपनी कहानियों के ऊपर। इसका कारण यह था कि वे यथार्थ जीवन और उसके अनुभव से निर्मित हुई हैं। उनकी कहानियों में जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित जो सकारात्मक कथन हमें मिलते हैं, वे उपदेश नहीं हैं, ये जीवन के अनुभव हैं।
1: गुलेरी जी ने न केवल तीन कहानियां ही लिखी, बल्कि 1900 से 1922 तक प्रचुर साहित्य सृजन किया तथा अनेक हिंदी लेखकों का मार्गदर्शन भी किया, लेकिन अपनी केवल एक कहानी उसने कहा था कि बल पर हिंदी साहित्यकाश के नक्षत्र बन गए। एक सर्वेक्षण के अनुसार उसने कहा था न सिर्फ प्रेम कथाओं बल्कि हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में भी शामिल है। हिंदी साहित्य में उसने कहा था और गुलेरी जी को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है। आखिर ऐसा क्या था इस कहानी में जिसने इसके साथ साथ इसके लेखक को भी अमर कर दिया?
0: यह कहानी आज के प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह ना कोई प्रेम सप्ताह मनाती है और ना ही प्रेम दिवस, ना गुलाबों के आदान प्रदान का दिन और ना ही वादे किए जाने का। लेकिन इसके लिखे जाने के 100 साल बाद भी आज जब हिंदी की प्रेम कहानियों का जिक्र होता है तो अनेक लोगों की स्मृति में सबसे पहले इसी कहानी का नाम याद आता है।
1: किसी कहानी को अमर बनाने वाला सबसे बड़ा गुण होता है कि वह आपको बार बार पढ़ने के लिए उकसाए और बार बार मन में अटकी सी रह जाए। हर बार के पाठ में उसके नए अर्थ और संदर्भ खुले, हर बार यह लगे कि कुछ और समझने को शेष रह गया है। उसने कहा था, इस कसौटी पर 100% खरी उतरती है।
0: सामान्य तौर पर देखा जाए तो 3 विशेषताएं हैं, इसका शीर्षक, फलक और चरित्रों का गठन, जो उसने कहा था को अमर और कालजयी बनाने में अपनी अपनी तरह से योगदान देती है। इसके शीर्षक के साथ ही इसे जानने समझने का रोमांच भरने वाला रहस्य जुड़ा हुआ था। शीर्षक सीधे सीधे पाठकों को खींचता है और उनसे पुकार कर कहता है कि पढ़ो, किसने कहा था, किससे कहा था, कब कहा था, क्या कहा था। शीर्षक में वह नाटकीयता है जो पूरे संयोजन को मंच बना देती है।
1: युद्ध और प्रेम की इस कहानी के 2 सिरे हैं। यह कहानी अमृतसर की गलियों की उस घटना के बाद सीधे प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर पहुंचती है। वहां के भारतीय सैनिकों, उनकी चूहलबाजियों, अपने वतन की याद और स्मृतियों के बीच
0: 5 खंडों और 25 वर्षों के लंबे अंतराल के युद्ध में सिमटती ये कहानी विषय और अपने अद्भुत वर्णन में किसी उपन्यास सी है। प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम के 3 मूल उद्देश्य से जुड़ती हुई उसे अपने विषय बनाती हुई शाब्दिक विवरणों से और अधिक मनोविज्ञान को पढ़ते पकड़ते और उसके चित्रण में रमती हुई यह कहानी कहीं भी अपने विषय से भटकती नहीं है। सोच कर देखें तो प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं और उसके मूल में प्रेम ही है। कर्तव्य तो प्रेम का ही एक रूप होता है और देश प्रेम भी तो बड़े और वृहद अर्थों में प्रेम होता है। इसीलिए ये कहानी हर अर्थ में प्रेम कहानी है।
1: अपने सामान्य जीवन में सामान्य व्यक्ति भी अपने भीतर प्रेम का अक्षय स्रोत किस प्रकार दबाए रहता है, एक मामूली सी घटना व्यक्ति के अंतर्मन में फैलकर उसके जीवन को किस निर्णायक बिंदु पर ले जा सकती है, प्रेम की सात्विकता मनुष्य को कितने उच्च भूमि पर पहुंचा सकती है, यह इस कहानी में व्यक्त है। इसमें घटना ऋजु मार्ग पर नहीं चलती, यह वक्र मार्ग पर चलती है, यानी घटनाक्रम कालक्रम पर नहीं मनोभूमि के अनुसार व्यवस्थित है।
0: यही इस कहानी की अनन्य विशेषता और इसकी शाश्वत लोकप्रियता का कारण है। इसी संदर्भ में विजेंद्र स्नातक ने लिखा है, रचना शिल्प की दृष्टि से यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी।
1: जैनेन्द्र ने एक बार गुलेरी के विषय में कहा था, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी विलक्षण विद्वान थे, उनकी प्रतिभा बहुर्मुखी थी, उनमें गजब की जिंदा दिली थी और उनकी बोली भी अनोखी थी। गुलेरी जी न केवल विद्वत्ता में अपने समकालीन साहित्यकारों से ऊंचे ठहरते थे, अपितु एक दृष्टि से वह प्रेमचंद से भी ऊंचे साहित्यकार हैं। प्रेमचंद ने समसामायिक स्थितियों का चित्रण तो बहुत बढ़िया किया है, पर व्यक्ति मानस के चितेरे के रूप में गुलेरी का जोड़ नहीं है।
0: गुलेरी जी की 3 कहानियों के पात्र साधारण है, लेकिन इन साधारण पात्रों को लेकर उन्होंने असाधारण सौंदर्य की सृष्टि की। जीवन की जिन स्थितियों के चित्र उन्होंने अपनी कहानियों में चित्रित किए वे आज भी नवीन है। साहित्य की विशेषता ही है क्षण क्षण नए सौंदर्य को प्रकट करने में, और जो तत्व किसी रचना को नित्य नया सौंदर्य प्रदान करती है वो है मौलिकता।
1: गुलेरी जी की 3 कहानियां मौलिक होने के साथ साथ परिस्थितियों पर अपनी इच्छा शक्ति की विजय की रचनाएं हैं, इसलिए ये आज भी ताजगी और ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। ये कहानियां हिंदी कथा साहित्य की अनमोल विरासत हैं। हिंदी साहित्यकाश के जगमगाते नक्षत्रों के मध्य इन कालजयी कहानियों के रचनाकार के रूप में गुलेरी जी का यश ध्रुव तारे की तरह अटल रहेगा।
0: खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब की मान्यता वाले युग में गुलेरी जी खेल को शिक्षा का सशक्त माध्यम मानते थे। बाल विवाह के विरोध और स्त्री शिक्षा के समर्थन के साथ ही आज से 100 साल पहले उन्होंने बालक बालिकाओं के स्वस्थ चारित्र के विकास के लिए सहशिक्षा को आवश्यक माना था। ये सब आज हम शहरी जनों को इतिहास के रोचक प्रसंग लग सकते हैं, किंतु पूरे देश के संदर्भ में यहाँ फैले अशिक्षा और अंधविश्वास के माहौल में गुलेरी जी की बातें आज भी संगत और विचारणीय है। भारतवासियों की कमजोरियों का वे लगातार जिक्र करते रहते थे, विशेषकर सामाजिक राजनैतिक संदर्भों में। हमारे अधःपतन का एक कारण आपसी फूट है। जाति व्यवस्था भी हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। छुआछूत को वे सनातन धर्म के विरुद्ध मानते थे। उनके अनुसार उदारता, सौहार्द और मानवतावाद ही धर्म के प्राण तत्व होते हैं।
1: गुलेरी जी भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के समर्थक थे। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान तथा नैतिक मूल्यों की स्थापना दिखाई देती है। वे शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम मानते थे। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि ज्ञान, ईमानदारी, संवेदनशीलता और उत्कृष्ट कर्म ही किसी व्यक्ति को अमर बनाते हैं। हिंदी साहित्य सदैव उनका ऋणी रहेगा और आने वाली पीढ़ियां उनके साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी।
0: 12 सितंबर 1922 को काशी यानी वाराणसी में उनका निधन हो गया। वे मात्र 39 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहे, किंतु अपने अल्प जीवन में उन्होंने जो साहित्यिक विरासत छोड़ी वह अमूल्य है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी कहानी के इतिहास में सदैव अमर रहेंगे। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि साहित्य में महान बनने के लिए रचनाओं की संख्या नहीं, उनकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। आज भी उनका नाम हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकारों में आदरपूर्वक लिया जाता है।
1: चंद्रधर शर्मा गुलेरी भारतीय साहित्य के ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जिनकी रचनाएं समय की कसौटी पर सदैव खरी उतरी हैं। वे केवल कथाकार ही नहीं बल्कि महान विद्वान, इतिहासकार, भाषाविद और संस्कृति के संवाहक थे। उनकी अमर कहानी उसने कहा था आज भी पाठकों के हृदय को स्पर्श करती हैं और त्याग, प्रेम, वचन पालन तथा मानवता का संदेश देती हैं।
0: शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न सरस्वती पुत्र चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। इसी भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ हम आपसे अनुमति लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन विनीता जैन, वाचक स्वर मैं नूपुर शर्मा
1: और मैं वेणु बालन,
0: प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद की। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी है।

0: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: हिमाच्छादी हिमालय के प्रति स्वामी विवेकानंद का तीव्र आकर्षण था। वे हमेशा से चाहते थे कि हिमालय की किसी मनोरम एकांत स्थान में रहकर वे तपस्या और ध्यान करेंगे, परंतु विधि का विधान कुछ और ही था। जब भी वे हिमालय के किसी भी स्थान में जाते, कुछ न कुछ घटित होता और उन्हें वहां से वापस जाना पड़ता। इस बार दृढ़ निश्चय करके हिमालय की यात्रा की थी कि मनोकामना पूरी न होने तक वापस नहीं आएंगे।
1: अल्मोड़ा के निकट आकर स्वामी जी भूख और थकावट से ऐसे अवसन्न हो गए कि और नहीं चल पाने से धरती पर लेट गए। निरुपाय हो अखंडानंद पानी खोजने गए। सामने ही कब्रिस्तान था और उसके निकट ही एक फकीर झोपड़ी में रहते थे। स्वामी जी की अवस्था देखकर वे दया से अभिभूत हो गए। उन्होंने एक खीरा लाकर स्वामी जी को खाने को दिया। इसे खाकर उन्होंने काफी ताजगी का अनुभव किया। अमेरिका से लौटने के बाद अल्मोड़ा की एक जनसभा में उक्त फकीर को उपस्थित देखकर स्वामी जी ने कृतज्ञता भरे हृदय से उन्हें बुलाकर सबके समक्ष ये कहकर उनका परिचय दिया कि ये ही उनके प्राण रक्षक हैं। फकीर ने उन्हें नहीं पहचाना, किंतु स्वामी जी ने उन्हें ठीक ठीक पहचाना था और प्रतिदिन स्वरूप उन्हें कुछ अर्थदान भी दिया था।
0: हिमालय भ्रमण स्वामी जी के लिए सदा ही शारीरिक कष्टदायक रहा था। रास्ते की थकान तो थी ही, भोजन और शयन का भी कोई ठिकाना नहीं था अथवा अभाव था। परंतु हिमालय की सुंदरता, गंभीरता और शांति के दर्शन से वे प्रफुल्लित हो उठते, रास्ते की थकान भूलकर नई ऊर्जा से भर जाते।
1: अल्मोड़ा पहुंचने पर अखंडानंद उन्हें अम्बादत्त के बगीचे में ले गए और उन्हें वहां रखकर अल्मोड़ा में अन्यत्र तपस्यारत स्वामी सारदानंद और कृपानंद नामक अन्य दो गुरु भाइयों को सूचना देने गए। सूचना मिलते ही ये दोनों अम्बादत्त के बगीचे को चले। उन लोगों ने थोड़ी ही दूर आगे जाने पर देखा कि स्वामी जी स्वयं उन लोगों की ओर आ रहे हैं। तब सभी एक साथ हो अपने आश्रय दाता लाला बद्री शाह के घर पहुँचे। शाह जी ने उन लोगों का सादर स्वागत किया।
0: शाह जी के घर वे खूब आनंद पूर्वक रहते थे तथा उनकी श्रद्धा भक्ति और अतिथि परायणता देखकर उन्होंने कहा था, ऐसा भक्त संसार में विरल है। शाह जी के घर पर कई दिन बिताकर गुरु भ्रातागण गढ़वाल जाने के लिए तैयार होते हैं। उसी समय कलकत्ते से तार द्वारा समाचार आया कि स्वामी जी की एक बहन ने आत्महत्या कर ली है। यथा समय इस दारुण घटना के विशेष विवरण से युक्त एक पत्र भी आया। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस मर्मांतक वृत्तांत को पढ़कर स्वामी जी का स्वभावतः स्नेह प्रवण मन दुख से निढाल हो गया।
1: इस अत्यंत विषादमय घटना के माध्यम से भारतीय नारी जीवन के वेदनापूर्ण पक्ष का एक और प्रत्यक्ष प्रमाण उन्होंने पाया एवं इसके प्रतिकार के लिए उनके प्राण तड़प उठे। परंतु तत्काल वे कर्म क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार नहीं थे। हृदय का असहाय दुख उन्हें हिमालय के निर्जन तर क्षेत्र में और भी अधिक जोर से धकेल कर ले चला। उन्होंने 5 सितंबर को अल्मोड़ा से बद्री नारायण की ओर यात्रा की। साथ में चले सरादानंद, अखंडानंद और कृपानंद तथा सामान ढोने वाला एक कुली।
0: यात्रा के दौरान स्वामी जी और अखंडानंद जी फिर बीमार पड़ गए। कमजोर तो दोनों पहले ही हो गए थे, अब ये पैदल चलना, वो भी पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर, इस सब ने उन्हें और भी घायल कर दिया। फिर भी वे केदार बद्री के रास्ते चल पड़े। पर पास आने पर उन्हें मालूम हुआ कि इस क्षेत्र में अकाल पड़ा है और सरकार ने आगे जाने का रास्ता बंद कर दिया है। मजबूरन उन लोगों को तीर्थ दर्शन की इच्छा त्याग कर दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ा और इसी रास्ते वे कर्ण प्रयाण पहुंचे। उसके बाद उनका अगला पड़ाव था रुद्रप्रयाग। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखकर स्वामी जी के बचपन से संजोया सपना पूरा हो गया।
1: वहाँ वे एक धर्मशाला में रुके। अखंडानंद और स्वामी जी की तबीयत यहाँ ज्यादा बिगड़ गई। सौभाग्यवश वहाँ गढ़वाल के सदर अमीन श्री बद्रीदेव जोशी से उन लोगों की भेंट हुई। जोशी जी आयुर्वेद चिकित्सक भी थे। उन्होंने उन्हें दवाइयां दी और कुछ स्वस्थ होने पर डांडी के द्वारा यानी पहाड़ी पालकी के द्वारा 9 मील दूर श्रीनगर भेज दिया।
0: श्रीनगर में ये लोग एक कुटिया में रहे। लगभग एक माह तक सभी वहां रहे और आराम मिलने पर स्वास्थ्य भी ठीक रहा। फिर शुरू हुआ चल पड़ने का सिलसिला। उन दिनों स्वामी जी को भागीरथी दर्शन के लिए व्याकुल देखकर सबने इसके बाद टिहरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में भिक्षा नहीं मिली क्योंकि रास्ता निर्जन और वनाच्छादित था। संध्या को थके शरीर से गांव में पहुंचकर उन लोगों ने एक चबूतरे पर आसन लगाया और स्वामी जी के धूम्रपान के लिए अखंडानंद आग लाने गए, किंतु किसी ग्रामवासी ने आग नहीं दी। साधुगण सोचने लगे कि जहां एक साधारण आग तक नहीं मिलती, वैसे अतिथि विमुख गांव में भिक्षा कैसे मिलेगी। तभी साधुओं में प्रचलित इस क्षेत्र के विषय में एक कहावत उन लोगों को याद हो आई, गढ़वाली सरीखा दाता नहीं, लट्ठा बगैर देता नहीं।
1: वहां ऐसे ही मजाक में गंभीर अखंडानंद चिल्लाने लगे, ए प्रधान, रोटी ले आओ, लकड़ी ले आओ। आश्चर्य कि उसी क्षण ग्रामवासी श्रद्धा पूर्वक चावल आदि लेकर हाजिर हुए, परंतु साधुओं ने कहा कि वे रसोई नहीं पका सकेंगे, तैयार रोटी आदि चाहिए। तुरंत ग्रामवासियों ने आनंद पूर्वक भोजन प्रस्तुत कर दिया तथा काफी रात तक बैठकर साधुओं से ग्रामांचल की रीति नीति एवं सुख दुख आदि की बातों की चर्चा की। साधुगण भी उन लोगों के सरल व्यवहार एवं सेवा परायणता से मुग्ध हो गए।
0: टिहरी पहुंचने पर निर्जन गंगा तट पर साधुओं के लिए निर्मित दो कमरे मिले। श्रीनगर की भांति यहाँ भी वे लोग भिक्षा करके जीवन यापन करते तथा शास्त्र विवेचन और ध्यान धारणा में दिन व्यतीत करते। यहाँ स्वनाम धन्य पंडित हरप्रसाद शास्त्री और श्री रघुनाथ भट्टाचार्य से स्वामी जी का परिचय हुआ। भट्टाचार्य महोदय टिहरी राज्य के दीवान थे। उन्होंने गणेश प्रयाग में गंगा और विलांगना नदियों के संगम पर स्वामी जी की साधना के लिए एक कुटी बना दी थी, किंतु स्वामी जी वहां रहने का सुयोग प्राप्त नहीं कर सके।
1: अखंडानंद जी कुछ दिनों तक सर्दी, खांसी, बुखार आदि से पीड़ित रहे थे। अब स्थानीय डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ब्रोंकाइटिस होने की संभावना है। पहाड़ की ठंडी जलवायु से व्याधि और बढ़ जाएगी, खासकर शीत ऋतु आने ही वाली है, इसलिए वे लोग जितनी जल्दी नीचे उतर जाएं उतना ही शुभ है। इन सब शंकापूर्ण बातों को सुनकर और गुरु भ्राता के कल्याण की बात सोचकर स्वामी जी ने अपनी तपस्या के संकल्प का परित्याग कर प्रायः 15-20 दिनों तक टिहरी में रहने के बाद देहरादून जाने का निश्चय किया। यात्रा के पूर्व स्वामी जी ने दीवान जी से मिलकर सारी बातें समझा दी और बता दिया कि भविष्य में फिर अवकाश मिलने पर वे उनकी सुव्यवस्था का उपयोग करेंगे। दीवान जी ने सारी बातें सुनकर अखंडानंद की चिकित्सा के लिए देहरादून के सिविल सर्जन के नाम एक पत्र लिख कर दिया और स्वामी जी एवं स्वामी अखंडानंद को मसूरी तक ले जाने के लिए 2 घोड़ों की व्यवस्था कर दी। इसके अतिरिक्त उन लोगों के पथ्य की अन्यान्य व्यवस्था भी कर दी।
0: उसके बाद सभी देहरादून को चले। यहाँ भी स्वामी जी के जीवन की उसी पुरानी बात की पुनरावृत्ति हम देखते हैं। वे जब भी तपस्या में डूब जाना चाहते तभी विघ्न उपस्थित हो जाता। इसी से स्वामी अखंडानंद ने एक अवसर पर लिखा था, मैंने स्वामी जी को असंख्य बार ये कहते सुना है कि जब भी उन्होंने निर्जन नीरव साधना में लीन हो जाने का प्रयास किया है, तभी घटनाक्रम के दबाव में पड़कर उन्हें साधना छोड़नी पड़ी है। वे जानते थे कि श्री रामकृष्ण ने उन पर गुरु भ्राताओं के संरक्षण का जो भार सौंपा है, उस दायित्व पालन की तुलना में उनकी तपस्या भी तुच्छ है।
1: मसूरी से नीचे उतरकर जब वे राजपुर होकर जा रहे थे, तब दूर में एक साधु को देखकर उन्हें लगा कि ये उन्हीं लोगों के गुरु भ्राता स्वामी तुरियानंद होंगे। विश्वास पूर्वक उन लोगों ने उन्हें जोरों से नाम लेकर पुकारा तथा उनके समीप आने पर देखा, ये तो सचमुच ही स्वामी तुरियानंद है। ये उन दिनों राजपुर में तपस्यारत थे। अप्रत्याशित रूप से दीर्घकाल के उपरांत भेंट होने से सभी आनंदित हुए और कुशल मंगल आदि पूछने के बाद अनेक प्रकार की वार्ताओं में डूब गए। उस समय नवरात्र का मात्र 1 दिन बचा था।
0: स्वामी तुरियानंद सहित सबने यथा संभव शीघ्र देहरादून आकर सर्वप्रथम सिविल सर्जन श्री मैक्लारेन से मिलकर रघुनाथ बाबू द्वारा उनके नाम दिया गया परिचय पत्र उन्हें दिया। पत्र पढ़कर और स्वामी जी से धर्म के संबंध में बातचीत कर डॉक्टर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े यत्न के साथ स्वामी अखंडानंद की छाती की परीक्षा कर कहा, अब किसी भी स्थिति में पहाड़ पर नहीं चढ़िएगा, बहुत दिनों तक समतल प्रदेश में रहकर भली भांति चिकित्सा कराई है।
1: अब समस्या ये खड़ी हुई कि देहरादून में ठहरेंगे कहाँ, वहाँ कोई परिचित तो है नहीं। स्वामी जी स्वयं घर घर जाकर आश्रय की भीख मांगने लगे, किंतु कहीं जगह नहीं मिली। फिर वे जगह खोजते रहे। बहुत प्रयास करने के बाद अंत में साधुओं ने एक नव निर्मित एवं अधूरे बने मकान में आश्रय पाया, किंतु जमीन पर सोना अनुपयुक्त था और खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए उन लोगों ने खाट पर सोने और भिक्षात्र मात्र से जीवन यापन करने का निश्चय किया, किंतु कमरा इतना सीलन भरा था कि रोगी के लिए वहाँ रहना हानिकर था। कम से कम अखंडानंद के लिए दूसरा आवास चाहिए। ऐसी विकट समस्या के सामने होने पर स्वामी जी यहाँ वहाँ घूम रहे थे। ऐसे समय दैव योग से उनके जनरल असेंबली कॉलेज के सहपाठी हृदय बाबू नामक एक सज्जन से उनकी भेंट हुई। वे एक स्थानीय विद्यालय के शिक्षक थे।
0: वे अखंडानंद का भार लेने को राजी हुए। तदनुसार अखंडानंद के वहाँ जाने पर भी बचपन से ही एक दूसरे प्रकार के परिवेश में पाले पोसे जाने के कारण उनके लिए इस घर का अभिनव आचार व्यवहार आदि असह्य हो उठे, अतः वे पहले वाले मकान में ही लौट आए। स्वामी जी ने सारी बातें सुनकर कहा, ठीक किया, परंतु वहां रोगी को रखा तो नहीं जा सकता था। अतएव वे फिर मकान ढूंढने निकले और पंडित आनंद नारायण नामक एक कश्मीरी जो स्थानीय वकील थे उनकी सहायता उन्हें मिली। उन्होंने एक छोटे से किराए के मकान में अखंडानंद को रहने दिया और उनके लिए गर्म कपड़े तथा पथ्य आदि की व्यवस्था की।
1: इस प्रकार देहरादून में 3 सप्ताह व्यतीत करने और अखंडानंद की बीमारी समाप्त होने के बाद स्वामी जी ने उन्हें इलाहाबाद में एक रात्रि में एक मित्र के घर चले जाने का परामर्श दिया तथा कृपानंद के ऊपर उनकी सेवा का भार देकर अन्य 2 गुरु भ्राताओं सारदानंद और तुरियानंद के साथ ऋषिकेश की यात्रा की।
0: ऋषिकेश में चंडेश्वर महादेव के मंदिर के सन्निकट पर्ण कुटीर में आश्रय लेकर भिक्षात्र से उदर पालन और गंगावारी से प्यास मिटाते हुए साधुगण हिमालय के पदप्रांत में स्थित इस सुप्राचीन तपस्या भूमि में भगवत चिंतन में निमग्न हो गए। स्वामी जी की तपस्या कामना ने मानो तृप्ति का मार्ग ढूंढ लिया।
1: सभी विषयों में अनुकूल परिवेश होने पर भी ऋषिकेश उन दिनों मलेरिया आदि रोगों की विचरण भूमि था और समीप में चिकित्सा की व्यवस्था भी नहीं थी। अतएव दीर्घकाल तक वहां रहकर तपस्या करने की स्वामी जी की जो आकांक्षा थी उसमें शीघ्र ही बाधा आ खड़ी हुई। वे शीघ्र ही ज्वर ग्रस्त हो गए और वो बढ़कर विकार में परिणत हो गया। दुर्बलता बढ़ जाने से उनकी चलने फिरने की शक्ति भी कम हो गई। हालत ऐसी हो गई कि जमीन पर बिछे एक कंबल पे वे संज्ञाहीन अवस्था में पड़े रहे। निरुपाय गुरु भ्राताओं का मन तब अत्यंत विषादमय और निराशापूर्ण हो गया। कई कोसों तक कोई चिकित्सक नहीं था जिससे सहायता करने का अनुरोध किया जा सके और ऐसे रोगी को दूर ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। इसी से चिकित्सा के अभाव में एक दिन जीवन संदेहास्पद हो गया। उस दिन बार बार पसीना चलने के बाद शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया और नाड़ी छूट गई, मानो अंतिम घड़ी आ गई हो। ऐसे आपदा काल में अनन्य मन से मधुसूदन का नाम स्मरण कर रहे थे, तभी पर्णकुटी के द्वार पर अचानक पांव की आहट सुनकर साधुओं ने आश्चर्यचकित होकर देखा, एक साधु खड़े हैं।
0: उन लोगों के सादर आमंत्रण पर साधु ने कमरे में प्रवेश करते ही अवस्था भांप ली और झोले से थोड़ा मधु और पिप्पल का चूर्ण लेकर उसे मिलाकर स्वामी जी को धीरे धीरे खिला दिया। इससे आश्चर्यकारी फल हुआ। स्वामी जी ने थोड़ी ही देर में आंखें खोलकर अस्पष्ट स्वरों में कुछ कहना चाहा। एक गुरु भ्राता ने उनके मुंह के निकट कान लगाकर उनके द्वारा अध्योच्चारित 1-2 बातें सुनी, किंतु कुछ समझ नहीं पाए। जो हो, वे धीरे धीरे शक्ति प्राप्त करने लगे।
1: स्वामी जी की जीवन रक्षा हो जाने के बावजूद उसी समय अन्यत्र जाना असंभव समझकर गुरु भ्रातागण उनके साथ कुछ दिन और ऋषिकेश में ही रह गए। तत्पश्चात जब प्रतीत हुआ कि वे रास्ते की थकान झेल सकेंगे, तब उन्हें हरिद्वार ले गए। वहां आकर स्वामी सारदानंद जिस झोपड़ी में रहकर तपस्या करते थे वहीं वे सब ठहरे। इसी बीच टिहरी के दीवान पूर्व परिचित श्री रघुनाथ भट्टाचार्य टिहरी राज्य के राजा के साथ अजमेर के मेयो कॉलेज जाने के मार्ग में हरिद्वार आए। वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि एक विद्वान साधु वहां बीमार है। दर्शन करने आने पर उन्होंने पहचाना कि यही उनके पूर्व दृष्ट स्वामी जी हैं। उन्होंने झोपड़ी की मरम्मत के लिए कुछ रुपए दिए और दिल्ली जाकर एक हकीम से चिकित्सा कराने के लिए हकीम के नाम एक परिचय पत्र भी दिया। फलतः झोपड़ी की मरम्मत हुई। स्वामी ब्रह्मानंद उस समय कनखल में तपस्यारत थे। उनकी भी सभी से मुलाकात हुई।
0: हरिद्वार से वे सब सहारपुर गए। वहां श्रीयुत बंकू बिहारी चट्टोपाध्याय से उन लोगों ने भेंट की। श्री चट्टोपाध्याय ने ये परामर्श दिया कि मेरठ जाने पर स्वामी जी हर प्रकार की सुविधा पा सकते हैं। इधर स्वामी ब्रह्मानंद बहुत दिनों से स्वामी अखंडानंद से नहीं मिल पाने के कारण मेरठ जाकर उन्हें देखने के लिए विशेष उत्सुक हुए। इसी से दोनों आकर्षणों में पड़कर स्वामी जी ने अन्य सभी के साथ मेरठ जाना ही श्रेयस्कर समझा। अमेरिका जाने के पूर्व स्वामी जी का हिमालय वास इस प्रकार ऋषिकेश छोड़ने के साथ ही समाप्त हो गया। स्वामी जी के साथ हिमालय भ्रमण की कथा के वर्णन के प्रसंग में स्वामी अखंडानंद ने लिखा है, स्वामी जी और मैं चल रहे हैं। एक स्थान पर देखता हूं कि एक साधु ध्यान करने बैठा है। अच्छी तरह कपड़े से सिर तक ढका है और जोरों से नाक बज रही है। उसे इस तरह खर्राटे मारकर सोते देख स्वामी जी हंस पड़े। उन्होंने कहा,

0: इसे देखो, इसे जरा धक्का तो दो, ध्यान लगाने का बहाना बनाकर सो रहा है, ये तो हद हुई।
1: अखंडानंद जी ने उसे हल्का सा धक्का देकर जगाया और उसके सिर पर से कपड़ा हटा दिया। वो हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ।
2: कौन हो तुम लोग?
0: हम सन्यासी हैं।
2: सन्यासी होकर दूसरे सन्यासी का ध्यान भंग करते हो? क्यों करते हो? कहाँ के सन्यासी हो तुम लोग?
0: हम स्वर्ग के सन्यासी हैं। भगवान बहुत देर से तुम्हें सोते हुए देख रहे थे, तुम्हारे खर्राटे सुन रहे थे, इसलिए हमें भेजा है तुम्हें जगाने के लिए।
2: माफ करना बाबा, थका हुआ था ना, इसीलिए सो गया था।
0: तो सो ना, कौन मना कर रहा है? सन्यासियों का सोना मना है क्या? आराम से लेट कर सो जाओ, ध्यान करने का ढोंग क्यों करते हो?
2: जी बाबा, धन्यवाद।
0: सो सो भाई, ध्यान के समय ध्यान करो और विश्राम के समय विश्राम करो।
3: और दोनों हंसते हंसते आगे बढ़ गए। एक और प्रसंग की जानकारी हमें स्वामी जी के लेखों में मिलती है। वे लिखते हैं,
0: मैं एक बार हिमालय का भ्रमण कर रहा था और सामने फैला था लंबा रास्ता। हम लोगों की तरह गरीब साधुओं के लिए तो कोई और वाहन मिलता नहीं है, इसलिए सारा रास्ता हम लोगों को पांव पैदल ही चलना पड़ता था। हम लोगों के साथ एक वृद्ध साधु थे। पहाड़ी रास्ते की चढ़ाई उतराई कर 100 मीलों तक वे चले थे। वृद्ध ने एक चढ़ाई पर चढ़कर जब देखा कि सामने तब भी कई बार चढ़ना होगा, तब निराशा से भर कर वे कह उठे, महाराज इतना लंबा रास्ता कैसे जाऊंगा? मैं तो और चल ही नहीं पाता हूं, मेरी छाती फट जाएगी। मैंने उनसे कहा, अपने पांव की ओर देखिए। तो उनके वैसा ही करने पर मैंने कहा, पीछे आपके पांव के नीचे जो पथ पड़ा हुआ है, आप उसे रौंद आए हैं, और सामने जो पथ देख रहे हैं वो भी तो एक पथ ही है, वो पथ भी शीघ्र ही आपके पांव से मर्दित होगा।
3: स्वामी जी की बात से उस वृद्ध की निराशा समाप्त हो गई और वे फिर पथ पर बढ़ चले। एक और साधु का दर्शन उन्हें हुआ था, जिसकी सौम्य मूर्ति और पवित्र आचार व्यवहार देखते ही वे समझ गए थे कि ये साधु अनुभूति के क्षेत्र में निश्चय ही बहुत ऊपर उठे हुए हैं। फिर उनसे वार्तालाप करने पर उन्हें जिस तथ्य का ज्ञान हुआ, उससे उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। उन्हें ज्ञात हुआ कि यही व्यक्ति एक बार पवहारी बाबा का सामान चुराकर जब भाग रहा था, उसी समय पवहारी बाबा जाग गए थे और चोर सामान फेंककर भागने लगा। तब पवहारी बाबा ने उस सामान को लेकर उस चोर का पीछा किया और बहुत दूर जाने पर उसे पकड़कर उसके हाथों में सारा सामान सौंपकर वे लौट आए।
1: स्वामी जी ने पहले ही गाजीपुर में इस घटना के विषय में सुना था। अब सामने बैठे साधु के अपने मुंह से ये वृत्तांत सुनकर तथा किसी महापुरुष के संस्पर्श से मनुष्य का मन किस प्रकार बदल जाता है, किस प्रकार एक चोर महापुरुष में परिणत हो जाता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर उनका चित्त एक महापुरुष के महात्म्य के प्रति और मानव मन के अंतर्निहित देवत्व के प्रति श्रद्धा से भर गया। साधु ने कहा,
4: बाबा जी ने जब मुझे नारायण ज्ञान से उदारता पूर्वक अपना सर्वस्व सौंप दिया, तब मैं अपनी भूल और हीनता समझ सका और तब से सांसारिक ऐश्वर्य का त्याग कर पारमार्थिक ऐश्वर्य की खोज में घूमने लगा।
1: बहुत रात तक इस साधु के साथ स्वामी जी की बातचीत हुई और वे निश्चय पूर्वक समझ गए कि इस व्यक्ति को सत्य की प्राप्ति हो गई है। इसके पश्चात भी कई दिनों तक उनके मन में ये आश्चर्यपूर्ण घटना बारंबार उभर आया करती थी। वस्तुतः आजीवन उन्होंने इसे याद रखा था। हिमालय भ्रमण के क्रम में किसी एक समय स्वामी जी एक तिब्बती परिवार में रह रहे थे। उस देश की प्रथा के अनुसार उन लोगों की नारियां एक ही समय में अनेक स्वामियों की पत्नी हो सकती है। उसी प्रथा के अनुसार उस परिवार के 6 भाइयों की केवल एक ही पत्नी थी। स्वामी जी ने स्वभावतः इस विभत्स आचार की निंदा की थी और इसके विरुद्ध अनेक तर्क भी प्रस्तुत किए थे, परंतु जिस भाई से बातचीत हो रही थी उसने चिढ़कर प्रतिप्रश्न किया,
3: स्वामी जी साधु होकर भी आप दूसरों को कैसे ऐसा स्वार्थ परायण होने को कहते हैं? ऐसी वस्तु का केवल मैं ही भोग करूंगा, दूसरा कोई नहीं। ऐसा विचार क्या निंदनीय नहीं है? हम क्यों ऐसे स्वार्थ परायण होते जाएंगे कि हर व्यक्ति एक ही स्त्री रखेगा? सभी भाई सभी वस्तु समान भाव से पाएंगे, यहाँ तक कि स्त्री तक। ऐसा युक्तिहीन सारहीन लगने पर भी स्वामी जी ऐसी सरलता देखकर मुग्ध हो गए और उन्होंने समझा कि प्रत्येक कार्य के अच्छे बुरे दो पक्ष हैं। सरल पहाड़ी की बात के फल स्वरूप उन्होंने इसके बाद प्रत्येक सामाजिक आचार व्यवहार को उनके पक्षों से परख कर देखने की आवश्यकता हृदयंगम कर ली थी। हिमालय छोड़ने के बाद साधु वृंद हरिद्वार और महापुरुष होते हुए मेरठ पहुंचे और डॉक्टर श्रैलोक्यनाथ घोष के घर स्वामी अखंडानंद को देखने गए। स्वामी जी उस समय अत्यंत दुबले हो गए थे। अखंडानंद उन्हें देखकर चौंक पड़े। तय हुआ कि स्वामी जी वहां रहकर इलाज करवाएंगे। मेरठ में और गुरु भाई भी आ पहुंचे। सेठ जी का बगीचा नामक घर जहां वे सब ठहरे थे मानो बराहनगर मठ में बदल गया।
1: धीरे धीरे विवेकानंद को लगने लगा कि गुरु भाईगण उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही निर्भरशील होते जा रहे हैं। उन्हें लगा कि उनके साथ ज्यादा दिन रहने पर वे सब उनके मुखापेक्षी हो जाएंगे और उन्होंने उन सब से अलग होने का मन बना लिया। उन्हें ये माया का बंधन तोड़ना था। सन 1891 के जनवरी महीने में वे अकेले मेरठ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गंगाधर ने दोषारोप किया,
5: मुझे छोड़कर जा रहे हो? तुम्हारे ही कहने पर मैं मध्य एशिया की यात्रा स्थगित कर बराहनगर लौट आया था।
0: मैं जब भी तपस्या करने की सोचता हूँ तभी गुरुदेव कोई ना कोई बाधा खड़ी कर देते हैं। इस बार मैं अकेले निकलूंगा, कहाँ रहूंगा किसी को नहीं बताऊंगा।
5: तुम यदि पाताल में भी जाओगे ना तो वहां से भी अगर तुम्हें ढूंढकर बाहर ना निकाल सका तो मेरा नाम गंगाधर नहीं

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: तो श्रोताओं, हमारी सुबह की सभा यहीं संपन्न होती है। आप बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए दोपहर की सभा का। सुनते रहिए FM 90.8 MHz, रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गायन, जिसे पेश करेंगे साई ऐश्वर्य महाशब्दे, और उसके बाद प्रस्तुति दी जाएगी सुंदरलाल करेले द्वारा बांसुरी वादन की। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं गायन साई ऐश्वर्य महाशब्दे का।
2: राग कामोद से प्रारंभ कर रहा हूं, विलंबित झुमरा ताल में पहली रचना है।

सभी गुणजन जानते हैं कर्नाटक शैली का राग है, लेकिन कर्णप्रिय और मधुर होने के साथ साथ ये राग उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी उतना ही प्रभावी है जितना दक्षिण भारतीय भारत में है।

श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोताओं, भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ पल हंसने हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, गुदगुदाने के लिए मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे तप तपाती गर्मी में कोई ठंडी हवा का झोंका आया और मन को सुकून दे गया। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा आपको वो सुकून दे सकें कि आप मन ही मन गुदगुदाएं और मुस्कुराए बिना ना रह सकें। तो प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक LPG का 7वां सिलेंडर। श्रोताओं, दुनिया में 7 अजूबे हैं, धरती पर 7 समंदर हैं। शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, सरगम के सुर भी 7 होते हैं, यहां तक कि इंद्रधनुष के रोशनी के रंग भी 7 हैं। और तो और, हमारा भोपाल भी 7 पहाड़ियों पर बसा है। पर हमें समझ में नहीं आता कि सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या 6 क्यों है। सरकार को न जाने क्या सूझी कि उसने किचन के सिलेंडरों का कोटा साल भर में 6 फिक्स कर दिया। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम 7 के आंकड़े का तो ख्याल रखा होता। तो लीजिए, हाजिर है सिलेंडरों की इसी कश्मकश से गुजरते हुए एक परिवार की राम कहानी।
1: ओफ यार, ये जूते कहां रख दिए? ये जूते मिल जाए तो फिर चश्मे। अरे सुनती हो का? क्या यार, ये लोग फोन मोबाइल कहां रखा है मेरा यार?
2: सुनिए जी, अरे सुन रहे हैं?
1: हाँ?
2: आज ऑफिस के टिफिन में आपको ब्रेड बटर दे रही हूँ, कहिए तो थोड़ा सा सॉस भी रख दूँ।
1: क्या कह रही हो, ब्रेड बटर?
2: हाँ।
1: अरे यार, तुम तो जानती हो कि ब्रेड मेरे पेट में चिपकती है, गोंद की बाप है ये चिपकूपन में, सुबह फ्रेश होना मुश्किल हो जाता है, चाय पर चाय पीते जाओ पर जोड़ है के टूटते ही नहीं।
3: अरे मम्मी, पापा को भुने चने दे दीजिए, लहसुन मिर्ची की चटनी के साथ। पापा कहते हैं भुना चना पेट साफ रखता है।
1: क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग, कुछ ढंग का टिफिन नहीं दे सकते तुम मुझे? ब्रेड बटर भुना चना, मानो अग्निदेव हड़ताल पर चले गए हो।
2: चले गए नहीं है, पर जाने की धमकी जरूर दे रहे हैं।
1: क्या मतलब
2: भाई? 5 महीने बाकी है अभी साल पूरा होने में, और
1: नोटिस दे दिए है कि अब काम पे नहीं आएंगे वो, यही कहना है ना तुम्हें?
2: हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए बस। पिछले 7 महीनों में हमने 4 सिलेंडर चट कर दिए हैं, अब बचे हैं कोटे के खाली 2 सिलेंडर।
1: क्या?
2: और महीने बचे हैं 5, यानी 1 सिलेंडर अब हमें 2.5 महीने चलाना है, जबकि जिस हिसाब से चल रहे हैं ना हम, हमारा 1 सिलेंडर 2 महीने भी तो चलता नहीं, अब कुकिंग में कटौती भी करनी पड़ेगी।
1: कटौती माई फट, अब क्या पेट पर पट्टी बांध कर नौकरी करूंगा मैं? हार तोड़ खटो ऑफिस में और इसके बाद खाना भी नहीं मांगो? कमाल है भाई, कमाल है, है? एक सुबह गरम पराठा ना दो तो तुम्हारी बाई भी भाग जाए काम छोड़कर, और मैं?
2: ए, देखो देखो जी, बाई से अपनी बराबरी मत करो, कह देती हूँ मैं। हाँ भाई, तुम मुंह फुला लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा,
1: है?
2: मगर बाई, बाप रे बाप, दूसरा पति तो मिल जाएगा।
1: क्या?
2: पर दूसरी बाई नहीं मिलने वाली भाई, उसके नाश्ते में कटौती का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी चाहे जो हो। अरे देख तो मंजू, लगता है कांता बाई आ गई। क्यों रे कांता, ये कोई टाइम है आने का? पहले तो तू कभी कभार ऐसा करती थी, पर अब तो तेरा रोज रोज।
4: अरे क्या करूं भाई साहब, सरकार ने सिलेंडरों में आग लगा के रखी है ना, अब जलते सिलेंडर से आग तो लग सकती है पर खाना बनने से रहा। सुबह सवेरे सवेरे लकड़ी बीन ना जाऊ ना तो लकड़ी भी ना मिले, एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। एक टाइम लकड़ी के टुकड़ों पर खाना पकता है और एक टाइम गैस सिलेंडर पर, अब देर तो होगी ना भाई, आखिर नौकरी भी तो पापी पेट की खातिर ही कर रही हूँ ना।
1: हाँ, हाँ, तू ही कर रही है अपने पापी पेट की खातिर, और हम तो ऐसे ही कर रहे हैं।
2: अरे सुनिए साहब, अरे सुनिए तो टिफिन तो ले जाइए, अरे कुछ एकदम खाली पेट रहेंगे क्या?
4: उफ़ साहब, नाराज हो गए क्या भाई साहब?
2: अब छोड़ ना, तू नाश्ता कर ले।
4: भाई साहब, नाश्ता तो कर लूंगी, पर आज है ना वो ना पराठे के साथ है ना चाय भी मिल जाती तो थोड़ा सा क्या है ठंडे ना।
2: अच्छा बनाती हूँ।
4: हाँ हाँ, तो कई दिन भी हो गए सुबह की चाय नहीं मिली ना भाई साहब। पहले तो ठेले पर वो 2 रुपए कट मिल जाती थी, पर अब अरे अब तो उनके भी रेट सिलेंडर की तरह भबक रहे ना।
2: ये ले चाय। अब मेरा माथा खराब ना कर कांता, देखा ना तूने।

0: मंजू।
1: हाँ मम्मी।
0: जरा टीवी की आवाज कम कर दे बेटा।
1: हाँ मम्मी करती हूँ।
2: सुनो ना, सॉरी सुबह मेरी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया, पर मैं क्या करूं बताओ। मेरे हाथ में तनख्वाह देखकर तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, घर तो मुझे चलाना पड़ता है ना।
3: नहीं रचना, गलती मेरी भी है। अरे यार, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बॉस तक की बीवी ने राशनिंग का हुक्म सुना दिया।
2: क्या?
3: हाँ, बेचारा सुबह का नाश्ता अंकुरित चने से करता है। दांत साथ नहीं देते उस उम्र में, पर करे क्या, किसी तरह टेबलेट समझ कर कटक लेते हैं।
2: अच्छा सुनो, क्यों ना हम एक काम करें।
3: हाँ बोलो।
2: एक सोलर कुकर खरीद लें, दाल चावल तो उबल ही जाएगा ना उसमें। हाँ, हाँ, हाँ। सूरज भगवान की सब्सिडी और सरकारी सब्सिडी, इन दोनों को मिलाकर हमारा काम किसी तरह चल ही जाएगा।
3: क्या बात है भाई, क्या बात है। हमारी मेहन साहब तो बहुत समझदार हो गई है। अब जाके हमें समझ में आया कि वैदिक काल में लोग अग्नि की इतनी पूजा क्यों करते थे। सच सच, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है भोगने से।
2: अब देखिए जी, 5 महीने हमें 2 सिलेंडरों के सहारे निकालने हैं।
3: बिल्कुल।
2: ओके, तो अब सोलर कुकर ने 1/3 लोड भी ले लिया।
3: हाँ, हाँ।
2: तो गाड़ी धक ही जाएगी किसी तरह। फिर हाँ, आपको भी टिफिन में ब्रेड चने नहीं खाने होंगे। हाँ। हॉट केस में रखे गरम गरम दाल चावल की खुशबू से आप ऑफिस में अपना करवा चौथ खोलिएगा।
1: और मम्मी, फिर मैं भी गर्मा गर्म पोहे खाऊंगी रोज सुबह।
2: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं भाई, अब तो सोलर कुकर देव का ही सहारा है, वे ही इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं अब।
3: वाह वाह, संकट
2: सोलर कुकर देव की जय।
3: अरे यार रचना, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे, कहाँ है मेरा लंच बॉक्स, है लाओ।
2: माफ करना जी,
3: क्या
2: लगता है दोपहर के पहले नहीं पकने वाला है ये दाल चावल, ये सोलर कुकर में डाला है ना। और आज सूर्यदेव भी नरम पड़े हुए, लगता है उन्होंने भी सब्सिडी घटाने का मन बना लिया है।
3: ये भगवान, दुबले को दो आषाढ़। यार एक काम करो, अटपका ही भर दो तुम टिफिन में यार, है? पेट की आग से ही पक जाएगा आप तो खाना। आखिर आदि मानव भी तो कच्चा मांस ही खाता था, और कितना आटा कट्टा होता था।
2: ओहो, मुझे क्यों सुना रहे हो, अब सूरज देव ठंडे पड़ते जा रहे तो मैं क्या कर लूं?
3: क्या करूं?
2: उनके आगे मोर्चा तो लेकर नहीं जा सकती ना। सारी मुसीबत मेरी, जैसी सरकार वैसे ही भगवान, आम आदमी के तो सबके सब दुश्मन है।
3: यार, अरे यार रचना, एक आइडिया आया है दिमाग।
2: हटो जी,
3: एकदम सुपर हिट है। एक काम करो, एक काम करो, जिस हाल में भी है दाल चावल तो उठा लाओ उसे, लाओ जल्दी लाओ, लाओ तो।
2: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया जी आपको, क्या आप सचमुच ही आदि मानव तो नहीं है? हे भगवान, सिलेंडरों की समस्या ने अब आपके दिमाग पर कोई असर तो नहीं डाल दिया?
3: अरे चुप रे भाई, चुप रे, मैं तुझे पागल दिखता हूँ? अरे लेके आओ यार सही अपना कच्चा पक्का खाना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है। लाओ लाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हाँ,
2: ये लीजिए।
3: हाँ,
2: ये हाँ। बताइए अब क्या करूं इस कच्चे पक्के खाने का?
3: अरे करना क्या है यार, ये सोलर कुकर के डब्बों को अब असली कुकर में डाल दो और उसको फिर गैस पर चढ़ा दो।
2: हाँ, अब फिर क्या फायदा हुआ?
3: ओफो, यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी अकल में। अरे अब खाना पकाने में आधा गैस खर्च होगा कि नहीं होगा, है? आधा गैस।
2: वाओ, मान गए आपको, वो क्या कहते हैं ना जी, दिनेश मतलब दिनेश।
3: हाँ, मतलब हम दिनेश।
4: रचना और दिनेश ने न जाने क्या क्या तरीके अपनाए, पर सिलेंडर देव की आयु 2.25 महीने के ऊपर न जा सकी। एक बार फिर घर की दीवारों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। 7वें सिलेंडर की कल्पना ही डरावनी है। भारत में

0: आम आदमी का कलेजा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद करके अपना रसोई का चूल्हा जला सके। पति पत्नी की द्विसदस्य कमेटी इस कठिन समस्या का हल तलाशने के लिए बैठ गई।
1: सुनो जी, हाँ? एक काम करते हैं, घर में आलू आज से पूरी तरह बंद।
2: उससे क्या होगा? क्या बाकी सब्जियां कच्ची खाई जाएंगी?
1: अरे नहीं जी, सब्जियों का बिहेवियर आप क्या जानोगे दिनेश बाबू, ये तो हम गृह स्वामिनियां ही समझ सकती हैं।
2: क्या मतलब?
1: मतलब ये देखो, अब हमें पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, हाफ फ्राइड, पोषक तत्व भी भरपूर और गैस की बचत भी। वो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि सब्जियों को ज्यादा पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नष्ट नष्ट,
2: और मेरा वेट भी कंट्रोल में रहेगा, है ना?
1: वाव, क्या बात कही है आपने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वेट कंट्रोल, तो समझिए सब बीमारियां कंट्रोल।
2: अरे भाड़ में जाए तुम्हारे पोषक तत्व और वेट कंट्रोल,
1: है?
2: जान ही दे देते हैं ना बाबा अपनी, है? न रहेगा वेट और न रहेगा कंट्रोल, और न करना होगा ऐसे कंट्रोल में, गैस सिलेंडर की जरूरत भी खत्म।
1: अरे क्यों नाराज होते हैं जी मेरे भोले पतिदेव, भाई आपकी तनख्वाह से तो काम चल नहीं रहा है, आपकी पेंशन से कैसे काम चलेगा?
2: क्या,
1: हमारा गोलू अभी छोटा है, अभी उसे बाप की जरूरत है जी।
2: जरूरत है तो नहीं होगा आलू बंद, मेरा पेट ही नहीं भरता आलू के बिना। अरे आने दो सातवां सिलेंडर 1000 रुपए में, पर आलू पर कैंची कभी नहीं चलेगी।
1: ये भी आ गए सातवें सिलेंडर के दूध बनकर, गरीबी में आटा गीला, गैस का 6 दिन का कोटा अब 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पहले का जमाना ही अच्छा था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ, मजे से चूल्हा जलाओ, कम से कम मेहमानों से डर तो नहीं लगता था।
2: क्या आप हुनर हुनर कर रही हो जी तुम, है? तुम औरतों की यही आदत मुझे बुरी लगती है, खुलकर नहीं बोलती, ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। क्या हुआ?
1: घर में मेहमान है, गैस का हिसाब किताब तो पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, पर अब तो पूरा गड़बड़ छाला हो चुका है। कोई प्रधानमंत्री राहत कोष भी तो नहीं होता ऐसे मामलों के लिए।
2: अरे ठीक कहती हो तुम, एक प्रधानमंत्री गैस कोष जरूर होना चाहिए, जिससे उन लोगों की मदद हो सके जिनके यहाँ मेहमान वगैरह आ जाएं। इन लोगों ने सिलेंडर का कोटा फिक्स करते हुए ये नहीं सोचा कि मेहमान भी आएंगे घर में। अरे कभी ठंडे खाने को गर्म भी करना पड़ेगा, कभी त्योहार भी पड़ेंगे, बस फ्लैट ऑर्डर पास कर दिया कि साल भर में 6 सिलेंडर। त्योहारों को गुड बाई बोल दो, मेहमानों को पहचानने से इनकार कर दो, खाना ठंडा हो जाए तो उसे वैसे ही निगल लो। पता चला बाहर की गैस बचाने के चक्कर में पेट के भीतर गैस भंडार बन गया।
1: सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, क्या खूब बात कही है।
2: क्या?
1: बातों ही बातों में समस्या का अच्छा समाधान बता दिया।
2: अच्छा,
1: अगर कोई टेक्नोलॉजी इजाद हो सके कि इस गैस भंडार को सिलेंडरों में पैक कर ली जाए,
2: क्या?
1: तो सारी समस्या ही खत्म। तब तो गैस कंपनियां कहेंगी जो साल में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा।
2: और फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा, आखिर मुफ्त की चीज कोई डिस्काउंट में भी क्यों खरीदे।

0: वाह वाह वाह वाह
1: यार, खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा आजकल।
0: लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो यार आलोक भाई?
1: क्या बताएं यार,
0: क्या हुआ
1: यार दिनेश? सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती है भैये?
0: क्या हो गया? क्या
1: अरे मतलब? यही सिलेंडरों का कोटा।
0: हाँ,
1: कहते हैं साल में 6 से ज्यादा नहीं देंगे।
0: हाँ,
1: अरे भैया जब हम छोटे थे 60 रुपए का आने वाला सिलेंडर अब 500 रुपए का हो चुका है। कोटा करण अलग से, ऊपर से तुर्रा ये कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है। वाह,
0: सही कह रहा है यार तू आलोक। आर्थिक तरक्की तो तभी होगी ना जब हम लोग आधा पेट खाएंगे।
1: सही कहते हो, सही
0: पेट भर खाना खा लेंगे तो देश की तरक्की के लिए पैसा ही नहीं बचेगा।
1: ये भी तुमने ठीक कहा। और करनी और करमगत ऐसे भैया के घर में जो हमारे कुकिंग मिनिस्टर बैठी है ना, अब वो खाने का कोटा फिक्स कर रही है। कहती है सुबह 1 से ज्यादा चाय नहीं मिल सकती।
0: जी, जी, जी,
1: टिफिन भी खाना है तो कच्चा माल खाओ, शाम की चाय बाजार में जाकर पियाओ। और कभी कभी तो ये कहती है कच्चा खाना खा करके जलते तवे पर बैठ।
0: अरे भाई क्या क्या बात कही है आपने, मेरे घर में भी यही सब चल रहा है। 6ठा सिलेंडर खुल चुका है। हाँ, और मेहमानों को भी इसी वक्त आना था। बड़ी मुश्किल से विदा हुए हैं, लगता है उनके घर में भी सिलेंडरों का कोटा खत्म हो रहा था। सोचा कुछ दिन दिनेश भाई के यहाँ चलो।
1: भैया दिनेश, मुझे तो अब मेहमानों से डर लगने लगा है। सोचता हूँ घर में आए मेहमान तो उन्हें होटल अलाउंस दे दूं बिल्कुल कैश, और कहूँ भैया ये लो पकड़ो और होटल में जाकर खाना खा पी लो बस।
0: हाँ बॉस, हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन सरकार की वजह से अब मेहमान भगवान नहीं जानी दुश्मन लगते हैं, जो आधे सिलेंडर गैस अपने संग उड़ा ले जाते हैं।
1: यार दिनेश, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में।
0: वो क्या आ रहा है भाई, सुनाओ।
1: देख, क्यों ना हम सब मिलकर एक सिलेंडर इमरजेंसी फंड बनाए। किसी के घर में अगर 6ठा सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाए तो इस फंड से उसकी मदद की जा सके।
0: हाँ यार, मगर इस फंड में सिलेंडर आएंगे कहाँ से?
1: देख, हमारे यहाँ कई बार लोग छुट्टी पर बाहर जाते हैं ना।
0: जी, जी।
1: कभी कोई काम से बाहर चला गया, कोई अपने गांव चला गया, या अन्य किसी वजह से अगर किसी का कोटे वाला एक आध सिलेंडर बच जाए तो वो इसे हमारे फंड में दान कर दे।
0: वाह,
1: बदले में हम उसका सम्मान समारोह करेंगे, अखबारों में फोटो सहित न्यूज छपवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया आज के वक्त में ये है सिलेंडर दानी, यानी सिलेंडर दान महादान।
0: वाह यार, आइडिया तो धांसू है। चल जाए तो सुपर हिट। कम से कम बिना तड़के की दाल खाने से तो छुटकारा मिलेगा।
1: क्यों भैया? तुम्हें सिलेंडर दान नहीं करना है क्या? अरे दान त्याग मांगता है त्याग, भोग के बूते पर भी कभी कोई दान होता है।
0: जी अरे भाई, हमारी गिनती तो दान लेने वालों में ही रखो यार, तुम्हें देने वालों में तो तुम अपना नाम भले लिखवा लो।
1: देखो भैया दिनेश, सिलेंडर दान महादान।
2: दिनेश और रचना की सारी हिकमतें मिलकर भी 6ठे सिलेंडर की आयु को दीर्घायु न कर सकी। अभी साल पूरा होने में 1 महीना बाकी था, पर अचानक एक रात गैस का बर्नर भभक कर बुझ गया। समझ गए वे दोनों कि पंछी उड़ चुका है। सिलेंडर के भीतर रहने वाली गैस रूपी आत्मा महाप्रायण कर चुकी है। अब यह जो लाल रंग का लोहा बचा है, यह तो नश्वर शरीर है।
3: ओफो, अब क्या करूं, सब्जी अभी कच्ची है, गोलू का दूध भी गर्म नहीं हुआ, सुबह की ओफो, क्या मुसीबत है। अजी सुन रहे हो? सुनना जरा। देखो ना, गैस खत्म हो गई, पूरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं बताओ। इसी बात का डर।
0: एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सुनो, लुढ़का कर देखते हैं सिलेंडर को, शायद थोड़ी सांसें बची हो अभी, 5-10 मिनट और जी जाए किसी तरह।
3: संभाल के।
0: अब जलाओ।
3: चल गया, जल जल चल गया। ये देखो लौ निकल रही है बर्नर से। हे भगवान, तू सचमुच कितना दयालु है भगवान। भक्तों का संकट दूर करने वाला। काम चला दो किसी तरह शारदा माता, हम सब परिवार मैहर दर्शन को आएंगे माता।
0: अरे क्या पागल हुई हो, कितने घाटे की डीलिंग है ये तुम्हारी, तुम्हें होश भी है? दर्शन करने का खर्चा कितना बैठेगा तुमने सोचा है कभी? अरे ये तो गज बचाने के चक्कर में थान हारने वाली बात है।
3: चुप रहो जी, कहीं माता रानी नाराज हो गई ना तो थान तो क्या, दुकान ही हार जाओगे तुम। एक एक सिलेंडर को तरसोगे, साल भर गाय की तरह कच्चा सानी खाते रहना, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे।
2: लड़ाई के मैदान में जिस तरह कोई बहादुर सैनिक मरते मरते भी दो चार दुश्मनों को लुड़का देता है, वैसे ही दम तोड़ते सिलेंडर ने भी रात का खाना पका दिया है। पर सुबह क्या होगा, यह चिंता पति पत्नी को इस खाने का आनंद नहीं लेने दे रही। हर कौर के साथ चिंता की दो फांके निगल रहे थे वे दोनों। सुबह चाय कैसे बनेगी, दूध कैसे गर्म होगा, नाश्ता कैसे बनेगा, अनगिनत सवाल पति पत्नी के बीच राहु की तरह पंख फड़फड़ा रहे थे।
0: ये क्या कर रही हो रचना, आज रद्दी वाले को बुलाया क्या तुमने?
3: रद्दी वाले को नहीं बुलाया है, ये तो चाय बनाने का इंतजाम चल रहा है पति देव जी।
0: हो, यानी अब रद्दी के कागजों से रसोई पकेगी?
3: नहीं, ये केवल सुबह का इंतजाम है।
0: तो
3: इसके बाद अगर कोई रसोई जलानी है तो जाकर कबाड़ी के यहाँ से एक आध क्विंटल रद्दी कागज खरीद कर ले आओ।
0: एक क्विंटल रद्दी कागज?
3: हाँ,
0: यानी 1000 रुपए का बिल। लग रहा है गैस खत्म नहीं हुई है रचना, बल्कि तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। इतने में तो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ही आ जाएगा।
3: वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ।
0: क्या?
3: अब सब्सिडी का मोह छोड़िए, क्या पता कल को इन 6 सिलेंडरों पर भी सब्सिडी खत्म हो जाए। तो अभी से हमें आदत डालते रहना चाहिए, वही अच्छा है।
0: पर रचना, हमारे बजट का क्या होगा तब? ये एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से आएगा भाई? किसकी जेब काट कर हम अपना घर चलाएंगे? अब तो कर्मचारी संगठनों को सरकार से कुकिंग अलाउंस भी मांगना चाहिए। भाई खाना खाए बगैर तो कर्मचारी काम कर ही नहीं सकता। तनख्वाह से अनाज तो खरीद सकते हैं पर पका नहीं सकते उसे। पकाने के लिए अलाउंस का हक तो बनता है।
3: चिंता न करिए पति देव जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो आपकी चिंताएं भी साझा करूंगी। अब सोच लिया है मैंने कि बजट को कैसे बैलेंस करना है।
0: कैसे बैलेंस करना है?
3: तो लीजिए, पेश है। कल से दूध का 1 पैकेट कम आएगा घर में
0: जी?
3: साल भर
0: है?
3: भविष्य के लिए अपने आप को तैयार रखना है। आज नहीं तो कल सब्सिडी वाले सिलेंडर बंद होने ही है। पूरा दूध कच्चा पीने से अच्छा है कि आधा दूध उबाल कर पियो। पका खाना बोनस होगा।
0: पर काम कैसे चलेगा, 2 पैकेट में तो पूरा पड़ता नहीं है, 1 पैकेट में क्या होगा?
3: अरे पढ़ने का क्या है, 4 में भी ना पड़े और छोटी थैली में भी काम चल जाए। आखिर हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जी जितनी हमारी चादर है। कर्ज लेकर घी पीने की फिलॉसफी तो सही नहीं है ना। चाय में दूध थोड़ा कम पड़ेगा, फुल के बजाय कट चाय पी जाएगी
0: जी।
3: गोलू के दूध में भी थोड़ी राशनिंग हो जाएगी, इससे चीनी भी बचेगा और डायबिटीज का खतरा भी खत्म।
0: वाह वाह,
3: बीमार होने का रिस्क कम, यानी दवा दारू का खर्च भी बचा।
0: बहुत खूब,
3: बस हो गया बजट बैलेंस। बजट क्या, सरप्लस कहिए साहब, सरप्लस।
0: क्या बात है।
2: अब घर में 7वां सिलेंडर आ चुका है। पैसे जरूर दुगने से ज्यादा लग गए पर रसोई तो गर्म हो गई, कुकर की सीटी बज उठी है, चाय उबल रही है, जीवन की ऊष्मा सोंधी सोंधी महक रही है।
3: ये क्या है जी आपके हाथ में?
0: बूझो तो जानू।
3: अब बूझना क्या है, ये तो गैस का चूल्हा है, साफ समझ में आ रहा है। अब ये क्या फितूर सूझी आपको, एक नया खर्च बेवजह। भाई हमारा चूल्हा अच्छा भला तो काम कर रहा है अभी।
0: अच्छा भला नहीं काम कर रहा है धर्म पत्नी जी, अपना चूल्हा कभी ध्यान से देखा है आपने? पुरानी टेक्नोलॉजी का है तुम्हारी तरह ये चूल्हा।
3: तो क्या हुआ, मेरी तरह जलता भी तो है ये चूल्हा।
0: मगर गैस जरूरत से ज्यादा खाता है, पुरानी फिएट कार की तरह ये जो चलती कम और धुआं ज्यादा देती है। तुमने ध्यान से देखा है कभी इसे? देखा है कभी इसे?
3: क्या
0: बर्तन की पेंदी कितनी काली हो जाती है इससे है?
3: और इस नए चूल्हे में
0: तुम खुद ही खोल कर देखो इसे, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें।
3: अरे इसमें तो लिखा है हाई थर्मल एफिशिएंसी अप टू 75%।
0: और तुम्हारे पुराने चूल्हे में क्या लिखा है ये भी देख लो लगे हाथ।
3: अब इसमें इसमें तो कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा जी।
0: नहीं आ रहा ना?
3: नहीं
0: आएगा भी नहीं।
3: क्यों?
0: क्योंकि कुछ लिखने लायक होगा तब ना लिखा जाएगा।
3: अरे
0: मुझे भी नहीं मालूम था। वो तो जब से सिलेंडरों की राशनिंग हुई है चारों ओर रिसर्च शुरू हो गई है कि गैस कैसे बचाई जाए। कंपनियां भी अब स्टार रेटेड चूल्हे बाजार में ला रही हैं जो कम गैस खाते हैं। कई बुकलेट पब्लिश हुए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि खाना कैसे पकाया जाए जिससे गैस की बचत हो। एक फ्री बुकलेट इस चूल्हे के साथ भी है, देख लो।
3: यही है ना बुकलेट?
0: यही है। क्या लिखा है बोलो?
3: लिखा है हाउ टू सेव कुकिंग गैस इन किचन।
0: हाँ अब इसे जरा पूरा खोल कर पढ़ो तो।
3: देखो ना, गैस बचाने के टिप्स
0: जी।
3: नंबर एक, गैस का चूल्हा ऑन करने के पहले पकाने की सामग्री अपने पास रख लें
0: जी।
3: इससे चीजें ढूंढने के दौरान आपकी गैस फालतू बर्बाद नहीं होगी
0: जी।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा नंबर दो, सेपरेटर की मदद से एक ही प्रेशर कुकर में अनेक चीजें एक बार में ही पकाएं।
0: आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
3: नंबर तीन, चीजें कम पानी में पकाएं, ज्यादा पानी को भाप में बदलने के लिए ज्यादा गैस की बापरे। नंबर चार, बर्तन में रखा पदार्थ जैसे ही उबलना शुरू करे आँच धीमी कर दो।
0: जी जी,
3: सिंपल। ओके एक और है, एक और। दाल चावल को पकाने के पहले थोड़ी देर भिगो कर रखे।
0: मुझे दो, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे दो।
3: अच्छा अच्छा, चलो पढ़ो पढ़ो। सिक्स्थ वाला,
0: जहाँ तक हो सके छोटा बर्नर इस्तेमाल करें।
3: अच्छा।
0: और बर्नर की समय समय पर यानी वक्त वक्त पर सफाई करें, खास करके तब जब बर्नर की लौ पीली नारंगी व एक जैसी ना हो।
3: अच्छा।
0: समझी?
3: हाँ। हाँ।
0: अच्छी लौ की एक पहचान ये है कि इसे नीली चमकदार व एक जैसी होना चाहिए।
3: अच्छा,
0: वो नीली। और फ्रिज से निकाली गई चीजों को गैस पर चढ़ाने के पहले कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें।
3: हाँ,
0: इससे गैस की बचत होगी। और अगर इन सभी नियमों का पालन करोगे तो आपका गैस सिलेंडर दीर्घायु होगा, दीर्घायु।
3: नहीं मजाक नहीं, अरे इनमें से आधी बातें तो हम पहले से ही जानते हैं।
0: हाँ।
3: पर हम इन्हें करते क्यों नहीं हैं?
0: हाँ, लेकिन अब करना है धर्म पत्नी।
3: हाँ,
0: जी
3: जरूर।
0: नहीं तो पता चला अभी दूध आधा हुआ है।
3: हाँ।
0: और चाय आधी हुई है, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए।
3: नहीं नहीं।
0: हाँ, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए।
3: नहीं नहीं।
0: मेहमानों को आने से पहले सैंक्शन लेनी पड़े, संख्या बतानी पड़े कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कितने दिन बाद जाएंगे। पहले वीजा लें, फिर टेक ऑफ करें, नहीं तो घर में लैंड करने की
3: इजाजत नहीं मिलेगी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एलपीजी का सातवां सिलेंडर। इस हास्य नाटिका में भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जमनी, स्वास्तिका चक्रवर्ती, रंजना तिवारी और इरफान सौरभ। लेखक श्रीमती पूनम जायसवाल। ध्वनांकन एवं संपादन अमित कुंदानी और अंकित सक्सेना का। परिकल्पना और सूत्रधार प्रमोद शर्मा। निर्देशन जवाहरलाल शाह। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत भारती कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कई तरह के वादन और गायन, तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुपमा भागवत का सितार वादन, और उसके बाद सुनवाएंगे आपको गायन देविकी पंडित का। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन, जिसे पेश किया है अनुपमा भागवत ने।

तो श्रोताओं, भी आपने सुना सितार वादन, जिसे पेश किया अनुपमा भागवत ने। अब आनंद लीजिए गायन का, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं देविकी पंडित।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, रिटायरमेंट नौकरी की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार सरकारी गीता के अनुसार जो नौकरी में भर्ती हुआ है तो उसका रिटायरमेंट भी निश्चित है। अब अगर मुलाजिम रिटायर होगा तो दो बातें होंगी, या तो उसे पेंशन की पात्रता होगी या नहीं होगी। अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हुई तो इसे पाने के लिए उसे कितने पापड़ बेलने होंगे यह तो वे रिटायर होने के बाद ही जान पाएगा। यहां तक कि पेंशन चालू रहने के दौरान भी उसे बार बार अपने जिंदा होने का सबूत पेश करना पड़ेगा। जीते जागते आदमी से पूछा जाएगा कि साबित करो कि तुम जिंदा हो। और यह बात अलग है कि परलोकवासी का भी अगर लाइफ सर्टिफिकेट हो तो उसकी पेंशन नहीं रुकेगी। आज का हमारा नाटक इसी थीम पर आधारित है, पेंशन की टेंशन।

0: भाई साहब, ये पेंशन तो आपको नहीं मिल सकती।
1: नहीं मिल सकती? क्यों?
0: आपको अपने जिंदा होने का सबूत देना होगा।
1: जिंदा होने का सबूत? अरे आपके सामने वन पीस में खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, अपनी पेंशन मांग रहा हूँ, क्या इतना काफी नहीं है?
0: जी नहीं, वन पीस में तो क्या, अगर आप थ्री पीस में भी होते ना तो भी चलता, बशर्ते कोई सबूत होता आपके पास अपने जिंदा होने का।
1: तो आप ही बता दीजिए ना कि कैसे साबित करूं कि मैं जिंदा हूं।
0: कोई लेटेस्ट डॉक्यूमेंट दे दीजिए जो इस बात को साबित करे कि आप जिंदा।
1: जैसे?
0: जैसे जैसे हाँ, किसी अस्पताल का कोई पर्चा जिसमें आपका नाम लिखा हो।
1: अस्पताल का पर्चा होगा तो जरूर, मगर घर पर ढूंढना पड़ेगा उसे।
0: तो ढूंढिए ना, जाइए, जाकर ले आइए। अगर पेंशन चाहिए तो ये तुच्छ पीड़ा तो आपको सहन करनी ही होगी।
1: मगर है वो 1.5 साल पुराना, चलेगा?
0: अजीब इंसान है आप। अरे 1.5 साल पुराना दस्तावेज चलता तो 3 महीने पहले के आपके सिग्नेचर ना चल जाते। जाने कैसे भर्ती हो गए थे सरकारी नौकरी में, इतना भी नहीं समझते।
1: अजीब आदमी है जी आप, एक सीनियर सिटीजन से बात करने की भी तमीज नहीं है आपको? सीट पर क्या बैठ गए, खुद को खुदा समझने लगे आप?
0: ओ भाई साहब, पेंशन लेने आए हैं तो पेंशन की टेंशन लीजिए, मुझे तमीज की कमीज ना पहनाइए। हैं? अब सीनियर सिटीजन हैं आप तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या साष्टांग दंडवत करूं आपको?
1: साष्टांग दंडवत करेंगे ये? अरे दो शब्द सभ्यता से तो बोल नहीं सकते? ये नहीं सोचते कि 4 दिन बाद इन्हें भी रिटायर होना है?
0: ओ बड़ो बाबा, भुनर भुनर मत करो, जो कहना है साफ साफ कहो, समझे?
1: नहीं नहीं श्रीमान जी, मेरा तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कोई ऐसा उपाय हो जिससे मुझ गरीब का कुछ काम चल जाए तो कृपा करके हमें बताएं।
0: ये हुई ना सही बात। अरे उपाय एक तो क्या हजार हैं, एक 4 अंगुल का कागज ही तो चाहिए जिसमें आपका नाम लिखा हो और कोई ताजी तारीख पड़ी हो। अच्छा आप ये बताइए कि राशन कार्ड पर राशन लिया है आपने हाल में?
1: नहीं भैया, मैं तो कंट्रोल का राशन लेता ही नहीं हूँ।
0: अस्पताल में भर्ती नहीं हुए, राशन लेते नहीं? अरे कोई तो ऐसी हरकत हो आपकी जो जिंदा लोग करते हैं, आखिर कैसे साबित हो कि आप जिंदा हैं? अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि बैंक से कोई विड्रॉल किया है आपने हाल में?
1: अरे कैसी बात करते हैं भाई आप, अरे बैंक से विड्रॉल करना होता तो पेंशन ही ना निकाल लेता।
0: बात तो सही है आपकी भाई साहब, फिर तो आप मुझे माफी कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। रूल यानी रूल, मैं उस आदमी को पेंशन नहीं दे सकता जिसके जिंदा होने की कोई गारंटी नहीं।
1: फिर वही बात, अरे कागज कहिए जनाब, कागज। आपको जिंदा होने का कागज चाहिए? मेरे जिंदा होने की गारंटी तो मैं खुद हूं। अरे मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि जो आदमी सांस ले रहा है, जिसके दिल की धड़कन चल रही है, जिसका दिमाग काम कर रहा है, वो जिंदा है।
0: तो जाकर ले आइए इस बात का सबूत उससे।
1: किससे?
0: मेडिकल साइंस से। जाइए किसी अस्पताल से एक सर्टिफिकेट ले आइए कि आपकी सांस चल रही है, आपका दिल धड़क रहा है, आपका दिमाग काम कर रहा है, मेडिकल ऑफिसर के सील सिग्नेचर करवा लीजिए। गॉड प्रॉमिस, 5 मिनट के अंदर आपकी पेंशन दे दूंगा।
1: हंसी खेल है क्या? क्या है? अरे वो डॉक्टर मुझे पागल समझेगा जिससे मैं कहूंगा कि ये सब बातें मुझे सर्टिफाई करके दो।
0: तो ठीक है, फिर पागल खाने से ही लिखवा लाइए आप। अरे कुछ तो खिलाकर कागज का पेट भरिए।
1: क्या भाई साहब, अरे यार मेरी पेंशन अटकी हुई है और आपको दिल लगी सोच रही है।
0: अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान वगैरह तो बनाया होगा?
1: नहीं बनाया है। अब मैं क्या आपको रेस ड्राइविंग करने वाला दिखता हूँ? अरे मैं एक सभ्य नागरिक हूँ देश का, गाड़ी ऐसे नहीं चलाता कि ट्रैफिक पुलिस मेरा चालान बनाए। हे भगवान, 2-4 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर क्या चला गया, सरकार ने मुझे मरा हुआ ही मान लिया।
0: ओहो हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने, एक काम करिए आप,
1: हाँ हाँ,
0: रेलवे रिजर्वेशन का एक टिकट लगा दीजिए, आपके लिए हम इसी से काम चला लेंगे।
1: मगर वो तो नहीं है।
0: वो क्यों?
1: क्योंकि मैं जनरल डिब्बे में गया था।
0: कैसे आदमी हैं आप भाई साहब, हैं ची ची ची ची ची, जनरल डिब्बे में ही तीर्थ यात्रा कर गया है।
1: अरे तो इसमें क्या गलत किया मैंने? अरे गांधी जी भी तो थर्ड क्लास में ही चला करते थे। आम आदमी हूँ, आम जनता के साथ सफर करता हूँ, ये कोई गुनाह तो नहीं है?
0: हाँ गुनाह तो नहीं, मगर पेंशन भी नहीं मिल सकती इसके बिना आपको।
1: काय सता रहे पेंशन बाबू इस बुड्ढे को? अरे पेंशन नहीं मिलेगी तो मैं खाऊंगा क्या?
0: खाना जिंदा आदमी खाता है बाबा, मरा आदमी नहीं।
1: यही बात तो आपको समझ नहीं है भैया, जब मैं खाना खाने की चिंता कर रहा हूँ तो मैं जिंदा ही होऊंगा, मरा आदमी थोड़े ही खाने की फिक्र करता है।
0: मेरे समझने से तो काम नहीं चलेगा ना बाबा, मुझे तो कागज चाहिए रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अच्छा चलिए ये तो बताइए कि अभी म्युनिसिपल इलेक्शन में आपने वोट तो डाला ही होगा ना?
1: कैसे डालता भैया, बताया तो कि मैं यहाँ नहीं था यार, तीरथ पर गया हुआ था।
0: तीरथ पर गया था तो जाइए भगवान से ही लिखवा लाइए कि आप तीरथ पर गए थे, मान लूंगा मैं।
1: काहे मजबूर की हंसी उड़ा रहे हो भैया, कहीं भगवान भी लिखा पढ़ी करते?
0: जानता हूँ भगवान लिखा पढ़ी नहीं करते, मगर उनके एजेंट तो करते हैं। अरे पंडे पुरोहित की यहाँ हाजिरी लगाई होगी आपने तीर्थ यात्रा के दौरान, उनके बही खाते में नाम लिखवाया होगा, उनकी बही की ही सर्टिफाइड कॉपी ले आइए, हम उसी से मान लेंगे कि आप जिंदा हैं अभी।
1: अरे यार लेकिन मैंने तो सारा काम डायरेक्ट किया है, भगवान के एजेंटों से तो दूर ही रहा हूँ मैं।
0: एक काम कीजिए फिर, पेंशन भी डायरेक्ट सरकार से ही ले लीजिए।
1: अरे यार
0: काहे बीच में मुझ कर्मचारी की जान ले रहे हैं आप, हैं? पता चला आपको पेंशन देने के चक्कर में मेरी पेंशन बंद हो गई है? अरे ये नहीं वो नहीं, धरती पर कोई जिंदा इंसान ऐसा होता है कि एक आध महीने में कहीं किसी कागज पर उसका नाम ही ना लिखा जाए?
1: अरे भाई क्यों भरमा रहे हो यार मुझे, पेंशन के बिना मेरा गुजारा कैसे चलेगा यार?
0: देखिए सीनियर सिटीजन जी, देखिए मैं ठहरा सरकारी आदमी, कायदे कानून के हिसाब से चलता हूँ। माना कि मुझे आपसे हमदर्दी है, मगर मुझे भी तो अपनी नौकरी प्यारी है। अरे इतने दिनों में आपने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो जिंदा लोग करते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे कुछ नहीं तो किसी से मारपीट ही कर लिए होते, एक आध रात हवालात में काटे होते, कम से कम थाने से ही कोई रिकॉर्ड मिल जाता
1: है? अरे काय मेरी भद्द बना रहे हो भैया, 65 साल का ये आदमी आपको मारपीट करने वाला दिखता है। अरे जवानी में भी कभी नहीं की ऐसी हरकत हमने, और आप कहते हो कि इस बुढ़ापे में
0: फिर तो भाई साहब आप मेरा पीछा छोड़ दो, अकेले आपका ही काम नहीं करना है मुझे। चलिए हटिए हटिए, मुझे दूसरों का काम करना है, चलिए हटिए।
1: मगर मैं अपनी पेंशन लिए बगैर नहीं जाऊंगा आज, कह देता हूँ आपसे, चाहे इसके लिए मुझे।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह वाह, बुढ़ापे में ये जोश, क्या करेंगे आप?
0: चलिए चलिए, नहीं देता आपकी पेंशन, जो करते बने कर लीजिए।
1: ओ साहब इस बुड्ढे के सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए।
0: अरे जाइए जाइए जनाब जाइए, किसी और को आंखें दिखलाइए, अपन नहीं डरने वाले इन लाल लाल आंखों से। हाथ पांव में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, चौन प्राश खाया करो, ठीक से खड़ा तो हुआ नहीं जाता और डरा रहे ऐसे। चल चल फुट, बात सुन ली तेरी बड़बड़, चल फट फट फट।
1: फूटने को बोलता है पेंशन नहीं देता तो ले।
0: अरे अरे मार डाला, अरे मार डाला, अरे
2: अरे बुड्ढे ने मार डाला, अरे अरे लाठी से कमर तोड़ दी मेरी। अरे राम कोई है, अरे पुलिस को बुलाओ पुलिस।
3: भगवान ना करे किसी को डॉक्टर वकील या पुलिस के पास जाना पड़े। इन तीनों जगहों पर इंसान अपनी मर्जी से नहीं जाता, लेकिन एक बार अगर पहुंच गया तो पीछा छुड़ाना जरूर मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे इन दोनों पात्रों के साथ भी।
0: दरोगा जी देखिए इस बुड्ढे ने जबरदस्ती मुझसे पेंशन लेने की कोशिश की। मैंने कहा कि लाइफ सर्टिफिकेट ले आओ, तो बोला नहीं लाऊंगा, जो करते बने कर लो। मैंने रोका तो गालियां देने लगा, देखिए देखिए डंडा खींच कर मारा मुझे। अरे गिरफ्तार कर लीजिए, बहुत खतरनाक बुड्ढा है।
1: अरे कोई गाली वाली नहीं दी है दरोगा साहब। हाँ छड़ी जरूर उठाई है इस पर, वो भी इसलिए कि इसने पेंशन देने से मना कर दिया था। कहने लगा जिंदा होने का सबूत लेके आओ। हाँ, मैंने कहा तुम्हारे सामने अच्छा भला खड़ा हूँ, क्या इतना सबूत काफी नहीं है? तो बोला मैं नहीं मानता इस सबूत को। तो ठीक है, जब मैं जिंदा ही नहीं हूँ तो मैंने कोई जुर्म भी कैसे किया है? किस कानून में लिखा है कि मुर्दे को गिरफ्तार करो? जाइए पहले ये साबित कीजिए कि मैं जिंदा हूँ, फिर गिरफ्तार करिएगा मुझे।
0: सुन रहे हैं दरोगा जी, आप आपके सामने खड़ा होकर बकर बकर कर रहा है, आपसे बहस कर रहा है दरोगा जी, आपको कानून सिखा रहा है और कह रहा है कि पहले ये साबित कीजिए कि ये जिंदा है।
4: चुप, एकदम चुप। तुम दोनों ने मेरा दिमाग गर्म कर दिया। अरे ऐसा टिपिकल केस मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और तुम मैं सीनियर सिटीजन, ये सरकारी आदमी के काम में बाधा पहुंचाते हो, गाली बकते हो, मारपीट करते हो। आईपीसी की धारा 294, 332, 33, 34, 353 की धाराएं जब लगाऊंगा ना तुम्हारे ऊपर, तो सारी जवानी ठंडी हो जाएगी तुम्हारी।
1: अरे ऐसे कैसे लगाएंगे जी, पहले साबित तो कीजिए कि मैं जिंदा हूँ, हैं? कि कोर्ट में बताएंगे कि दयाराम नाम के भूत ने ये सब किया है जी।
4: ये तुम साबित करना है कि तुम जिंदा नहीं हो। अरे भूत प्रेत पिशाच हो क्या हो, मैं तो तुम्हें जिंदा मानकर तुम्हारी चार्जशीट भर दूंगा, दैट्स इट।
1: अच्छा ऐसे कैसे दैट्स इट? थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूँ, जुर्म साबित करना पुलिस का काम है, ना कि मुलजिम का, कि वो खुद को बेगुनाह साबित करे। आप साबित कीजिए कि मैं गुनाहगार हूँ, मगर इसके पहले आपको मुझे जिंदा तो साबित करना पड़ेगा।
0: इस बुड्ढे की बातचीत में मत आइए दरोगा जी, मैं कंप्लेंट लिखवा रहा हूँ कि इसने मुझे गाली दी और मारा। अरे गाली गलौच और मारपीट कोई जिंदा इंसान ही कर सकता है, ना कि कोई मुर्दा। मैं गवाह हूं कि ये जिंदा है, आप पकड़ लीजिए इसको।
1: वाह वाह वाह वाह, सुना सुना आपने दरोगा जी, ये पेंशन बाबू मुझे जिंदा मान रहा है, मगर इसके बाद भी पेंशन देने को तैयार नहीं है। कहता है कि साबित करो कि मैं जिंदा हूं। अरे गिरफ्तार तो इसे कीजिए, एक सीनियर सिटीजन को प्रताड़ित करने के जुर्म में, दुर्व्यवहार करने के जुर्म में, गाली गलौज करने के जुर्म में, धक्का देकर पब्लिक प्लेस से बाहर निकालने के जुर्म में। इसे तो जिंदा भी साबित करने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में हाजिरी लगाई होगी इसने, है ना? इतना ही काफी है।
4: हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? मुर्दा जिंदा है, लेकिन जो जिंदा है वो जिंदा नहीं।
1: वो ही तो, जो जिंदा है उसे जिंदा होने का सबूत पेश करने को कहा जा रहा है, ये देखिए आप। लेकिन लॉकअप में डालने के लिए जिंदा होना जरूरी नहीं है, अंधेर गर्दी मचा रखी है, हैं?
4: बस बस, अब मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, और अब किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। दोनों पार्टियों के खिलाफ केस बनाऊंगा, और ज्यादा बड़बड़ की तो पुलिस ऑफिसर को ऑन ड्यूटी मेंटल टॉर्चर देने का एक कस और बनाऊंगा। सब लड़ाई झगड़ा भूल जाओगे, चलो थाने तुम दोनों, चलो।
0: अरे मुझे छोड़ दीजिए दरोगा जी, छोड़ दीजिए। अरे मेरी नौकरी चली जाएगी, इस बुड्ढे का क्या, मजे से सरकारी ने मेहमानी करेगा, मगर मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूँ।
1: हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, अब तो मैं भी अंदर और तू भी अंदर, ना मुझे पेंशन की जरूरत और ना तुझे तनख्वाह की जरूरत। सरकारी खाना, सरकारी रहना, सरकारी इलाज, चारों ओर कमांडो। अब तो ऐसी ऐसे।
0: क्या बक रहा है बुड्ढे तू, हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे जेल जा रहे हैं हम दोनों, जेल का मतलब जानता भी है तू?
1: नहीं जानता तो जान जाऊंगा। अरे ये तो अपनी जेल है, अपनी, भारत सरकार की। गांधी जी तो अंग्रेजों की जेल में रहे थे, हैं? वो भी सत्य के लिए गए थे,
5: और मैं भी सत्य के लिए ही जा रहा हूँ। बढ़िया है।
0: अरे ये बात बात में तू गांधी जी को क्यों बीच में ले आता है भाई? आपस का मामला है, मिलकर निपटा लेते हैं। चल भाई मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ, अब तो खुश।
4: ओए क्या फालतू समझ रखा है पुलिस को, जब मर्जी हुई तो कंप्लेंट कर दी और जब मर्जी हुई तो कंप्लेंट वापस। पुलिस तो जैसे तुम्हारे बाप की नौकर है, जैसे चाहो वैसे नचाओ, कोई कंप्लेंट वम्प्लेंट वापस नहीं होगी। 24 घंटे हवालात में रहोगे, इसके बाद तुम दोनों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो कुछ बोलना है वहीं जाके बोलना।
0: अरे आप भी तो कुछ बोलिए अंकल जी, अपनी तो वाट लग जाएगी।
1: अंकल जी, अरे वाह वाह अंकल जी। अरे वक्त ये बुड्ढा अब अंकल जी हो गया।
6: अरे वाट तो तेरी लगेगी पेंशन बाबू। नहीं अपने राम को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे घर में रहे चाहे जेल में, दो वक्त की रोटी कपड़े से मतलब है। ना आगे कोई रोने वाला है ना पीछे।
0: हे राम कहाँ फंस गया रे, हमें छोड़ दीजिए दरोगा जी, दरोगा जी हमें छोड़ दीजिए, हम अपना मामला आपस में ही सुलटा लेंगे। देखिए देखिए मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे आप भी तो नौकरी वाले हैं, कुछ तो ख्याल कीजिए।
6: बहुत खूब बहुत खूब। अरे मैं भी तो कभी नौकरी वाला था और कल मेरी तरह तुम भी पेंशनर बनोगे, ये सब नहीं सोचा, पेंशन देने से मना कर दिया, बोला बाहर निकलो, ये नहीं सोचा कि पेंशन के बिना ये बुड्ढा खाएगा क्या।
0: अरे अब जाने भी दो भाई साहब, भाई साहब गुस्सा गुस्सा जो है ना, थूक दो एकदम, थूक दो आप तो। अरे दरोगा जी दरोगा जी दरोगा जी, अरे सुनिए तो, दयाराम जी जो है ना मान गए, अब तो हमें छोड़ दीजिए।
4: देखो भाई ये थाने का मामला है, कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी ही होगी, अब नहीं तो कल तुम ही लोग शिकायत करोगे मेरे खिलाफ कि पुलिस बेकसूर को पकड़ ले गई थी।
0: अरे नहीं दरोगा जी, हम वादा करते हैं हम कोई शिकायत विकायत नहीं करेंगे। अरे मैं तो याद भी नहीं रखूंगा कि मैं कभी थाने गया था, मेरा भरोसा कीजिए।
4: थाने में आने के बाद सब ऐसे ही बोलते हैं, और मगर छूटने के बाद SP DSP से लेकर DGP तक को शिकायत करते हैं। ना भाई ना, देखो तुम्हारी नौकरी की मैं उतनी ही हिफाजत कर सकता हूँ जितने में हमारी नौकरी खतरे में ना आए, तो 107-16 तो मुझे लगानी पड़ेगी। दर
0: है 107-16, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे जरा इकाई दहाई में सही कोई धारा लगा दिए ना, आप तो पूरे सैकड़े में पहुंच गए डायरेक्ट।
4: अबे तो धारा क्या, तुम्हारे बाप की डायरी में लिखी है, जो जैसे चाहे काट छांट कर लो, और ज्यादा बड़बड़ की तो 151 और लगा दूंगा, पर SDM कोर्ट से जमानत करवाना।
0: देखिए मुझे ये पुलिसिया भाषा समझ में नहीं आती साहब, आप तो किसी तरह मेरी नौकरी बचा लीजिए।
4: इसीलिए तो कह रहा हूँ पेंशन बाबू के ज्यादा पकाओ मत मुझे, सबसे नरम वाली धारा है 107-16, इसमें कोई जेल वेल भी नहीं होती है, ये तो एक बांड भर है कि इसमें आगे तुम दोनों कोई झगड़ा नहीं करोगे, और अगर किया तो बांड कैंसिल और तुम दोनों जेल।
6: अच्छा तो है मेरे लिए, फिर तो हमें इसकी नकल भी मिल जाएगी और ये साबित हो जाएगा कि मैं जिंदा हूँ, थाने का पक्का कागज, फिर तो पेंशन देने में कोई एतराज नहीं होगा ना बाबू साहब।
0: अरे माफ करो अंकल, मैं तो ऐसे ही मान रहा हूँ कि आप जिंदा हो। अरे काहे कि 107 और 207 करवा रहे हो मेरा। अजी माफ कर दो।
3: तो श्रोताओं ये था आज का नाटक पेंशन की टेंशन, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: छेड़ देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।

0: कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 191 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुणी। देवता हैं अपतृण, सूर्या। छंद है अनुष्टुप, महापंक्ति और महाबृहति।
1: कंकतो न कंकतोथो सती न कंकतः द्वाविति प्लुषी इति न्यद्रिष्टा अलिप्सत। कुछ विषैले, कुछ विष रहित और कुछ जल में रहने वाले अल्प विष जीव होते हैं। ये दृश्य भी होते हैं और अदृश्य भी। वे दोनों शरीर में दाह उत्पन्न करते हैं। उनका विष हम में संव्याप्त हो जाता है। अदृष्टान हन्त्या यत्यथो हन्ति परायति, अथो अभग्नति हन्त्यथो पिनष्टि पिंशति। यह औषधि उन अदृश्य जीवों के विष को समाप्त करती है। वह कूटी पीसी जाकर भी विषैले जीवों के विष को नष्ट करती है। शरासः कुशरासो दर्भासः सैरिया उत मौंजा अदृष्टा वैरिणाः सर्वे साकम् न्यलिप्सत। इन विषैले जीवों में से कुछ सरकंडों, कुछ कुशाघास, कुछ छोटे सरकंडों में स्थित रहते हैं, कुछ नदी तालाबों के तटों पर पैदा होने वाले घास में, कुछ मूंज और कुछ वीरण नामक घास में छिपे रहते हैं। ये सभी लिपटने वाले होते हैं। नी गावो गोष्ठे असदन्नी मृगासो अविक्षत, नी केतवो जनानाम न्यद्रष्टा अलिप्सत। जिस समय गौएं गोष्ठ में और पशु अपने स्थानों में विश्राम करते हैं, तथा जब मनुष्य भी थककर विश्राम करने लगते हैं, ऐसे में अदृश्य रहने वाले ये जीव बाहर निकलते हैं और उन्हें लिपटते हैं। एत उत्ये प्रत्यदृश्यन् प्रदोषम् तस्करा इव अदृष्टा विश्वदृष्टाः प्रतिबुद्धा अभूतन। ये विषाणु चोरों की तरह रात्रि में दिखाई देते हैं। ये अदृश्य होते हुए भी सबको दिखते हैं, उनका प्रभाव दिखता है। हे मनुष्यों, इनसे सावधान रहो। द्यौर्वह पिता पृथ्वी माता सोमो भ्राता दितिः स्वसा अदृष्टा विश्वदृष्टास्तिष्ठे तेलयता सुकम्। हे विषाणुओं, तुम्हारे पिता दिव्यलोक, जन्मदात्री पृथ्वी, सोम भ्राता रूप और देवमाता अदिति भगिनी स्वरूपा हैं। अतः स्वयं अदृश्य रूप होते हुए भी तुम सबको देखने में समर्थ हो। अस्तु, तुम किसी को पीड़ित न करते हुए सुख पूर्वक विचरण करो। ये अंस्या, ये अंग्याह सूची का ये प्रकंकताः अदृष्टाः किम चनेह वह सर्वे साकम निजस्यत। जो जंतु पीठ के सहारे सरकते हैं, जो पैरों के सहारे चलते हैं, जो सुई के समान छेदते हैं, जो महाविषैले हैं और जो दिखाई नहीं पड़ते, ये सभी विषैले जीव एक साथ हमें कष्ट न पहुंचाएं। उत्पुरस्तात् सूर्य एति विश्वदृष्टो अदृष्टः अदृष्टान् सर्वाञ्जम्भ यन्त सर्वाश्च यातु धान्यः। सबके दर्शनीय अदृश्य दोष विकारों के नाशक सूर्यदेव पूर्व दिशा में उदय होते हैं। वे सभी अदृश्य प्राणियों और सभी प्रकार की कुटिल चाल धारण करने वाले राक्षसी तत्वों को दूर करते हुए प्रकट होते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 191 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पुत्रपाठी।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।
2: पर

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

मैं अपने बचाव में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजों की कोई भी न्याय व्यवस्था मुझे सजा देने का हक नहीं रखती। इसी वजह से मैंने कोई वकील मुकर्रर करना मुनासिब नहीं समझा। जैसे जर्मनी के खिलाफ लड़ना अंग्रेजों की देशभक्ति है, वैसे ही अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई हमारी देशभक्ति है। मैं अंग्रेजों को 8 करोड़ भारतीयों का हत्यारा मानता हूँ, जिनको पिछले 50 सालों में बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया है। ये शब्द हैं कटघरे में खड़े उस नौजवान के, जिसमें अपने देश की आजादी का जज्बा हिलोरे ले रहा था और जिसका परिवार अंग्रेजों का विश्वास पात्र था। नाम था मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ढींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 को पंजाब प्रांत के हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता सिविल सर्जन थे और अंग्रेजी रंग में पूरी तरह रंगे हुए थे। मदनलाल ढींगरा को भारत की आजादी से संबंधित क्रांति के आरोप में लाहौर के कॉलेज से निकाल दिया गया। परिवार ने मदनलाल से नाता तोड़ लिया। मदनलाल को जीवन यापन के लिए पहले एक क्लर्क के रूप में, फिर एक तांगा चालक के रूप में और अंत में एक कारखाने में श्रमिक के रूप में काम करना पड़ा। कारखाने में श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने यूनियन बनाने की कोशिश की, तो वहां से भी उन्हें निराश होना पड़ा। कुछ दिन उन्होंने मुंबई में काम किया, फिर अपने बड़े भाई की सलाह पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड चले गए। विदेश में रहकर अध्ययन करने के लिए बड़े भाई ने तो सहायता दी ही, इंग्लैंड में कुछ राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं से भी उन्हें आर्थिक मदद मिली।

मदनलाल ढींगरा का क्रांतिकारी सफर लंदन से शुरू हुआ, जब वे लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहे थे। 1905 के आसपास का समय था। मदनलाल इंडिया हाउस में रहते थे, जो उन दिनों भारतीय विद्यार्थियों के राजनीतिक क्रियाकलापों का केंद्र हुआ करता था। ढींगरा राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। वे लोग ढींगरा की प्रचंड देशभक्ति से बेहद प्रभावित हुए। सावरकर ने ही मदनलाल को अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था का सदस्य बनाया और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। ये लोग उस समय खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त, सतिंदर पाल और काशीराम जैसे क्रांतिकारियों को मृत्युदंड दिए जाने से बेहद क्रोधित थे। इन घटनाओं ने सावरकर और ढींगरा को सीधे बदला लेने के लिए विवश किया। इंग्लैंड में अध्ययन के दौरान उन्होंने विलियम हट कर्जन वाइली नामक एक ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या की थी। ये घटना 20वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाओं में से एक थी। मदनलाल ढींगरा का मानना था कि अंग्रेज प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपया भारत से इंग्लैंड ले जाते हैं और भारत को चूसकर मौज उड़ाते हैं। अंग्रेजी हुकूमत देशवासियों को बिना बात फांसी की सजा और आजीवन कारावास देती है। एक अंग्रेज 100 रुपया पाउंड की नौकरी पर भारत इसलिए भेजा जाता है कि वो 1000 भारतीयों को मौत का निशाना बनाए। अंग्रेजों की ये हवस साम्राज्य विस्तार के साथ साथ भारतीयों के शोषण की दास्तान बयां करती है। जैसे जर्मनी को इंग्लैंड पर कब्जा जमा कर उसे गुलाम बनाने का कोई अधिकार नहीं है, वैसे ही अंग्रेजों को भारत को पराधीनता की बेड़ियों में रखने का कोई अधिकार नहीं।

किया गया। उन्होंने शान से कहा कि मैं आपका कानून नहीं मानता। जिस तरह से जर्मन लोगों का ब्रिटेन पर राज करने का कोई अधिकार नहीं, वैसे ही आप लोगों को भी हम पर राज करने का अधिकार कैसे हो सकता है? जब जर्मन को मारकर अंग्रेज अपने को देशभक्त कहता है, तो निश्चित रूप से मैं भी देशभक्त हूँ। मातृभूमि का अपमान करने वालों की हत्या करना एक देशभक्त का पवित्र कर्तव्य है। मैंने वही किया है जो सच्चे देश प्रेमी को करना चाहिए। मुझे मृत्यु की जरा भी परवाह नहीं। अंग्रेजों का काला कानून मुझे फांसी की सजा दे सकता है, पर वो देशभक्ति की भावना को दफन नहीं कर सकता। मेरी फांसी के बाद देश में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग और तेज होगी। इंग्लैंड की ब्रिक्सटन जेल में मदन लाल और सावरकर को रखा गया था। ब्रिटिश हुकूमत ने 17 अगस्त सन 1909 को उन्हें फांसी पर लटका दिया।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो कहानी
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनो कहानी। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं कहानी विध्वंस।
0: कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो मित्र स्वाति। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनो कहानी। कहानीकार हैं प्रख्यात कहानीकार मुंशी प्रेमचंद और कहानी का शीर्षक है विध्वंस।

0: जिला बनारस में एक गांव है बीरा। वहां एक विधवा वृद्धा संतानहीन गौड़िन रहती थी जिसका नाम था भुनगी। उसके पास एक धुर भी जमीन न थी और न रहने को घर। उसके जीवन का केवल एक ही सहारा था उसका भाड़। गांव के लोग प्रायः एक बेला चबेना या सत्तू पर ही निर्वाह करते हैं, इसीलिए भुनगी के भाड़ पर रोज भीड़ लगी रहती। वो जो कुछ भुनाई करती उसे ही भूनकर या पीसकर खा लेती और भाड़ की ही झोपड़ी के एक कोने में पड़ी रहती। वो सुबह सवेरे उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा सा ढेर लगा रहता। दोपहर के बाद ही उसका भाड़ चलता था, लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथानुसार भाड़ ना चलता या गांव के जमींदार पंडित उदयभान पांडे के दाने भूनने होते, उस दिन उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता। पंडित जी उससे बेकार में दाने ही ना भुनवाते, बल्कि उसके घर का पानी भी उसे भरना पड़ता और कभी कभी तो इस तरह से भाड़ बंद ही रहता। वो पंडित जी के गांव में रहती थी, इसीलिए उन्हें उससे सभी तरह की बेगार लेने का अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता, अन्याय केवल इतना था कि बेगार सूखी लेते थे। उनकी धारणा ये थी कि जब खाने को दिया गया तो भला बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बेलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे से भूखा बांध दे। यदि वो ऐसा नहीं करता तो ये उसकी दयालुता नहीं है, केवल अपने हित की चिंता है। पंडित जी को तो उसकी चिंता ना थी, क्योंकि एक तो भुनगी एक दो दिन भूखी रहने से मर नहीं जाती और यदि देवयोग से मर भी जाती तो उसकी जगह कोई दूसरा गौण बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। पंडित जी की क्या यही कम कृपा थी कि वो भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। इस दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। उसे तो सांस लेने की भी फुर्सत न थी। ग्राहकों की जल्दबाजी कभी कभी उसे झुंझला भी देती। इतने में जमींदार साहब के यहां से दो बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुंचे और हुक्म हुआ, भुनगी इन्हें अभी भून दे। भुनगी दोनों टोकरे देखकर सहम उठी। अभी तो दोपहर का समय है और सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भूनना असंभव। घड़ी तो घड़ी और मिल जाते तो एक अठवारे के खाने भर का अनाज हाथ आता। देव से इतना भी ना देखा गया, इन यमदूतों को भेज दिया। अब प्रहर रात तक सैत मैत में भाड़ जलाना होगा। एक निराशा के भाव से उसने दोनों टोकरे ले लिए। तब चपरासी ने उसे डांट कर कहा, सुन देर ना लगाना नहीं तो तुम जानोगी। तब भुनगी ने डरते हुए कहा, तू यहीं बैठ जाओ, जब दाने भुन जाए तो लेकर चले जाना, और किसी दूसरे के दानों को छू तो हाथ काट लेना। तब चपरासी ने कहा, बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाने भुन जाने चाहिए। चपरासी तो ये ताकीद करके चलते बने और भुनगी अनाज भूनने में लग गई। लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई हंसी ठिठोली तो नहीं थी। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता। अतएव तीसरा प्रहर हो गया और आधा काम अब भी पूरा ना हुआ। उसे डर लगा कि जमींदार के आदमी आते ही होंगे, आते ही गालियां देंगे मारेंगे, और उसने वेग से हाथ चलाना शुरू कर दिया। रास्ते की ओर देखती जाती और बालू नांद में डालती जाती, यहां तक कि बालू ठंडी हो गई, सेवड़े तक निकलने लगे। उसकी समझ में ना आया लेकिन कि क्या करे, न भूनते बनता था न छोड़ते बनता था। वो सोचने लगी हे ईश्वर, कैसी विपत्ति है! पंडित जी कौन सी मेरी रोटियां चला देते हैं, कौन मेरे आंसू पोंछ देते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो तब सर पे सवार। इसीलिए ना कि उनकी चार अंगुल धरती से मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल? ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकार पड़े हैं, कितनी बकरियां उजाड़ पड़ी हैं। वहां तो केसर नहीं उपजती, फिर मुझी पर क्यों आठों पहर दोष? कोई बात हुई और यही धमकी, कोई भी बात हुई और यही धमकी कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सर पर कोई होता तो क्या मुझे ये बोछारें सहनी पड़ती? वो इन्हीं विचारों में थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश ध्वनि में कहा, क्योरी दाने भुन गए? तब भुनगी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूँ, देखते नहीं हो क्या? चपरासी बोला, सारा दिन बीत गया और तुझसे इतना सा अनाज ना भूना गया? ये तू दाना भून रही है कि उसे चौपट कर रही है? ये तो बिल्कुल सेवड़े हैं सेवड़े, इनका सत्तू कैसे बनेगा? हमारा सच्चा नाश कर दिया, देख तो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। और परिणाम ये हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया। वो अभागिनी विधवा लाचार हो गई। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा ना रहा। गांव वालों को भी भाड़ के विध्वंस से बहुत ही दुख हुआ। कितने ही घरों में दोपहर को दाना ही ना मयसर होता। लोगों ने जाकर फिर पंडित जी से कहा, पंडित जी बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए। लेकिन पंडित जी, उन्होंने कुछ ध्यान ही न दिया, वो अपना रौब कैसे घटा सकते थे। तब बुढ़िया से उसके कुछ शुभ चिंतकों ने कहा कि जाकर किसी गांव में क्यों नहीं बस जाती। लेकिन भुनगी का हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं करता। इस गांव में उसने अपने जीवन के 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक कोने पेड़ पत्ते से उसे प्रेम था। जीवन के सुख दुख उसने इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय में वो इसे कैसे त्याग दे भला? ये कल्पना ही उसे संकटमय जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से तो यहाँ का दुख ही उसे प्यारा था। इस तरह एक पूरा माह गुजर गया। सुबह का वक्त था। पंडित उदय भान अपने 2-3 चपरासियों को लेकर लगान वसूल करने निकले। कारिंदों पर तो उन्हें तनिक भी विश्वास नहीं था। नजरानों में हो, डांट बांध में हो या रसूम में, वो किसी अन्य व्यक्ति को शरीक ही नहीं करते। बुढ़िया के भाड़ की ओर ताका तो उनके बदन में आग लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। बुढ़िया बड़े ही वेग से उस पर मिट्टी डाल रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही ये काम हाथ में लिया था और सूर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेश मात्र भी शंका ना थी कि मैं जमींदार के खिलाफ काम कर रही हूं। और क्रोध इतना चिरजीवी हो सकता है, इसका ख्याल भी उसके मन में ना था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना कीना रख सकता है, उसे इसका ध्यान भी ना था। वो स्वभावतः मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती। लेकिन हाँ, हतभागिनी, तूने धूप में ही बाल सफेद किए। सहसा उदयभान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से? भुनगी ने डर कर देखा तो सामने जमींदार खड़ा था। उदयभान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है? तो भुनगी डरते हुए बोली, सब लोग ने कहा। तो ही तो बना रही हूं। उदयभान ने कहा, मैं इसे अभी फिर से खुदवा डालूंगा। ये कहकर उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी। मिट्टी गीली थी तो सब कुछ लेकर बैठ गई। दूसरी ठोकर नांद पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब उसे भी क्रोध आया। कमर सहलाते हुए बोली, महाराज तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का तो डर करो। मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पाओगे? इस चार अंगुल धरती में से क्या सोना निकलेगा? मैं तुम्हारे भले की कहती हूँ, दीन की हाय मत लो,
1: मेरा रोआ दुखी मत करो। उदय भान ने फिर कहा, अब तो यहाँ फिर भाड़ ना बनाएगी। भुनगी ने इस पर कहा, भाड़ ना बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? तेरे पेट का हमने ठेका तो नहीं लिया है। भुनगी कहने लगी, टहल तो तुम्हारी ही करती हूँ ना, तो खाने कहाँ जाऊं? गांव में रहोगी तो टहल तो करनी पड़ेगी। टहल तो तभी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी। गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। तो उदय भान ने आदेश दिया, तो छोड़कर निकल जा।
2: क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने से असामी काश्तकार बन जाता है। मैं तो इस झोपड़े में ही बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर, उनके बाप दादे परदादे इसी झोपड़ में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता।
1: तब उदय भान ने खींच कर कहा, अच्छा तो अब तू कानून भी बगाड़ने लगी। हाथ पैर पड़ती तो मैं एक बार रहने भी देता, लेकिन अब तो तुझे निकाल कर ही दम लूंगा। और चपरासियों से कहा, अभी जाकर इसकी पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखें कैसे भाड़ बनता है।
0: और तब एक ही पल में हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर और आकाश से बातें करने लगी। उसकी लपटें किसी उन्मंत की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। और भुनगी, वो अपने भाड़ के पास उदासीन भाव से खड़ी ये लंका दहन देख रही थी। और तभी अकस्मात वेग से वो उसी अग्नि कुंड में जाकर कूद गई। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत ना हुई कि उस आग के मुंह में जाए। और क्षण मात्र में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। और ये वही पल था जिसमें पवन भी वेग से चलने लगी। साए साए की आवाज, ऊर्ध्वगामी लपटे पूर्व दिशा की ओर दौड़ रही थी। भाड़ के समीप किसानों की कई छोटी बड़ी झोपड़ियां सब उस उन्मंत ज्वालाओं का ग्रास बन गई। इस भांति प्रोत्साहित होकर लपटे और आगे बढ़ी। सामने पंडित उदय भान के बखार थे और अब ज्वालाएं उस पर छपटी। गांव में हलचल हुई, आग बुझाने की तैयारियां होने लगी। लेकिन पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़की और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच लिया। देखते ही देखते वो भवन उस नौका की भांति जो उन्मत्त तरंगों के बीच छकोरे खा रही हो अग्निसागर में विलीन हो गया। और वो क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्म आवेश में प्रस्फुटित होने लगी, भुनगी के शोकमय विलाप से भी अधिक करुणकारी थी।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कहानी विध्वंस और कहानीकार प्रख्यात लेखक मुंशी प्रेमचंद, और आवाज दे रही थी मैं, यानी आपकी रेडियो मित्र स्वाति। आप दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं,
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है सत्यदेव दुबे पर।
1: 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।

0: कला कल्लोलिनी, जहां कला लहर बनकर बहती है और कलाकारों की आवाज वक्त की बंदिशों को तोड़कर सदियों तक गूंजती रहती है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे महानायक की जिसने रंगमंच को सिर्फ जिया नहीं बल्कि उसे एक नई परिभाषा दी। आइए मिलकर रुख करते हैं इस कलात्मक सफर की ओर। बहती है जो अनवरत सदियों का इतिहास लिए, रंगों की सुरों की लफ्जों की प्यास लिए, ये भावों की सरिता है, ये सुरमई रागिनी है, कला के अनंत समंदर से उठी ये कला कल्लोलिनी है। कुछ अनकहे किस्से हैं, कुछ जाने पहचाने हैं, कुछ अनकहे किस्से हैं, कुछ जाने पहचाने हैं, ये कभी घुंघरू बनकर छनकती है, कभी चित्र बनकर सजती है, ये कभी नाटक के मंच पर जीवन की हकीकत बनकर गरजती है। समय का पर्दा अब धीरे धीरे सरकने वाला है, इतिहास के पन्नों से एक सितारा मंच पर उतरने वाला है।
1: और आज कला कल्लोलिनी की लहरें हमें बहा कर ले जा रही हैं एक ऐसे समंदर की तरफ जिसने भारतीय रंगमंच को अपनी शर्तों पर जीना सिखाया। एक ऐसा शख्स जिसने नाटक को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा का आत्म साक्षात्कार बना दिया। जी हाँ, आज बात हो रही है पद्म भूषण से सम्मानित आधुनिक भारतीय रंगमंच के कबीर, अक्खड़ फक्कड़ और अद्वितीय नाटककार निर्देशक सत्यदेव दुबे की। आइए शुरू करते हैं उनकी जीवन यात्रा। दोस्तों, समय का पहिया पीछे घूमता है। सन 1936 की 13 जुलाई को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की शांत वादियों में एक बालक ने आंखें खोली। नाम रखा गया सत्यदेव दुबे।
0: घर में कला और संस्कृति का एक अनूठा माहौल पहले से मौजूद था। एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे सत्यदेव के पिता का बिलासपुर में अपना एक स्थानीय सिनेमा हॉल था। उस दौर में जहां आम बच्चों के लिए सिनेमा देखना किसी सपने जैसा होता था, वहीं छोटे सत्यदेव के लिए वह जादुई पर्दा उनका अपना घर था। वो अक्सर अंधेरे हॉल के किसी कोने में बैठ जाते और पर्दे पर चलने वाली कहानियों, लाइव परफॉर्मेंस और इंसानी जज्बातों को बड़े कौतूहल से निहारते। फिल्मों के उन किरदारों को देखकर उनके बाल मन में कहानी कहने और दृश्यों को रचने की समझ अनजाने में ही अपनी जड़ें जमाने लगी थी। लेकिन नियति का खेल भी बड़ा निराला होता है। जिस लड़के को आगे चलकर भारतीय रंगमंच का सबसे बड़ा कप्तान बनना था, उस समय उसका दिल थिएटर के विंग्स में नहीं बल्कि क्रिकेट के हरे मैदान पर धड़कता था। बचपन और शुरुआती लड़कपन के दिनों में सत्यदेव के सिर पर क्रिकेट का भूत सवार था। धूप में तपते हुए हाथ में बल्ला थामे वो गेंद की हर हरकत को वैसे ही भापते थे जैसे आगे चलकर उन्होंने अभिनेताओं के हाव भाव को भापा। वो एक पेशेवर क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखते थे। खेल के मैदान की वो एकाग्रता, अनुशासन और कुछ कर गुजरने की जिद, शायद ये सब उन्होंने क्रिकेट की पिच से ही सीखा था, जिसे उन्होंने बाद में थिएटर के तख्ते पर उतार दिया। किसे पता था कि बिलासपुर के मैदानों पर चौके छक्के लगाने का सपना देखने वाला ये लड़का एक दिन माया नगरी मुंबई की पिच पर उतर कर भारतीय नाटक और सिनेमा की पूरी कप्तानी ही बदल देगा।
1: पिता के सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर से निकलती रोशनी की वो चमकीली लकीर, सिल्वर स्क्रीन पर नाचते हुए किरदार और बिलासपुर की तपती दोपहरी में चमचमाता क्रिकेट का बल्ला, सत्यदेव दुबे का बचपन इन्हीं दिलचस्प रंगों से बुना गया था। बिलासपुर की उस माटी में कुछ अजीब सी कशिश थी। अरपा नदी के किनारे खेलते हुए इस बालक के भीतर शब्दों की एक नदी बहने लगी थी। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई सरकारी ओहदा संभाले, पर नियति ने तो इस बालक के हाथों में रंगमंच की चाबी सौंप रखी थी। दुबे जी का बचपन कोई बहुत ठाट बाट का नहीं था, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी खोज जो उन्हें शांत नहीं बैठने देती थी। वो किताबों में खो जाते, कहानियों के पात्रों को अपने आसपास ढूंढने लगते।
0: बिलासपुर की शांत हवाओं को पीछे छोड़ जब 16-17 साल का वह दुबला पतला लड़का बंबई के खचाखच भरे वीटी स्टेशन पर उतरा तो उसके पास ना तो कोई बड़ा सूटकेस था और ना ही जेब में पैसों की खनक थी, तो बस आंखों में एक अजनबी सी चमक और दिल में कुछ बड़ा कर गुजरने की बेचैनी। सेंट जेवियर्स कॉलेज की ऐतिहासिक इमारत के ऊंचे मेहराबों के नीचे अंग्रेजी साहित्य के पन्नों को पलटते हुए सत्यदेव दुबे के विचारों को नए पंख मिल रहे थे। कॉलेज उनके लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि एक जादुई प्रयोगशाला बन गया था। वहां वह रोज नए विचार गढ़ते थे, लेकिन इस वैचारिक उड़ान के पीछे एक कड़वी हकीकत भी थी, पेट की भूख और खाली जेब। माया नगरी की चमचमाती रोशनियों के बीच इस नौजवान के संघर्ष की कहानी बड़ी बेदर्द मगर बेहद खूबसूरत थी। जब रात को पूरी मुंबई सो जाती तब सत्यदेव के पास सिर छुपाने की कोई छत नहीं होती थी। कई रातें उन्होंने रेलवे स्टेशनों के ठंडे बेंचों पर या फुटपाथ के सन्नाटे में आसमान को चादर बनाकर गुजारी।
1: श्रोताओं कहते हैं ना कि जौहरी की नजर में हीरा कभी नहीं छुप सकता। कॉलेज के इन्हीं कई दिनों के बीच नियति ने उनका हाथ थाम लिया। उनकी मुलाकात रंगमंच के उस दौर के सबसे बड़े पारखी और थिएटर यूनिट के मसीहा इब्राहिम अलकाजी से हुई। अलकाजी साहब ने भीड़ में खड़े इस अखड़ स्वाभिमानी और बेहद प्रतिभाशाली लड़के के भीतर सुलगती कला की चिंगारी को पहली ही नजर में पहचान लिया। उन्होंने सत्यदेव को तराशना शुरू किया और बस यहीं से फुटपाथ के उस फकीर का भारतीय रंगमंच के सुल्तान बनने का आधिकारिक सफर शुरू हो गया। कहते हैं जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो कोई शोर नहीं होता, बस एक गहरी अनंत खामोशी छा जाती है। मुंबई की उस उमस भरी शाम को भी शायद समय कुछ पल के लिए ठहर गया था। ये सिर्फ दो इंसानों की मुलाकात नहीं थी, ये रंगमंच के अतीत और भविष्य का एक ऐतिहासिक आलिंगन था। एक तरफ थे इब्राहिम अलकाजी, अनुशासन का दूसरा नाम, सलीका, संजीदगी और थिएटर का वो कड़क पैमाना जिसे छूना हर किसी के बस की बात नहीं थी, और दूसरी तरफ बिलासपुर की धूल से उठकर आया वो अल्हड़ नौजवान सत्यदेव दुबे।
0: अलकाजी का अनुशासन और दुबे का अनगणनपन, इन दोनों का मिलन ऐसा था जैसे बहती हुई उफनती नदी को एक मजबूत बांध मिल गया हो। अलकाजी ने सत्यदेव को शब्दों का सलीका सिखाया और सत्यदेव ने अलकाजी के रंगमंच को अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू दी। इब्राहिम अलकाजी 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली भारतीय थिएटर निर्देशकों में से एक थे। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से प्रशिक्षित, उन्होंने भारतीय रंगमंच में भारी आधुनिकता और पेशेवर रवैया पेश किया। उन्होंने मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन और गिरीश कर्नाट के तुगलक जैसे 50 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया। 1962 से 1977 तक एनएसडी के प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में अभिनय और रंगमंच की शिक्षा को एक नई दिशा दी। सत्यदेव दुबे एक बहुमुखी रंगकर्मी, अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। 1950 के दशक के मध्य में मुंबई आकर वे इब्राहिम अलकाजी की थिएटर यूनिट में शामिल हो गए। अब अलकाजी एनएसडी के लिए दिल्ली चले गए तो दुबे ने थिएटर यूनिट की बागडोर संभाली। उन्होंने गिरीश कर्नाड, बादल सरकार और विजय तेंदुलकर जैसे नाटककारों के प्रमुख नाटकों का निर्माण किया। 1971 में उन्होंने फिल्म शांतता कोर्ट चालू आहे का निर्देशन किया जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अलकाजी और दुबे के बीच का संबंध सत्यदेव दुबे के रंगमंच करियर की शुरुआत इब्राहिम अलकाजी के सानिध्य में ही हुई थी। दुबे ने थिएटर यूनिट में अलकाजी के मार्गदर्शन में काम किया और बाद में उनके द्वारा छोड़े गए समूह का नेतृत्व भी किया। इसके अलावा दुबे ने ही धर्मवीर भारती के अंधायुग की क्षमता को पहचाना था और उसे अलकाजी के पास भेजा था। अलकाजी ने 1962 में एनएसडी में इस नाटक का मंचन किया, जिसने भारतीय रंगमंच के इतिहास में एक नया प्रतिमान स्थापित किया। ये मुलाकात महज एक इत्तेफाक नहीं थी, ये नियति का वो गुप्त समझौता था जिसने फुटपाथ पर सोने वाले एक भूखे फकीर को भारतीय रंगमंच का शहंशाह बनाने की पहली इबारत लिखी थी।
1: सत्यदेव दुबे ने जब महसूस किया कि हिंदी रंगमंच अपने मूल लेखन की कमी से जूझ रहा है, तो उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने मराठी, कन्नड़, बंगाली भाषा के सर्वश्रेष्ठ समकालीन नाटकों को चुना और उन्हें हिंदी में इस तरह ढाला कि वे नाटक हिंदी भाषी दर्शकों की अपनी रूह का हिस्सा बन गए। गिरीश कर्नाड के हैवदन और ययाति जैसे कन्नड़ नाटकों को हिंदी मंच पर लाकर उन्होंने पौराणिक कथाओं को आधुनिक संदर्भ दिए, तो वहीं बादल सरकार के बंगाली नाटक एवं इंद्रजीत के जरिए उन्होंने उस दौर के युवाओं के भीतर की सामाजिक छटपटाहट और अकेलेपन को आवाज दी। वे सही मायने में भारतीय भाषाओं के बीच एक मजबूत और जीवंत सांस्कृतिक सेतु बन गए थे। दुबे जी का ये दृढ़ विश्वास था कि नाटक भव्य सेट, कीमती पर्दों या भारी भरकम साजो सामान का मोहताज नहीं होता, बल्कि रंगमंच की असली ताकत तो अभिनेता, शब्द और दर्शकों के बीच का सीधा संवाद है। उन्होंने बेहद कम खर्चे में सिर्फ कुछ कर्टन्स, एक दो कुर्सियां और बेहतरीन लाइट अरेंजमेंट के दम पर ऐसे नाटक तैयार किए जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखते थे। उनके इस मिनिमलिस्टिक प्रयोग का सबसे बड़ा उदाहरण अंधायुग का मंचन था, जहां उन्होंने किसी बंद ऑडिटोरियम में भारी भरकम खर्चों के बजाय बाण गंगा के खुले खंडहरों को अपना सेट बनाया और प्रकृति तथा माहौल को ही अपने नाटक का एक जीवंत हिस्सा बना दिया।
0: गुरु इब्राहिम अलकाजी के जाने के बाद दुबे जी ने थिएटर यूनिट को देश की सबसे जीवंत रंग कार्यशाला में तब्दील कर दिया, जहां नाटक सिर्फ शाम को मंच पर दिखाने के लिए नहीं होते थे, बल्कि रोज अभिनय, आवाज के उतार चढ़ाव और शब्दों के उच्चारण पर कड़ा विमर्श होता था। दुबे जी भाषा और संवाद अदायगी को लेकर बेहद सख्त थे और यदि कोई अभिनेता किसी शब्द का उच्चारण गलत करता तो वे पूरे नाटक का रिहर्सल तब तक रोक देते थे जब तक वह शब्द बिल्कुल शुद्ध ना निकले। उनका यह अक्खड़पन और गुस्सा किसी दुर्भावना से नहीं, बल्कि कला के प्रति उनके अगाध समर्पण से पैदा होता था और यही वजह थी कि उनका कड़ा अनुशासन कलाकारों को मांझकर हीरा बना देता था। सत्यदेव दुबे के लिए रंगमंच कोई व्यवसाय या मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि वह एक गहरी दार्शनिक साधना और आत्मखोज का माध्यम था। उन्होंने विजय तेंदुलकर के नाटक गिधारे और सखाराम बाइंडर जैसे नाटकों का निर्देशन किया, जो समाज के पाखंड, मानवीय क्रूरता और दबी हुई कुंठाओं पर बेहद तीखा प्रहार करते थे। इन प्रयोगधर्मी नाटकों को लेकर उस दौर में बड़े विवाद भी हुए और सेंसरशिप की तलवारें भी चलीं, लेकिन दुबे जी कभी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं हुए। उनका मानना था कि नाटक का काम दर्शक को केवल सुलाना या बहलाना नहीं, बल्कि उसकी सोई हुई चेतना को झकझोर कर जगाना है। इसलिए वे रंगमंच और कलाकारों की आत्मनिर्भरता के बहुत बड़े पैरोकार थे। वे हमेशा लोगों से इस बात का आग्रह करते थे कि नाटक को कभी मुफ्त या पास पर नहीं, बल्कि हमेशा टिकट खरीदकर ही देखना चाहिए। उनका मानना था कि जब एक दर्शक टिकट खरीदता है तो वह न केवल कला का सम्मान करता है, बल्कि उस नाटक और कलाकार की आजादी को भी जिंदा रखता है।
1: श्रोताओं, सत्यदेव दुबे सिर्फ पर्दे के पीछे से धागे हिलाने वाले सूत्रधार नहीं थे, उनके भीतर एक ऐसा अभिनेता भी छुपा था जो मंच की खुशबू पाते ही जाग उठता था। अक्सर जब थिएटर की रिहर्सल खत्म होती या शाम को दोस्तों और शागिर्दों की महफिल जमती तो लोग उनसे कुछ सुनाने की जिद कर बैठते। दुबे जी मुस्कुराते, उनके चेहरे की कड़कड़ाहट पल भर में गायब हो जाती और उनकी आंखें किसी गहरे दार्शनिक सोच में डूब जाती। वे हमेशा धर्मवीर भारती के अंधा युग के उस पात्र की पंक्तियां सुनाते जो उनके दिल के सबसे करीब था, अश्वत्थामा। एक ऐसा पात्र जो भटक चुका था, जो कुंठित था, लेकिन जिसके भीतर सत्य को जानने की छटपटाहट थी। जब दुबे जी अपनी बुलंद और भारी आवाज में हाथों को हवा में लहराते हुए ये संवाद बोलते तो कमरे में बैठा हर शख्स अपनी सुध-बुध खो बैठता था।
0: यह मेरा नहीं, यह उस युग का अंधापन है जिसमें हम सब जीते हैं, जिसमें हम सब मरते हैं। मैंने तो सिर्फ उस प्रतिशोध को चुना जो इस समूचे ब्रह्मांड के माथे पर लिखा था। अब न कोई न्याय है, न कोई धर्म है, सिर्फ एक अंतहीन रात है और मैं हूं। इन पंक्तियों को

0: एक ऐसी अद्वितीय पौध तैयार की जो आगे चलकर न केवल थिएटर के स्तंभ बने बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और दिग्गज अभिनेता कहलाए। उनके तराशे हुए हीरो में अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, रत्ना पाठक शाह, अमोल पालेकर और सतीश कौशिक जैसे नाम शामिल थे जिन्होंने अभिनय की परिभाषा ही बदल दी। रंगमंच की इसी धुरी पर काम करते हुए 70 के दशक में सत्यदेव दुबे की मुलाकात मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल से हुई। ये मुलाकात भारतीय समानांतर सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। दोनों की कलात्मक ट्यूनिंग इतनी बेहतरीन थी कि श्याम बेनेगल के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली फिल्मों की आत्मा दुबे जी के शब्द ही बने। दुबे जी ने बेनेगल की कालजयी त्रयी, अंकुर, निशांत और मंथन के संवाद और पटकथा लिखी जिन्होंने भारतीय सिनेमा को यथार्थवाद का एक नया चेहरा दिया। इसके बाद 1977 में आई फिल्म भूमिका के लिए तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। उन्होंने बेनेगल की फिल्म कलयुग की पटकथा पर भी काम किया था।
1: शब्दों का जादू बिखेरने के साथ साथ दुबे जी ने पर्दे पर अपनी अदाकारी का हुनर भी दिखाया। उन्होंने श्याम बेनेगल की ही फिल्म निशांत में एक पुजारी की बेहद जीवंत और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने गोविंद निहलानी की मशहूर फिल्म आक्रोश में भी अभिनय किया। इतना ही नहीं, कला सिनेमा से इतर उन्होंने मुख्य धारा के सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने साई पराजपे की बेहद लोकप्रिय फिल्म चश्मे बद्दूर के तीखे और मजेदार संवाद लिखे और निर्देशक उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे की पटकथा भी तैयार की। सत्यदेव दुबे ने श्याम बेनेगल की टीवी सीरियल भारत एक खोज में चाणक्य और फिल्म निशांत में पुजारी की भूमिका निभाई। पटकथा लेखन से लेकर कैमरे के सामने अभिनय करने तक सिनेमा का ये पूरा सफर उनके बहुमुखी और अक्खड़ कलाकार होने का सबसे बड़ा प्रमाण था। मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल सत्यदेव दुबे को भारतीय कला जगत का एक अद्वितीय और अपरिहार्य स्तंभ मानते थे। वे अक्सर दुबे जी के बारे में कुछ बेहद खास बातें कहा करते थे। बेनेगल अक्सर तारीफ करते थे कि दुबे जी के पास अभिनेताओं को तराशने की एक जादुई कला थी। अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी जैसे दिग्गज कलाकारों को बेनेगल ने अपनी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं दी। वे सब दुबे जी की थिएटर वर्कशॉप की ही देन थे। बेनेगल मानते थे कि दुबे जी जिस अभिनेता पर हाथ रख देते थे वे सोना बन जाता था। श्याम बेनेगल दुबे जी के अक्खड़पन और उनकी फकीरी के मुरीद थे। वे कहते थे कि दुबे एक ऐसे विरल कलाकार थे जिन्होंने कभी पैसों या शोहरत के लिए अपनी कला से समझौता नहीं किया। वे सिनेमा में काम जरूर करते थे लेकिन उनका दिल हमेशा थिएटर के लिए ही धड़कता था। सीधे शब्दों में कहें तो श्याम बेनेगल के लिए सत्यदेव दुबे सिर्फ एक सह लेखक या दोस्त नहीं थे बल्कि वे उन्हें एक ऐसा क्रिएटिव पार्टनर और थिएटर गुरु मानते थे जिसने भारतीय सिनेमा और रंगमंच को सच बोलना सिखाया।
0: श्रोताओं, वो पूरी तरह से एक फकीर और सन्यासी की तरह जिए जिनका एकमात्र धर्म और परिवार सिर्फ और सिर्फ रंगमंच ही था। दुबे जी ने जीवन के आखिरी पड़ाव तक नए लड़कों और लड़कियों को तलाशने और उन्हें तराशने का काम कभी बंद नहीं किया। मुंबई का प्रसिद्ध पृथ्वी थिएटर उनका दूसरा घर बन चुका था। वे घंटों वहां के कैफे में ही बैठे रहते थे जहां कोई भी नया लड़का स्क्रिप्ट लेकर उनके पास आ सकता था। वो बिना किसी फीस के सिर्फ चाय की चुस्कियों पर नए निर्देशकों को नाटक की बारीकियां सिखाते थे। उन्होंने हमेशा नए और युवा नाटककारों को मंच दिया क्योंकि उनका मानना था कि थिएटर को जिंदा रखने के लिए नए खून और नए विचार का आना बेहद जरूरी है।
1: थिएटर और फिल्मों के अलावा दुबे जी ने जन माध्यमों की ताकत को भी बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने धर्मवीर भारती के अंधा युग को न केवल मंच पर उतारा बल्कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी उसके कई प्रयोग किए। उन्होंने ध्वनि और संवाद के उतार चढ़ाव का ऐसा ताना बाना बुना कि बिना दृश्यों के भी सिर्फ आवाज के दम पर दर्शकों के सामने महाभारत के युद्ध का सन्नाटा सजीव हो उठता था। रेडियो नाटक के शिल्प को आधुनिक बनाने में भी उनका यह योगदान अतुलनीय है। वे कभी विवादों से डरे नहीं, बल्कि वे मानते थे कि अगर कला समाज में हलचल ना पैदा करे तो वो कला ही नहीं है।
0: श्रोताओं, भारतीय रंगमंच और कला जगत में सत्यदेव दुबे के अद्वितीय क्रांतिकारी और युगांतकारी योगदान के लिए उन्हें समय समय पर देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। उनकी इस अनूठी नाट्य साधना और कला के प्रति अटूट समर्पण को सर्वोच्च सम्मान देते हुए साल 1971 में देश की सर्वोच्च कला संस्था द्वारा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद भारतीय समानांतर सिनेमा को अपनी लेखनी और संवादों से एक नया और यथार्थवादी धरातल देने के लिए साल 1977 में आई उनकी प्रसिद्ध फिल्म भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके जीवन भर के संघर्ष, अमूल्य योगदान और एक महान मेंटोर के रूप में उनके कद को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें बेहद प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से भी विभूषित किया। आखिरकार उनके इसी फकीराना जज्बे और कलात्मक महानता को सलाम करते हुए साल 2011 में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से अलंकृत किया, जो उनके जीवन की कला यात्रा पर राष्ट्र की ओर से एक गौरवशाली मोहर थी।
1: दुबे जी मुंबई के एक बेहद साधारण से किराए के कमरे में किताबों और नाटकों की स्क्रिप्ट के बीच अपनी फकीरी में मस्त थे। वे अक्सर अकेले ही मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करते या पृथ्वी थिएटर के बाहर एक कप चाय हाथ में थामे घंटों बैठे रहते। उनके जीवन में ना तो पैसों का लालच था और ना ही किसी सांसारिक सुख की चाह। उनका कोई पारंपरिक परिवार नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी कला को ही अपनी संतान और अपना संसार मान लिया था। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, तो उन्होंने हंसकर कहा था, जिसके पास शब्दों का मेला हो और मंच की रोशनी हो, वो भला अकेला कैसे हो सकता है। उनका ये निश्चल समर्पण दिखाता है कि वे सिर्फ नाटक करते नहीं थे, वे खुद में एक जीवंत नाटक थे। सत्यदेव दुबे ने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपनी कलात्मक ऊर्जा और जीवंतता को बनाए रखा, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव पर उनका शरीर थकने लगा था। साल 2011 के सितंबर महीने में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसके बाद वे कोमा में चले गए। इसके बाद अगले कुछ महीनों तक मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चलता रहा। आखिरकार अपनी बीमारी से एक लंबा और संजीदा संघर्ष लड़ने के बाद 25 दिसंबर 2011 को 75 वर्ष की आयु में मुंबई के टोपीवाला राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज और BYL नायर चैरिटेबल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन का कारण लंबे समय से चल रही बीमारी और दिल का दौरा पड़ना था। उनके जाने से भारतीय रंगमंच का एक बेहद प्रखर, निडर और स्वर्णिम युग हमेशा के लिए समाप्त हो गया, लेकिन अपनी कला और विचारों के रूप में वे आज भी हर रंगकर्मी की चेतना में जीवित हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, हिंदी रंगमंच के दिग्गज सत्यदेव दुबे अब हमारे बीच नहीं रहे। रंगमंच के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता अद्भुत थी। यह एक बड़ी क्षति है, उनकी आत्मा को शांति मिले। फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने कहा, थिएटर जगत के दिग्गज सत्यदेव दुबे का देहांत हो गया। साथ साथ घूमने फिरने के दिनों की प्यारी यादें मुझे घेर लेती हैं। अलविदा दुबे जी, ढेर सारा प्यार। निर्देशक केन घोष ने कहा, सत्यदेव दुबे के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उन्होंने बड़ी विनम्रता से इश्क विश्क की नई कास्ट के साथ एक एक्टिंग वर्कशॉप आयोजित की थी। शांता गोखले उन्हें याद करते हुए कहती हैं
0: कि सत्यदेव दुबे को बहस छेड़ना बहुत पसंद था और उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब वो युवा रंगमंच कलाकारों को अपने विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने के बजाय प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित कर पाते थे। आधी सदी से भी अधिक समय में उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी में 100 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया, युवा नाटककारों की खोज की और उन्हें अपनी रचनाओं को फिर से लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही अभिनेताओं की कई पीढ़ियों को प्रशिक्षित भी किया। आप हमेशा कलाकारों और अभिनेताओं के दिलों में मशाल बनकर जलते रहेंगे। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने सत्यदेव दुबे को अपना थिएटर गुरु माना है। वो अक्सर याद करते हैं कि कैसे दुबे जी ने उन्हें मंच पर बिना डरे संवाद बोलना और अपनी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करना सिखाया। उन्होंने दुबे जी को एक निडर, स्पष्टवादी और रंगमंच के प्रति जुनूनी व्यक्ति बताया।
1: सत्यदेव दुबे अक्सर कहा करते थे कि एक सच्चे अभिनेता का काम केवल संवाद बोलना या चेहरे पर मुखौटा लगाना नहीं है। उनके लिए अभिनय एक आत्मसमर्पण था। वे कहते थे, एक अच्छा अभिनेता वह नहीं है जो मंच पर आकर खुद को दिखाए, बल्कि वह है जो मंच पर आकर अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा दे और उस पात्र को अपने भीतर जीने दे। अभिनेता का शरीर और उसकी आवाज सिर्फ एक माध्यम है, असली खेल तो उसकी आत्मा की ईमानदारी का है। सत्यदेव दुबे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारतीय कला जगत उनके जिक्र के बिना हमेशा अधूरा रहेगा। वे एक ऐसे फकीर थे जिन्होंने कभी महलों की चाह नहीं की, क्योंकि उनके हिस्से में मंच की वो जादुई रोशनी थी जो इतिहास बदल देती है। उन्होंने सिनेमा को दिग्गज अभिनेता और कालजयी शब्द दिए और हमें सिखाया कि कला कभी मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज को झकझोरने के लिए होती है। तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में आज इतना ही। अगले भाग में हम आपको फिर ऐसे ही महान शख्सियत से रूबरू कराएंगे। रंगमंच के कबीर फिल्मकार और नाटककार सत्यदेव दुबे जी पर चर्चा आपको पसंद आई होगी। अब समय है आपसे विदा लेने का। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी और मैं था दानिश, और लेखन दीपक नेमा।
0: आपके लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मैंने यानी मनीषा,
1: और मैं दानिश। नमस्कार।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 MHz पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है पंडित जसराज पर।

श्रोताओं, पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 में हिसार में हुआ और इस फानी दुनिया को उन्होंने अलविदा कहा 17 अगस्त 2020 में।

1962 में पंडित जसराज का विवाह हुआ मधुरा शांताराम जी से, जो बेटी रही मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक वी शांताराम जी की।

जिन अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया उनमें प्रमुख हैं 1975 में पद्मश्री, 1987 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, 1990 में पद्म भूषण और सन 2000 में उन्हें सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो,

0: कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है आज़ादी का महापर्व, इस पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट।
1: जय हिंद।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन सभागार में, जहां स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व कार्यक्रम के तहत प्रस्तुति हुई प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति की।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन सभागार में।
1: जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का।
2: प्यार भरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। ये मेरे सौभाग्य कि आज ऐसे मीठे वाले दिन में मुझे गाने का मौका मिल रहा है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब साल की शुरुआत होती है और 15 अगस्त को मुझे गाने का मौका मिलता है, मुझे लगता है कि ईश्वर ने बहुत मेरे पर कृपा की। और आप जैसे लोग जो भोपाल हम जानते हैं, भोपाल इतना कल्चरली कॉन्शियस है, यहाँ पे शास्त्रीय संगीत की इतना प्रचार है इस स्टेट में और भोपाल में, आज के दिन मैं यहाँ गा रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर टुडे। मैं सबसे पहला जो गीत गा रही हूँ ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत निर्देशन में मैं गा रही हूँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहला गाना दिया था और ये मैंने फिल्म भैरवी के लिए गाया, जिसके शब्द, बहुत सुंदर शब्द अमित खन्ना साहब ने लिखा है। इसी गीत से शुरुआत कर रही हूँ।

0: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: ये थी रेडियो रिपोर्ट आजादी का महापर्व की। फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आजादी की रण
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए अब प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान पर केंद्रित कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा।
1: बांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
3: राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को कपूरथला के राज परिवार में हुआ था। उनकी प्रबल इच्छा थी कि वे भारत को विदेशी सत्ता से मुक्त होते हुए देखें और इस दिशा में कार्य करें। उनकी इस इच्छा को बढ़ावा दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोखले जी की मार्फत ही वे गांधी जी से मिली। अपने माता पिता के स्वर्गवास के बाद उन्होंने गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में भाग लेना शुरू कर दिया। गांधी जी के निर्देशन में उन्होंने पंजाब के बुनकर संघों को व्यवस्थित करने, जालंधर जिले के ग्राम उद्योगों को पुनर्गठित करने, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, निरक्षरता जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और स्त्रियों की दशा सुधारने जैसे कार्यों को बखूबी अंजाम दिया। गांधी जी की प्रेरणा से वे कांग्रेस में शामिल हुई और नमक सत्याग्रह में भाग लेकर गिरफ्तार हुई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और कारावास की यातनाएं भी सही। भारत के स्वतंत्र होने पर वे देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री बने। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना का श्रेय भी राजकुमारी अमृत कौर को ही जाता है। उनका मानना था कि भारत की प्रगति बालकों के चरित्र निर्माण और उत्थान से संभव है। एक सक्रिय और समर्पित राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता का जीवन जीने के बाद 6 फरवरी 1964 को नई दिल्ली में उनका देहांत हो गया।
4: आज शाम 7 बजे सुभाष चौक में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन है। अधिक से अधिक संख्या में आए और लाभ उठाए। आज शाम 7 बजे सुभाष चौक में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन है।
5: अरे नमस्कार राम भरोसे काका।
6: नमस्कार नमस्कार भैया, क्या बात है, आज दोनों अकेले ही? साथी लोग कहाँ हैं?
5: वो सब आपकी दुकान पर है, हम तो न्यूज़पेपर लेने चले आए थे। कहाँ से आ रहे हैं काका?
6: मैं दिल्ली से लौट रहा हूँ।
5: इसीलिए 2 दिन से आप दुकान पर दिखे नहीं, पर ये अचानक दिल्ली जाने का कार्यक्रम कैसे बन गया?
6: अरे वो अपने चौक वाले दीनू काका है ना, उनकी बहू विमला माँ बनने वाली है और उसको पीलिया हो गया है। डॉक्टर ने दिल्ली ले जाने को कहा था तो उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती करवा के आ रहा हूँ।
5: क्या वो बहुत बड़ा अस्पताल है काका?
6: हाँ बड़ा है और सुविधाजनक भी, वहाँ कई बीमारियों का इलाज होता है। बहू का इलाज शुरू हो गया है, अरे उसे फायदा भी है।
5: इतना अच्छा संस्थान किसने बनवाया काका?
6: बेटा इसकी स्थापना राजकुमारी अमृत कौर ने की थी।
5: राजकुमार और राजकुमारी ही तो बनवा सकते हैं ये सब, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है?
6: अरे अमृत कौर वैसी राजकुमारी नहीं थी।
5: फिर कैसी थी?
6: चलो पहले दुकान चलते हैं, फिर विस्तार से बताऊंगा तुम्हें।
7: क्यों रे छोटू, आधे घंटे से तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू कहाँ भटक रहा था?
5: बस स्टैंड ही गया था, काका से पूछ ले। और ये ले अखबार।
8: अरे राजू भाई चाय पिलाओ यार, बढ़िया अदरक वाली।
7: अच्छा छोटू मैं चलता हूँ।
5: अरे रुक जा, आज काका राजकुमारी अमृत कौर के बारे में बताएंगे।
9: भैया चाय ले लो, चाय ले लो भैया।
5: हाँ ले, चाय भी आ गई, चल बैठ। हाँ तो काका, उनका नाम राजकुमारी अमृत कौर था। और
6: अमृत कौर सिर्फ नाम की राजकुमारी नहीं थी बेटा, अपने कामों से उसने लोगों के दिल पर राज किया। अमृत कौर के पिता पंजाब की रियासत कपूरथला के राजा के बेटे थे। अमृत कौर की माँ सामाजिक कार्यकर्ता थी, अपनी माँ से उसने समाज सेवा का पाठ सीखा। राजकुमारी अमृत कौर की शिक्षा इंग्लैंड में हुई।
8: हाँ भैया राजकुमारी जो थी,
6: लेकिन उनका मन तो भारत में रमता था, वो भारतीय संस्कृति के रंग में रंगी हुई थी।
10: राजकुमारी अमृत, यू आर ग्रेट, तुम इंग्लैंड की नंबर 1 प्लेयर हो, यह हमारे कॉलेज के लिए फक्र की बात है। तुम क्रिकेट और हॉकी दोनों की ही कैप्टन हो, तुम्हें बेस्ट प्लेयर ऑफ इंग्लैंड का अवार्ड दिया जाता है।
11: मैं इस समय अपनी माँ को याद कर रही हूँ, जिन्होंने मुझे अपने सारे कामों की शक्ति दी। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
10: अमृत कौर, आप भविष्य में इंग्लैंड के लिए खेलती रहेंगी या कुछ और भी इरादा है, मतलब शादी वादी?
11: नहीं नहीं, शादी तो कतई नहीं, वो जिंदगी भर चलता रहेगा। मेरी नजर अपने भारत पर है, उस सरजमी को मेरी जरूरत है और मुझे उसकी।
10: अमृत कौर की भारत को ही नहीं इंग्लैंड को भी उतनी ही जरूरत है। ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व जिसने हमारे ब्रिटेन का नाम रोशन किया, हमारी युवाओं के लिए प्रेरणा बनी। धन्य है भारत देश जिसने ऐसे महारथियों को पैदा किया।
11: मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने मेरे नाम से एक अवार्ड शुरू किया, और चाहती हूँ इस अवार्ड में जात पात रंग भेद का भेदभाव ना हो, ये योग्यता और व्यक्तित्व के आधार पर दिया जाए। और जो मुझे आज ये सम्मान राशि दी गई है, उसे मैं कॉलेज के विकलांग छात्र एल्विन के लिए समर्पित करती हूँ।

0: और एक दिन इंग्लैंड का जहाज भारत जाने को तैयार था। इंग्लैंड वासी और दूसरे नागरिक अपनी प्रिय साथी को भावभीनी विदाई दे रहे थे।
1: आप जा तो रही हैं भारत, पर यहाँ आपको हम सब बहुत मिस करेंगे। ये देखिए, दोनों स्टूडेंट फेडरेशन के सारे मेंबर्स आपको विदाई देने आए हैं।
2: अलविदा दोस्तों, दोस्ती की महक भारत से इंग्लैंड तक पहुंचती रहेगी। सबकी जय हो, अनीति का नाश हो। अलविदा, फिर मिलेंगे।
0: और भारत लौटने के बाद वो सीधी पंजाब के कपूरथला रियासत के एक गांव में पहुंची।
2: भाइयों, मेरे स्वागत और सम्मान में जो भव्य समारोह आप करने की बात कर रहे हैं, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। वो सारा पैसा आप गांव के विकास में लगाइए।
3: राजकुमारी अमृत कौर की
4: जय।
3: राजकुमारी अमृत कौर की
4: जय।
3: राजकुमारी अमृत कौर की
4: जय।
2: मैं देख रही हूँ भारत में महिलाओं की दशा अच्छी नहीं है। अब हम सबको मिलकर लड़कियों की शिक्षा और उनके समग्र विकास के लिए काम करना होगा। लोगों को जागरूक करना होगा। मैं 20,000 रुपया गांव के खेल मैदान और स्कूल के लिए देना चाहती हूँ।
3: राजकुमारी अमृत कौर की
4: जय।
3: राजकुमारी अमृत कौर की
4: जय।
3: राजकुमारी अमृत कौर की
4: जय।
0: अमृत कौर महिलाओं के उत्थान के लिए जुट गईं और इस महायज्ञ में कई लोगों को शामिल कर लिया। छोटे छोटे गांव कस्बों तक पैदल यात्रा की।
5: राजकुमारी जी, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? मुझ असहाय पर कोई दया नहीं करता, सब मुझे पापी कहते हैं।
2: अरे उठो, कौन हो तुम? रो मत बहन, रोने से कुछ नहीं होगा। बोलो क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
5: मैंने प्रेम विवाह किया था। हम दोनों कुछ दिन साथ रहे, फिर एक दिन अचानक मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैंने उसके बच्चे को जन्म दिया, लेकिन लोग मुझे गांव में नहीं रहने देते। मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैं कोई पापी नहीं हूँ दीदी, मैं पापी नहीं हूँ।
2: हाँ, तुमने कोई पाप नहीं किया। किसी से प्रेम करना पाप नहीं है, ईश्वर ने हमें सबसे प्रेम करना सिखाया है। चलो, तुम्हारे बच्चे की परवरिश मैं करूंगी। चलो चल पड़ो, रुको मत। जीवन के सत्य को स्वीकारो, प्रेम के प्रकाश को सब में बांट दो। आइए पिताजी।
6: अरे बेटी, क्या कर रहे हो? अरे देखो, ये किताब देखो। गोपाल कृष्ण गोखले कल ही दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं और गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन पर लिखी ये पुस्तक तुम्हारे लिए दी है।
2: ये मेरे जीवन में एक नया मोड़ है। अफ्रीका में लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं पिताजी। मैंने एक प्रण किया है।
6: बोलो बेटा।
2: मुझे सौगंध है गीता की, सौगंध है बाइबल की। मैं अविवाहित रहकर लोगों की सेवा करूंगी।
6: ठीक है, हम मैं आगे क्या बोलूं? ईश्वर तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो और बढ़ते चले जाओ इस सेवा मार्ग पर। बढ़ो और आगे बढ़ो।
2: पिताजी, माँ की जनसेवा मैंने बचपन से देखी है। आपके त्यागी स्वभाव ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। मैं जीवन के अंतिम क्षण तक इस सेवा मार्ग पर चलती रहूंगी।
6: देखो बेटा, ऐसा काम करो जिससे इस दुनिया में जरूरतमंद गरीब लोगों का कल्याण हो। राह में कांटे जरूर मिलेंगे, पर तुम्हें निडर होकर यह कार्य करना होगा, समझे बेटा?

0: राजकुमारी जी, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। उनका कहना है हम राजकुमारी जी से मिले बगैर नहीं जाएंगे यहाँ।
1: पिताजी, सबसे पहले तो आप सबसे ये कह दीजिए कि मुझे राजकुमारी कहकर संबोधित नहीं करें। मैं सिर्फ अमृत कौर हूँ, मैं सब लोगों की बहन बेटी हूँ बस। हाँ, आप चलिए और उनसे कहिए परेशान ना हो, मैं उनसे अवश्य मिलूंगी।
2: वाह बेटी वाह, तुम्हारी बातें सुनकर मैं अभिभूत हो उठता हूं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईश्वर सबको तुम जैसी बेटी दे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे सभी प्रयत्नों में तुम्हारा साथ दे।
3: गांधी जी के भारत लौटने पर अमृत कौर ने उनसे कई बार भेंट की।
0: महात्मा गांधी की
4: जय।
0: महात्मा गांधी की
4: जय।
0: महात्मा गांधी की
4: जय।
1: बापू, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे मिलने की कई दिनों से इच्छा थी, आज सौभाग्य मिला। आपके साउथ अफ्रीका के सत्याग्रह से मैं अभिभूत हूँ। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है।
5: बेटा, सीखा है तो और लोगों को सिखाओ। सेवा मार्ग सबके लिए है। अपने पति को इस काम के लिए प्रेरित करो।
1: मैंने अविवाहित रहने का प्रण किया है। मैं गरीबों और असहायों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहती हूँ।
5: अरे, तुम कह रही थी मुझसे तुमने बहुत सीखा है, अब मैं तुमसे सीख रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आओ देखो, ये कुष्ठ रोगी, इन्हें सहानुभूति नहीं, इन्हें तो स्नेह चाहिए।
1: लाइए, मुझे दीजिए, मैं मलहम लगा देती हूँ। आओ इधर आओ। आज मेरे मन को कितनी शांति मिल रही है। मैं आपसे मिलकर धन्य हूँ बापू।
5: तुम्हारा नाम ही सिर्फ अमृत नहीं है, तुम्हारे पास प्रेम का अमृत भी है। उस अमृत को बांटते चलो। जीवन की सत्यता इसी में है।
1: आज मुझे मेरे गुरु मिल गए। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे आज दीक्षा मिल गई। बताइए, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं?
5: तुम लोगों के लिए जियो और ऐसे काम करो कि मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूं, तुमसे हमेशा प्रेरित रहूं। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी।
1: बापू, मैं नतमस्तक हूं। मेरा मानव जीवन सफल हो गया।
3: और राजकुमारी अमृत कौर निकल पड़ी अकेली, गाते हुए, एकला चोलो रे। और आंधी तूफान सबसे जूझते हुए उनके कदम आगे बढ़ते रहे। कई बार अमृत कौर ने गांधी जी से साबरमती आश्रम में रहने की अनुमति मांगी, पर गांधी जी ने कहा, बेटी तुम घर पर रहो और माता पिता की सेवा करो। 1924 में अमृत कौर की माता और 1930 में पिता का स्वर्गवास हो गया।

0: पिताजी आप चले गए और मां भी। नहीं, ये आंसू नहीं, श्रद्धा सुमन है। मां, अब मेरे जीवन का हर पल जनसेवा के लिए होगा, भारत देश के लिए होगा। मेरा अगला कदम बुनकर और हरिजन कल्याण के लिए होगा।
1: 23 दिसंबर 1932 राजकुमारी अमृत कौर अखिल भारतीय महिला मंच को संबोधित कर रही थी।
0: मेरी प्यारी बहनों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने हमारे देश में सांप्रदायिकता का जहर घोला है। आज मैं अखिल भारतीय महिला मंच से उसका जोरदार विरोध करती हूँ।
1: राजकुमारी अमृत कौर 16 वर्ष तक महात्मा गांधी की सचिव रहीं और कई आंदोलनों का संचालन किया।
0: आगे बढ़ो, चलो, अब हमें बंदूक तोप लाठियां कोई नहीं रोक सकता। हम आजादी लेकर रहेंगे। अंग्रेजों
2: भारत छोड़ो,
0: अंग्रेजों
2: भारत छोड़ो,
0: अंग्रेजों
2: भारत छोड़ो।
0: महात्मा गांधी की
2: जय,
0: महात्मा गांधी की
2: जय,
0: महात्मा गांधी की
2: जय।
1: उन्हें सरकार ने कालका में गिरफ्तार कर लिया, फिर वहां से अंबाला जेल में भेज दिया। जेल में एक संतरी उनका हाल चाल पूछने आया, तब उन्होंने कहा,
0: अंबाले की इस काल कोठरी में मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। मैं, बाइबल, गीता और पानी का एक बर्तन। बाहर सरकार हमें तंग कर रही थी और जेल में चूहे। दोनों में अंतर नहीं है, जेल में गंदगी और खराब भोजन भी हमारे साथी हैं।
3: बीबी जी, आपका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, आप जेलर से निवेदन कर लें तो आपको रियायत मिल सकती है।
0: नहीं चाहिए, मुझे रियायत नहीं चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, संपूर्ण आजादी।
1: और फिर वो दिन भी आया, 15 अगस्त 1947, जब हम आजाद हो गए, हमें आजादी मिल गई।
0: भाइयों, देश आजाद हो गया, हम सबके लिए कितनी खुशी की बात है। पर अभी हमारे सामने कठिनाइयों के पहाड़ खड़े हैं, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। अब हमें इनसे लड़ना है।
4: राजकुमारी अमृत कौर की
2: जय,
4: राजकुमारी अमृत कौर की
2: जय,
4: राजकुमारी अमृत कौर की
2: जय।
0: नहीं, जयकार मेरी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जय बोलो भारत माता की, जय उन शहीदों की जिनके बलिदान से हम आजाद हुए और आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जय हो जनता जनार्दन की, भारत माता की
2: जय,
0: भारत माता की
2: जय।
3: अमृत कौर जी, अब आपकी आगे की क्या क्या योजनाएं हैं?
0: सबसे पहले मैं पूरे भारत देश का दौरा करना चाहती हूँ। सांप्रदायिकता का ये बीज जो अंग्रेज बो गए हैं, उसे जड़ से उखाड़ना होगा। हम मिलकर रहेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा।
5: हम सब आपके साथ हैं, युवा पीढ़ी आपके साथ है।
0: तो बस, अब और कुछ नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, वीर दल सजा रहे। वीर तुम बढ़े चलो।
1: एक राजघराने से ताल्लुक रखने वाली राजकुमारी चाहती तो सारे ऐशो आराम पा सकती थी, पर नहीं, उसने तो गांधी जी की राह पकड़ ली। वैभव विलास को छोड़ जेल में चक्कियां पीसने का काम किया, अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया, गरीब असहाय लोगों के लिए।
6: काका, राजकुमारी अमृत कौर आजादी के बाद कहां रही और उन्होंने क्या किया?
1: अमृत कौर ने आजाद भारत में पहली स्वास्थ्य मंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। देश को आजादी तो मिल चुकी थी पर जनता के सामने बहुत समस्याएं थी। अमृत कौर ने सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे संतु निरामय वाला रास्ता पकड़ा और चल पड़ी फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे संस्थान की स्थापना की।
0: भाई देखिए, हमारा देश तो आजाद हो गया पर अभी भी हम बाल विवाह, पर्दा प्रथा, निरक्षरता जैसी कुरीतियों के गुलाम हैं। और इन सबसे लड़ने के लिए पहले इस देश की स्त्री को साक्षर होना होगा। माँ साक्षर होगी तब पूरा परिवार साक्षर होगा।
3: और राजकुमारी जी, दीपावली नजदीक है, सारा देश दिवाली मनाने को बेताब है। आप भी कुछ दिन आराम कीजिए, आप तो लगातार काम में लगी हैं, कहीं आप स्वयं अस्वस्थ ना हो जाएं।
0: सेक्रेटरी साहब, मुझे मेरे कामों से ही ऊर्जा मिलती है, अगर आराम करने बैठ गई तो बीमार हो जाऊंगी। हमें अज्ञानता के अंधेरों को दूर कर शिक्षा की रोशनी पूरे देश में फैलानी है।
3: अरे सुनो, आप लोग कहाँ चले आ रहे हैं? आप कल आना, मंत्री जी अभी व्यस्त हैं।
0: अरे आने दीजिए उन्हें, आइए कहिए क्या बात है। लीजिए लीजिए, पहले पानी पी लीजिए।
6: जी मंत्री जी, मैं एक आम आदमी हूँ, हमारे कस्बे के बच्चों को शिक्षा की पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है, बच्चे गलत रास्तों पर जा रहे हैं।
0: आश्चर्य, ये बात मेरे कानों तक क्यों नहीं पहुंची? सेक्रेटरी साहब।
3: जी मैम।
0: ये क्या चल रहा है, इन महाशय को मुझ तक पहुंचने का मौका क्यों नहीं मिला?
3: नहीं वो वैसी बात नहीं मैडम, वो
0: मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। आज ही इनकी समस्या पर गौर कर अभी से अमल कीजिए। अरे अरे, भारत की प्रगति बालकों के चरित्र निर्माण और उत्थान से ही संभव है।
1: अमृत कौर एक दिन गहरी नींद में सो रही थी, तभी उन्होंने एक सपना देखा।

0: औरत कौन?
1: कौन है? कौन है? कौन मेरे ही यज्ञ में विघ्न डाल रहा है?
0: मैं हूं यमराज। उठो, जागो, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। तुम्हारे पुण्य कर्मों का घड़ा भर गया है, अब छलक रहा है, तुम्हारा जीवन पूरा हुआ, चलो स्वर्ग चलो।
1: नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे बहुत काम करने हैं, बहुतों को मेरी जरूरत है। मैं मृत्यु से नहीं डरती, पर अपने अधूरे कामों को छोड़कर नहीं जा सकती।
0: तुम्हें यमराज का आदेश मानना ही होगा, चलो मेरे साथ।
1: ठीक है, मैं मृत्यु का वरण करने को तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है।
0: मुझे भी मंजूर है, बोलो।
1: मुझे दोबारा मानव जन्म मिले और भारत में ही फिर से अपने भाई बहनों की सेवा करती रहूं जन्मों जन्मों तक।
0: ठीक है, पर तुम अमृत कौर बनकर दोबारा जन्म नहीं ले सकती। हर जन्म में नया रूप लेकर आओगी। जब रोगियों के घावों को जो सहलाएगा वो हाथ तुम्हारा होगा। जब भी अत्याचारियों के खिलाफ कोई आवाज उठाने आगे आएगा उसकी आत्मा में तुम रहोगी। चाहता हूं मैं फिर आऊंगा, तब तक तुम अपने काम निपटा लो।
2: देखा तुम लोगों ने, कर्म ही उनके लिए पूजा थी, और लगातार काम करते करते कब जीवन की संध्या हो गई पता ही नहीं चला उन्हें। 75 वर्ष पूरे कर ये सूर्य अस्त हुआ, और अस्त होते हुए सूर्य ने कहा था, जीवन नाम ही चलने का है।
3: वाह काका, आज का दिन सार्थक हो गया।
2: बेटा, सार्थकता तो तब मानी जाएगी जब हम सार्थक काम करें। तो चलो, शहर में स्वास्थ्य शिविर लगने वाला है, लोगों को जानकारी दो, स्वस्थ रहे घर तेरा मेरा, तभी होगा सच्चा सवेरा।
4: निर्देशन मॉरिस लाजरस, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: यह है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप ध्रुव संगारी बिलाल चिश्ती को इस पे सुन रहे हैं। रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के अमर कथाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की।
3: हिंदी साहित्य के विशाल आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनकी आभा समय बीतने के साथ और अधिक उज्जवल होती जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने कम लिखा किंतु इतना उत्कृष्ट लिखा कि उनका नाम अमर हो गया। ऐसे ही महान साहित्यकारों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे हिंदी की आधुनिक कहानी के अग्रदूत में गिने जाते हैं। आज शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम के इस अंक में हम बात कर रहे हैं हिंदी के साहित्य के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और बहुमुखी प्रतिभा संपन्न चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की।
2: गुलेरी जी बहुभाषाविद, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, निबंधकार, आलोचक, संपादक और विद्वान शिक्षक भी थे। उन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, बंगला और मराठी जैसी अनेक भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। वे भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान थे। उन्होंने प्राचीन अभिलेखों, शिलालेखों और भारतीय सभ्यता का गंभीर अध्ययन किया। उनका मानना था कि अपने इतिहास को जाने बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता।
3: हिमाचल प्रदेश के गुलेर नामक गांव के वासी ज्योतिर्विद महा महोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री जी की तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी ने 7 जुलाई 1883 में चंद्रधर को जन्म दिया। घर में बालक को संस्कृत भाषा, वेद, पुराण आदि के अध्ययन, पूजा पाठ, संध्या वंदन तथा धार्मिक कर्मकांड का वातावरण मिला और मेधावी चंद्रधर ने इस सभी संस्कारों और विद्याओं को आत्मसात किया। जब गुलेरी जी 10 वर्ष के ही थे कि इन्होंने एक बार संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया था। पंडित कीर्तिधर शर्मा गुलेरी का यहाँ तक कहना था कि वे 5 वर्ष में अंग्रेजी का टेलीग्राम अच्छी तरह पढ़ लेते थे। चंद्रधर ने सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। चंद्रधर बीए की परीक्षा में सर्वप्रथम रहे।
2: सन 1904 ईस्वी में गुलेरी जी मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। चंद्रधर का अध्यापक के रूप में बड़ा ही मान सम्मान था। अपने शिष्यों में चंद्रधर लोकप्रिय तो थे ही, इसके साथ अनुशासन और नियमों का भी वे सख्ती से अनुपालन करते थे। उनकी असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस बुला भेजा और हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिलाया। आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहे।
3: कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण करने के बाद चाहते हुए भी वे आगे की पढ़ाई परिस्थितिवश जारी न रख पाए। हालांकि उनके स्वाध्याय और लेखन का क्रम अबाध रूप से चलता रहा। 20 वर्ष की उम्र के पहले ही उन्हें जयपुर की वेदशाला की जीर्णोद्धार तथा उससे संबंधित शोध कार्य के लिए गठित मंडल में चुन लिया गया था और कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स शीर्षक में अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की।
2: हिंदी साहित्य के प्रख्यात साहित्यकार थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 20 वर्ष की उम्र के पहले ही उन्हें जयपुर की वेदशाला के जीर्णोद्धार तथा उससे संबंधित शोध कार्य के लिए गठित मंडल में चुन लिया गया था और कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स शीर्षक से अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की।
3: अपने अध्ययन काल में ही उन्होंने सन 1900 में जयपुर में नगरी मंच की स्थापना में योगदान दिया और सन 1902 से मासिक पत्र समालोचक के संपादन का भार भी संभाला। प्रसंगवश कुछ वर्ष काशी की नागरी प्रचारणी सभा के संपादक मंडल में भी उन्हें सम्मिलित किया गया। उन्होंने देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला और सूर्य कुमारी पुस्तकमाला का संपादन किया और नागरी प्रचारणी सभा के सभापति भी रहे।
2: पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्याकाश के दीप्यमान नक्षत्र हैं, जो मात्र एक कहानी उसने कहा था कि बल पर हिंदी साहित्य के संपर्क में आने वाली पीढ़ियों के स्मृति पटल पर छाए रहे हैं। पूर्व दीप्ति शैली में लिखी इनकी ये कालजयी रचना निस्वार्थ प्रेम, बलिदान और त्याग की अमर गाथा है। लेकिन गुलेरी जी ने अपने पूरे साहित्यिक जीवन में केवल एक कहानी नहीं लिखी थी। 1911 ईस्वी में उनकी दो अन्य कहानियां भी प्रकाशित हुई थीं, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। कथ्य और शिल्प की दृष्टि से ये दोनों कहानियां भी अपने समय की अद्भुत कहानियां थीं।
3: इन तीनों कहानियों के पात्र साधारण हैं। इन साधारण पात्रों को लेकर गुलेरी जी ने असाधारण सौंदर्य की सृष्टि की। जीवन की जिन स्थितियों के चित्र उन्होंने अपनी कहानियों में चित्रित किए वे आज भी नवीन हैं। साहित्य की विशिष्टता क्षण क्षण नए सौंदर्य के प्रकट करने में है। मौलिकता ही वह तत्व है जो किसी रचना को नित्य नया सौंदर्य प्रदान करती है। गुलेरी जी की तीनों कहानियां मौलिक होने के साथ साथ परिस्थितियों पर इच्छा शक्ति की विजय की रचनाएं हैं, इसलिए ये आज भी ताजगी और ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। हिंदी साहित्यकाश के जगमगाते नक्षत्रों के मध्य इन उत्कृष्ट कहानियों के रचनाकार के रूप में गुलेरी जी का यह यश ध्रुव तारे की तरह सदा अटल रहेगा। जहां अनेक लेखक लंबी लंबी रचनाएं लिख रहे थे, वहीं गुलेरी जी ने कम लिखकर भी अमर स्थान प्राप्त किया। उनकी प्रत्येक रचना गुणवत्ता की दृष्टि से अत्यंत उच्च स्तर की है।
2: गुलेरी जी भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के समर्थक थे। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान और नैतिक मूल्यों की स्थापना दिखाई देती है। वे शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम मानते थे। उनकी रचनाओं में मनुष्य सर्वोपरि है। जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर उन्होंने मानवता को महत्व दिया। उनका विश्वास था कि सच्चा साहित्य वही है जो मनुष्य को बेहतर इंसान बना सके।
3: हिंदी के अनन्य आराधक और बहुआयामी प्रतिभा के धनी अमर कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा जी का साहित्यिक जीवन 20वीं शताब्दी के उन्मेष से प्रारंभ होता है। यह समय पुरातत्व इतिहास तथा भाषा विज्ञान संबंधी अनुसंधानों का था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मैथिली शरण गुप्त जैसे साहित्य सेवी इस समय अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुके थे। ऐसे साहित्यिक परिवेश में गुलेरी जी भी समालोचक, सरस्वती, अभ्युदय एवं आनंद कादम्बिनी जैसी पत्रिकाओं के विशेष रूप से जुड़कर हिंदी जगत के बौद्धिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गए थे।
2: विजेंद्र स्नातक के शब्दों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और एकता प्रियदर्शनी हिंदी के उत्कृष्ट विद्वान थे। उन्होंने पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक संबंधों से परिपूर्ण विषयों पर सामान्य भाषा में निबंध लिखे, किंतु भाषा प्रौढ़, परिमार्जित एवं विषय अनुकूल है। कछुआ धर्म और मोरेसी मोही कुठाऊ इनके बहुचर्चित निबंध हैं। इसके अलावा उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निबंधों की बात करें तो शैशुनाग की मूर्तियां, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म और आँख। कविताओं की बात करें तो एशिया की विजयदशमी, भारत की जय, वैनाक, वर्ण, अहिताग्नि, झोंकी कमान, स्वागत और ईश्वर से प्रार्थना। कहानी संग्रह की बात करें तो उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा।
3: उस युग के कई अन्य निबंधकारों की तरह गुलेरी जी के लेखन में भी मस्ती तथा विनोद भाव की एक अंतरधारा लगातार प्रवाहित होती रहती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जैसे धुरंधर पंडित थे वैसे ही सरल और विनोदशील प्रकृति के थे। हिंदी कहानी का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में हिंदी की पहली कहानी लिखी गई। दूसरे दशक में कई प्रतिष्ठित कहानीकारों का उदय हुआ। इस दूसरे दशक में ही ऐसी कई कहानियां भी सामने आईं जो हिंदी की अमर कहानियां मानी जाती हैं। इसी दूसरे दशक की उपलब्धि चंद्रधर शर्मा गुलेरी और उनकी कहानियां हैं।
2: आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहानीकार गुलेरी जी के संदर्भ में जो कहा है वो सर्वथा उपयुक्त है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों की संख्या तो बहुत थोड़ी है, पर इन स्वल्प रचनाओं के बल पर वे साहित्य में अपूर्व गौरव के अधिकारी हुए हैं।
3: यूं तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, लेकिन निबंध विधा पर जबरदस्त पकड़ रखने वाले गुलेरी जी हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकार भी हैं। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके द्वारा रचित हिंदी की सर्वकालिक श्रेष्ठतम कहानियों में से एक उसने कहा था है। इसके अतिरिक्त उन्होंने दो अन्य कहानियां भी लिखी हैं, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। कथ्य और शिल्प की दृष्टि से ये कहानियां भी उल्लेखनीय हैं। इस परियोजना पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों में कथ्य और शिल्प एक समीक्षात्मक अध्ययन। इस परियोजना के अंतर्गत उनके द्वारा रचित उपर्युक्त तीन कहानियों के आधार पर साहित्य की इस सर्वाधिक प्रभावशाली और लोकप्रिय विधा के प्रणेता के रूप में गुलेरी जी की विशिष्टताओं को रेखांकित करना इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य है।
2: गुलेरी जी की कहानियां शाश्वत नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की दृष्टि से अद्वितीय है। उसने कहा था का प्रकाशन आज से एक शताब्दी पूर्व हुआ था। अपने युग के प्राय समस्त प्रतिष्ठित आदर्शों प्रेम और प्रेमी का आदर्श, युद्ध और वीरता का आदर्श, देशभक्ति और राजभक्ति का आदर्श, सेवा त्याग और आत्म बलिदान का आदर्श, इन सभी को गुलेरी जी ने अत्यंत कुशलता के साथ इस कालजयी रत्ना में चित्रांकित किया है। आदर्शवाद की दृष्टि से उनकी अन्य दोनों कहानियां भी उल्लेखनीय हैं। ये आदर्श आज के युवाओं का मार्गदर्शन करने में पूर्ण रूपेण सक्षम है। इन रचनाओं के पुनरावलोकन द्वारा युवा पीढ़ी की मानसिकता को सकारात्मक दिशा में विकसित करना इस शोध पत्र का विशिष्ट उद्देश्य है।
3: परियोजना के लिए हमने शोध प्रविधि की द्वितीयक पद्धति का प्रयोग किया है। तथ्यों के संग्रह के लिए अध्याय रचनाओं पर किए गए पूर्व शोध ग्रंथों, संबंधित पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं एवं इंटरनेट की मदद ली है। गुलेरी जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं सशक्त कथाकार थे। यद्यपि उनकी प्रसिद्धि का आधार उसने कहा था है, लेकिन उन्होंने दो और कहानियां भी लिखी हैं, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा।
2: सुखमय जीवन ये शीर्षक कहानी 1911 ईस्वी में भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी छद्म लेखन को आधार बनाकर लिखी गई एक रोचक कथा है। मात्र किताबी ज्ञान के बल पर जीवन के अनुभवों की आंच में तपे बिना लेखक बनने और हर पुस्तक को बिना विवेचन ब्रह्म वाक्य की तरह लेने वालों पर इस कहानी में सशक्त व्यंग किया गया है।
3: जयदेव शरण वर्मा ग्रेजुएट होने के बाद कुछ पुस्तकों से ज्ञान संग्रह करके सुखी वैवाहिक जीवन पर एक पुस्तक लिखते हैं। वे स्वयं अविवाहित हैं। वैवाहिक जीवन के बारे में उनका अनुभव नगण्य है। समालोचकों द्वारा कहानी की कटु आलोचना होती है और पुस्तक की मात्र 17 प्रतियां बिकती हैं। गुलाब राय वर्मा नाम के एक जागरूक ब्रह्म समाजी तथा उनकी बेटी कमला को यह पुस्तक बहुत पसंद आती है। उन्हें लगता है इस पुस्तक का लेखक बहुत ही अनुभवी होगा, जबकि गुलाब राय की पत्नी का विचार है कि पुस्तक सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखी गई है। संयोग से जयदेव शरण वर्मा और कमला की मुलाकात होती है। संक्षिप्त परिचय के बाद एक दिन जयदेव कमला के समक्ष प्रणय निवेदन करते हैं। कमला और उसके पिता उन्हें खूब फटकारते हैं, लेकिन जब जयदेव उन्हें बताता है कि वह अविवाहित है और पुस्तक उसने सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखी है, तो कमला और बाबू गुलाब राय पानी पानी हो जाते हैं और जयदेव के साथ मिलकर कमला का विवाह तय हो जाता है।
2: यह कहानी प्रारंभ से अंत तक छद्म लेखकों और छद्म पाठकों पर तीखा प्रहार करती है। नाटकीय स्थिति के द्वारा कहानी में व्यंग की अभिव्यंजना की गई है और संवाद काफी चुटीले हैं। कुछ समीक्षकों ने इस कहानी को अति नाटकीयता और असंभाव्यता के कारण सामान्य कोटि का माना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सुखमय जीवन में तो कहानी अच्छी तरह बन भी नहीं पाई, उसकी चरम घटना में विस्मय का अत्यंत अस्वाभाविक और अतिरंजित प्रयोग है, किंतु यदि इस कहानी को व्यंग रचना के रूप में देखा जाए तो अस्वाभाविकता और अतिरंजन स्वाभाविक और अनिवार्य तत्व बन जाते हैं।
3: बुद्धू का कांटा का प्रकाशन भी 1911 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी लेखक की व्यंग दृष्टि स्पष्ट है। यह कहानी एक प्रेम कथा है। इस कहानी में लेखक ने अपने आदर्शवादी चरित्रों की रचना की। कहानी का ढांचा उपन्यास का सा है, इसलिए वे रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी के पिता बाबूजी और इलाही का विस्तृत शब्द चित्र खींचते हैं। इस कहानी का एक अंश पनघट शीर्षक से अलग छपा बताया जाता है। रघुनाथ प्रयाग से पढ़कर आया है और जो गांव के तौर तरीकों से बिल्कुल अनभिज्ञ है। भागवंती कुएं में पानी भरने वाली महिलाओं के दल में एक ही हंसोड़, चुलबुली और बड़बोली किशोरी है। वह रघुनाथ के बुद्धूपन पर फप्तियां कसती है क्योंकि वह कुएं से पानी का लोटा भी नहीं खींच सकता और औरतों से बात करते करते पसीना पसीना होने लगता है। मजाक और फप्तियां सीमा से कुछ और आगे बढ़ जाती हैं और रघुनाथ बुरी तरह परास्त होता है।
2: फिर वही लड़की नदी किनारे उसे मिलती है और उसकी हर बात की नकल उतारती है। इस पर वह उसे पकड़ने के लिए उठता है और पैर रपट जाने से नदी में गिर पड़ता है। अब भागवंती उसे डूबने से बचाती है। इस भागदौड़ में भागवंती के पैर में कांटा चुभता है, जिसे रघुनाथ निकालता है और अपनी जेब में रख लेता है। संयोग से इसी लड़की के साथ माता पिता द्वारा रघुनाथ का संबंध निश्चित किया गया होता है। विवाह के फेरों के बाद जब वे दुशाले की ओट में एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों हतप्रभ रह जाते हैं। बाद में मिलन के समय भागवंती अपनी उद्दंडता के लिए पति रघुनाथ से क्षमा मांगती है और रघुनाथ रखे हुए कांटे को दिखाकर अपनी मनोभावना को प्रकट करता है। इस प्रकार कुल मिलाकर यह कहानी एक प्रेम कथा बन जाती है।
3: 1915 में प्रकाशित उसने कहा था, हिंदी की सर्वाधिक श्रेष्ठतम कहानी है। हिंदी में कहानी विधा का स्वतंत्र विकास इस कहानी से माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शामिल है। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि कर्तव्य, त्याग, मानवता और वचन पालन की अनुपम कथा है। कहानी में प्रेम एक आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में प्रकट हुआ है। गुलेरी जी तांगे वाले के संवाद में तथा सिपाहियों के वार्तालाप में हास्य, विनोद और जीवन की ताजगी पर उतना ही बल देते हैं जितना प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति पर।
2: यथार्थ चित्रण, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, सरल भाषा, प्रभावशाली संवाद।

0: यह कहानी प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति की है। आध्यात्मिक इस अर्थ में कि इसमें प्रेमी प्रेमिका के बीच शारीरिक संबंध की ऊष्मा नहीं है, बल्कि प्रेम एक ज्योति की तरह दोनों के हृदय में विद्यमान रहता है और वह अनुभूति इतनी सुखद, इतनी निर्मल है कि युद्ध की विभीषिका भी उसे भंग नहीं कर पाती।
1: अपनी पहली दो कहानियों में गुलेरी जी ने नायक और नायिका के बीच प्रेम की उत्पत्ति की सूचना स्पष्ट शब्दों में दे दी है, किंतु तीसरी कहानी में केवल संकेत दिए हैं, बाकी पाठक के अनुमान के लिए छोड़ दिया गया है। श्रेष्ठ कला होती भी सांकेतिकता में ही है। पहली दो कहानियों में घटनाओं को सीधे सादे कालानुक्रम में रखा गया है। उसने कहा था, शीर्षक से ही पाठक के मन में जिज्ञासा क्रमशः तीव्रतर होती जाती है, किंतु इसका समाधान कहानी के अंत में जाकर होता है।
0: अपनी तीन कहानियों के आधार पर ही गुलेरी जी ने हिंदी के विशिष्ट कहानीकार के रूप में ख्याति पाई। पुरानी पीढ़ी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, अमर नाथ झा, डॉक्टर बाबू राम सक्सेना, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र आदि से लेकर नई पीढ़ी के समर्थ आलोचकों तक उन्हें श्रेष्ठ कहानीकार स्वीकार किया है। जिस प्रकार गुलेरी जी की कहानियों में उनके अनुभव और जीवन दृष्टि में क्रमशः परिपक्वता आई है, उसी प्रकार उनकी कहानी कला में भी उनकी कहानियों में संयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है।
1: अपनी तीनों कहानियों में उन्होंने विकास के तीन सोपान पार किए हैं और हर सोपान पर इनकी कहानी कला परिपक्व होती गई। कथाकार गुलेरी जी की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी कहानी, उसने कहा था कि लोकप्रियता का सिक्का आज भी जमा हुआ है। गुलेरी जी विद्वान थे, उनकी विद्वत्ता की झलक उनकी कहानियों में साफ दिखाई देती है, लेकिन इस विद्वत्ता को उन्होंने ना तो अपने ऊपर हावी होने दिया ना ही अपनी कहानियों के ऊपर। इसका कारण यह था कि वे यथार्थ जीवन और उसके अनुभव से निर्मित हुई हैं। उनकी कहानियों में जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित जो सकारात्मक कथन हमें मिलते हैं, वे उपदेश नहीं हैं, ये जीवन के अनुभव हैं।
0: गुलेरी जी ने न केवल तीन कहानियां ही लिखी, बल्कि 1900 से 1922 तक प्रचुर साहित्य सृजन किया तथा अनेक हिंदी लेखकों का मार्गदर्शन भी किया, लेकिन अपनी केवल एक कहानी, उसने कहा था कि बल पर हिंदी साहित्यकाश के नक्षत्र बन गए। एक सर्वेक्षण के अनुसार उसने कहा था, न सिर्फ प्रेम कथाओं बल्कि हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में भी शामिल है। हिंदी साहित्य में उसने कहा था और गुलेरी जी को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है। आखिर ऐसा क्या था इस कहानी में जिसने इसके साथ साथ इसके लेखक को भी अमर कर दिया?
1: यह कहानी आज के प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह ना कोई प्रेम सप्ताह मनाती है और ना ही प्रेम दिवस, ना गुलाबों के आदान प्रदान का दिन और ना ही वादे किए जाने का, लेकिन इसके लिखे जाने के 100 साल बाद भी आज जब हिंदी की प्रेम कहानियों का जिक्र होता है तो अनेक लोगों की स्मृति में सबसे पहले इसी कहानी का नाम याद आता है।
0: किसी कहानी को अमर बनाने वाला सबसे बड़ा गुण होता है कि वह आपको बार बार पढ़ने के लिए उकसाए और बार बार मन में अटकी सी रह जाए। हर बार के पाठ में उसके नए अर्थ और संदर्भ खुले, हर बार यह लगे कि कुछ और समझने को शेष रह गया है। उसने कहा था, इस कसौटी पर 100% खरी उतरती है।
1: सामान्य तौर पर देखा जाए तो तीन विशेषताएं हैं, इसका शीर्षक, फलक और चरित्रों का गठन, जो उसने कहा था को अमर और कालजयी बनाने में अपनी अपनी तरह से योगदान देती है। इसके शीर्षक के साथ ही इसे जानने समझने का रोमांच भरने वाला रहस्य जुड़ा हुआ था। शीर्षक सीधे सीधे पाठकों को खींचता है और उनसे पुकार कर कहता है कि पढ़ो, किसने कहा था, किससे कहा था, कब कहा था, क्या कहा था। शीर्षक में वह नाटकीयता है जो पूरे संयोजन को मंच बना देती है।
0: युद्ध और प्रेम की इस कहानी के दो सिरे हैं। यह कहानी अमृतसर की गलियों की उस घटना के बाद सीधे प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर पहुंचती है। वहां के भारतीय सैनिकों, उनकी चूहलबाजियों, अपने वतन की याद और स्मृतियों के बीच
1: 5 खंडों और 25 वर्षों के लंबे अंतराल के युद्ध में

0: व्यक्ति ये कहानी विषय और अपने अद्भुत वर्णन में किसी उपन्यास ही है। प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम के तीन मूल उद्देश्य से जुड़ती हुई उसे अपने विषय बनाती हुई शाब्दिक विवरणों से और अधिक मनोविज्ञान को पढ़ते पकड़ते और उसके चित्रण में रमती हुई यह कहानी कहीं भी अपने विषय से भटकती नहीं है। सोच कर देखें तो प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं और उसके मूल में प्रेम ही है। कर्तव्य तो प्रेम का ही एक रूप होता है और देश प्रेम भी तो बड़े और वृहद अर्थों में प्रेम होता है। इसीलिए ये कहानी हर अर्थ में प्रेम कहानी है।
1: अपने सामान्य जीवन में सामान्य व्यक्ति भी अपने भीतर प्रेम का अक्षय स्रोत किस प्रकार दबाए रहता है, एक मामूली सी घटना व्यक्ति के अंतर्मन में फैलकर उसके जीवन को किस निर्णायक बिंदु पर ले जा सकती है, प्रेम की सात्विकता मनुष्य को कितने उच्च भूमि पर पहुंचा सकती है, यह इस कहानी में व्यक्त है। इसमें घटना ऋजु मार्ग पर नहीं चलती, यह वक्र मार्ग पर चलती है, यानी घटनाक्रम कालक्रम पर नहीं मनोभूमि के अनुसार व्यवस्थित है।
0: यही इस कहानी की अनन्य विशेषता और इसकी शाश्वत लोकप्रियता का कारण है। इसी संदर्भ में विजेंद्र स्नातक ने लिखा है, रचना शिल्प की दृष्टि से यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी।
1: जैनेन्द्र ने एक बार गुलेरी के विषय में कहा था, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी विलक्षण विद्वान थे, उनकी प्रतिभा बहुर्मुखी थी, उनमें गजब की जिंदा दिली थी और उनकी बोली भी अनोखी थी। गुलेरी जी न केवल विद्वत्ता में अपने समकालीन साहित्यकारों से ऊंचे ठहरते थे, अपितु एक दृष्टि से वह प्रेमचंद से भी ऊंचे साहित्यकार हैं। प्रेमचंद ने समसामायिक स्थितियों का चित्रण तो बहुत बढ़िया किया है, पर व्यक्ति मानस के चितेरे के रूप में गुलेरी का जोड़ नहीं है।
0: गुलेरी जी की तीनों कहानियों के पात्र साधारण है, लेकिन इन साधारण पात्रों को लेकर उन्होंने असाधारण सौंदर्य की सृष्टि की। जीवन की जिन स्थितियों के चित्र उन्होंने अपनी कहानियों में चित्रित किए वे आज भी नवीन हैं। साहित्य की विशिष्टता ही है क्षण क्षण नए सौंदर्य को प्रकट करने में, और जो तत्व किसी रचना को नित्य नया सौंदर्य प्रदान करती है वो है मौलिकता।
1: गुलेरी जी की तीनों कहानियां मौलिक होने के साथ साथ परिस्थितियों पर अपनी इच्छा शक्ति की विजय की रचनाएं हैं, इसलिए ये आज भी ताजगी और ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। ये कहानियां हिंदी कथा साहित्य की अनमोल विरासत हैं। हिंदी साहित्यकाश के जगमगाते नक्षत्रों के मध्य इन कालजयी कहानियों के रचनाकार के रूप में गुलेरी जी का यश ध्रुव तारे की तरह अटल रहेगा।
0: खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब की मान्यता वाले युग में गुलेरी जी खेल को शिक्षा का सशक्त माध्यम मानते थे। बाल विवाह के विरोध और स्त्री शिक्षा के समर्थन के साथ ही आज से 100 साल पहले उन्होंने बालक बालिकाओं के स्वस्थ चारित्र के विकास के लिए सहशिक्षा को आवश्यक माना था। ये सब आज हम शहरी जनों को इतिहास के रोचक प्रसंग लग सकते हैं, किंतु पूरे देश के संदर्भ में यहाँ फैले अशिक्षा और अंधविश्वास के माहौल में गुलेरी जी की बातें आज भी संगत और विचारणीय है। भारतवासियों की कमजोरियों का वे लगातार जिक्र करते रहते थे, विशेषकर सामाजिक राजनैतिक संदर्भों में। हमारे अधःपतन का एक कारण आपसी फूट है। जाति व्यवस्था भी हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। छुआछूत को वे सनातन धर्म के विरुद्ध मानते थे। उनके अनुसार उदारता, सौहार्द और मानवतावाद ही धर्म के प्राण तत्व होते हैं।
1: गुलेरी जी भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के समर्थक थे। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान तथा नैतिक मूल्यों की स्थापना दिखाई देती है। वे शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम मानते थे। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि ज्ञान, ईमानदारी, संवेदनशीलता और उत्कृष्ट कर्म ही किसी व्यक्ति को अमर बनाते हैं। हिंदी साहित्य सदैव उनका ऋणी रहेगा और आने वाली पीढ़ियां उनके साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी।
0: 12 सितंबर 1922 को काशी यानी वाराणसी में उनका निधन हो गया। वे मात्र 39 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहे, किंतु अपने अल्प जीवन में उन्होंने जो साहित्यिक विरासत छोड़ी वह अमूल्य है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी कहानी के इतिहास में सदैव अमर रहेंगे। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि साहित्य में महान बनने के लिए रचनाओं की संख्या नहीं, उनकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। आज भी उनका नाम हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकारों में आदर पूर्वक लिया जाता है।
1: चंद्रधर शर्मा गुलेरी भारतीय साहित्य के ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जिनकी रचनाएं समय की कसौटी पर सदैव खरी उतरी हैं। वे केवल कथाकार ही नहीं बल्कि महान विद्वान, इतिहासकार, भाषाविद और संस्कृति के संवाहक थे। उनकी अमर कहानी उसने कहा था आज भी पाठकों के हृदय को स्पर्श करती है और त्याग, प्रेम, वचन पालन तथा मानवता का संदेश देती है।
0: शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न सरस्वती पुत्र चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। इसी भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ हम आपसे अनुमति लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी एक नए एहसास के साथ। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन विनीता जैन, वाचक स्वर मैं नूपुर शर्मा
1: और मैं वेणु बालन,
0: प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद की। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: हिमाच्छादी हिमालय के प्रति स्वामी विवेकानंद का तीव्र आकर्षण था। वे हमेशा से चाहते थे कि हिमालय की किसी मनोरम एकांत स्थान में रहकर वे तपस्या और ध्यान करेंगे, परंतु विधि का विधान कुछ और ही था। जब भी वे हिमालय के किसी भी स्थान में जाते, कुछ न कुछ घटित होता और उन्हें वहां से वापस जाना पड़ता। इस बार दृढ़ निश्चय करके हिमालय की यात्रा की थी कि मनोकामना पूरी न होने तक वापस नहीं आएंगे।
1: अल्मोड़ा के निकट आकर स्वामी जी भूख और थकावट से ऐसे अवसन्न हो गए कि और नहीं चल पाने से धरती पर लेट गए। निरुपाय हो अखंडानंद पानी खोजने गए। सामने ही कब्रिस्तान था और उसके निकट ही एक फकीर झोपड़ी में रहते थे। स्वामी जी की अवस्था देखकर वे दया से अभिभूत हो गए। उन्होंने एक खीरा लाकर स्वामी जी को खाने को दिया। इसे खाकर उन्होंने काफी ताजगी का अनुभव किया। अमेरिका से लौटने के बाद अल्मोड़ा की एक जनसभा में उक्त फकीर को उपस्थित देखकर स्वामी जी ने कृतज्ञता भरे हृदय से उन्हें बुलाकर सबके समक्ष ये कहकर उनका परिचय दिया कि ये ही उनके प्राण रक्षक हैं। फकीर ने उन्हें नहीं पहचाना, किंतु स्वामी जी ने उन्हें ठीक ठीक पहचाना था और प्रतिदिन स्वरूप उन्हें कुछ अर्थदान भी दिया था।
0: हिमालय भ्रमण स्वामी जी के लिए सदा ही शारीरिक कष्टदायक रहा था। रास्ते की थकान तो थी ही, भोजन और शयन का भी कोई ठिकाना नहीं था अथवा अभाव था। परंतु हिमालय की सुंदरता, गंभीरता और शांति के दर्शन से वे प्रफुल्लित हो उठते, रास्ते की थकान भूलकर नई ऊर्जा से भर जाते।
1: अल्मोड़ा पहुंचने पर अखंडानंद उन्हें अम्बादत्त के बगीचे में ले गए और उन्हें वहां रखकर अल्मोड़ा में अन्यत्र तपस्यारत स्वामी सारदानंद और कृपानंद नामक अन्य दो गुरु भाइयों को सूचना देने गए। सूचना मिलते ही ये दोनों अम्बादत्त के बगीचे को चले। उन लोगों ने थोड़ी ही दूर आगे जाने पर देखा कि स्वामी जी स्वयं उन लोगों की ओर आ रहे हैं। तब सभी एक साथ हो अपने आश्रय दाता लाला बद्री शाह के घर पहुँचे। शाह जी ने उन लोगों का सादर स्वागत किया।
0: शाह जी के घर वे खूब आनंद पूर्वक रहते थे तथा उनकी श्रद्धा भक्ति और अतिथि परायणता देखकर उन्होंने कहा था, ऐसा भक्त संसार में विरल है। शाह जी के घर पर कई दिन बिताकर गुरु भ्रातागण गढ़वाल जाने के लिए तैयार होते हैं। उसी समय कलकत्ते से तार द्वारा समाचार आया कि स्वामी जी की एक बहन ने आत्महत्या कर ली है। यथा समय इस दारुण घटना के विशेष विवरण से युक्त एक पत्र भी आया। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस मर्मांतक वृत्तांत को पढ़कर स्वामी जी का स्वभावतः स्नेह प्रवण मन दुख से निढाल हो गया।
1: इस अत्यंत विषादमय घटना के माध्यम से भारतीय नारी जीवन के वेदनापूर्ण पक्ष का एक और प्रत्यक्ष प्रमाण उन्होंने पाया एवं इसके प्रतिकार के लिए उनके प्राण तड़प उठे। परंतु तत्काल वे कर्म क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार नहीं थे। हृदय का असहाय दुख उन्हें हिमालय के निर्जन तर क्षेत्र में और भी अधिक जोर से धकेल कर ले चला। उन्होंने 5 सितंबर को अल्मोड़ा से बद्री नारायण की ओर यात्रा की। साथ में चले सरादानंद, अखंडानंद और कृपानंद तथा सामान ढोने वाला एक कुली।
0: यात्रा के दौरान स्वामी जी और अखंडानंद जी फिर बीमार पड़ गए। कमजोर तो दोनों पहले ही हो गए थे, अब ये पैदल चलना, वो भी पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर, इस सब ने उन्हें और भी घायल कर दिया। फिर भी वे केदार बद्री के रास्ते चल पड़े। पर पास आने पर उन्हें मालूम हुआ कि इस क्षेत्र में अकाल पड़ा है और सरकार ने आगे जाने का रास्ता बंद कर दिया है। मजबूरन उन लोगों को तीर्थ दर्शन की इच्छा त्याग कर दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ा और इसी रास्ते वे कर्ण प्रयाण पहुंचे। उसके बाद उनका अगला पड़ाव था रुद्रप्रयाग। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखकर स्वामी जी के बचपन से संजोया सपना पूरा हो गया।
1: वहाँ वे एक धर्मशाला में रुके। अखंडानंद और स्वामी जी की तबीयत यहाँ ज्यादा बिगड़ गई। सौभाग्यवश वहाँ गढ़वाल के सदर अमीन श्री बद्रीदेव जोशी से उन लोगों की भेंट हुई। जोशी जी आयुर्वेद चिकित्सक भी थे। उन्होंने उन्हें दवाइयां दी और कुछ स्वस्थ होने पर डांडी के द्वारा यानी पहाड़ी पालकी के द्वारा 9 मील दूर श्रीनगर भेज दिया।
0: श्रीनगर में ये लोग एक कुटिया में रहे। लगभग एक माह तक सभी वहां रहे और आराम मिलने पर स्वास्थ्य भी ठीक रहा। फिर शुरू हुआ चल पड़ने का सिलसिला। उन दिनों स्वामी जी को भागीरथी दर्शन के लिए व्याकुल देखकर सबने इसके बाद टिहरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में भिक्षा नहीं मिली क्योंकि रास्ता निर्जन और वनाच्छादित था। संध्या को थके शरीर से गांव में पहुंचकर उन लोगों ने एक चबूतरे पर आसन लगाया और स्वामी जी के धूम्रपान के लिए अखंडानंद आग लाने गए, किंतु किसी ग्रामवासी ने आग नहीं दी। साधुगण सोचने लगे कि जहां एक साधारण आग तक नहीं मिलती, वैसे अतिथि विमुख गांव में भिक्षा कैसे मिलेगी। तभी साधुओं में प्रचलित इस क्षेत्र के विषय में एक कहावत उन लोगों को याद हो आई, गढ़वाली सरीखा दाता नहीं, लट्ठा बगैर देता नहीं।
1: वहां ऐसे ही मजाक में गंभीर अखंडानंद चिल्लाने लगे, ए प्रधान, रोटी ले आओ, लकड़ी ले आओ। आश्चर्य कि उसी क्षण ग्रामवासी श्रद्धा पूर्वक चावल आदि लेकर हाजिर हुए, परंतु साधुओं ने कहा कि वे रसोई नहीं पका सकेंगे, तैयार रोटी आदि चाहिए। तुरंत ग्रामवासियों ने आनंद पूर्वक भोजन प्रस्तुत कर दिया तथा काफी रात तक बैठकर साधुओं से ग्रामांचल की रीति नीति एवं सुख दुख आदि की बातों की चर्चा की। साधुगण भी उन लोगों के सरल व्यवहार एवं सेवा परायणता से मुग्ध हो गए।
0: टिहरी पहुंचने पर निर्जन गंगा तट पर साधुओं के लिए निर्मित दो कमरे मिले। श्रीनगर की भांति यहाँ भी वे लोग भिक्षा करके जीवन यापन करते तथा शास्त्र विवेचन और ध्यान धारणा में दिन व्यतीत करते। यहाँ स्वनाम धन्य पंडित हरप्रसाद शास्त्री और श्री रघुनाथ भट्टाचार्य से स्वामी जी का परिचय हुआ। भट्टाचार्य महोदय टिहरी राज्य के दीवान थे। उन्होंने गणेश प्रयाग में गंगा और विलांगना नदियों के संगम पर स्वामी जी की साधना के लिए एक कुटी बना दी थी, किंतु स्वामी जी वहां रहने का सुयोग प्राप्त नहीं कर सके।
1: अखंडानंद जी कुछ दिनों तक सर्दी, खांसी, बुखार आदि से पीड़ित रहे थे। अब स्थानीय डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ब्रोंकाइटिस होने की संभावना है। पहाड़ की ठंडी जलवायु से व्याधि और बढ़ जाएगी, खासकर शीत ऋतु आने ही वाली है, इसलिए वे लोग जितनी जल्दी नीचे उतर जाएं उतना ही शुभ है। इन सब शंकापूर्ण बातों को सुनकर और गुरु भ्राता के कल्याण की बात सोचकर स्वामी जी ने अपनी तपस्या के संकल्प का परित्याग कर प्रायः 15-20 दिनों तक टिहरी में रहने के बाद देहरादून जाने का निश्चय किया। यात्रा के पूर्व स्वामी जी ने दीवान जी से मिलकर सारी बातें समझा दी और बता दिया कि भविष्य में फिर अवकाश मिलने पर वे उनकी सुव्यवस्था का उपयोग करेंगे। दीवान जी ने सारी बातें सुनकर अखंडानंद की चिकित्सा के लिए देहरादून के सिविल सर्जन के नाम एक पत्र लिख कर दिया और स्वामी जी एवं स्वामी अखंडानंद को मसूरी तक ले जाने के लिए 2 घोड़ों की व्यवस्था कर दी। इसके अतिरिक्त उन लोगों के पथ्य की अन्यान्य व्यवस्था भी कर दी।
0: उसके बाद सभी देहरादून को चले। यहाँ भी स्वामी जी के जीवन की उसी पुरानी बात की पुनरावृत्ति हम देखते हैं। वे जब भी तपस्या में डूब जाना चाहते तभी विघ्न उपस्थित हो जाता। इसी से स्वामी अखंडानंद ने एक अवसर पर लिखा था, मैंने स्वामी जी को असंख्य बार ये कहते सुना है कि जब भी उन्होंने निर्जन नीरव साधना में लीन हो जाने का प्रयास किया है, तभी घटनाक्रम के दबाव में पड़कर उन्हें साधना छोड़नी पड़ी है। वे जानते थे कि श्री रामकृष्ण ने उन पर गुरु भ्राताओं के संरक्षण का जो भार सौंपा है, उस दायित्व पालन की तुलना में उनकी तपस्या भी तुच्छ है।
1: मसूरी से नीचे उतरकर जब वे राजपुर होकर जा रहे थे, तब दूर में एक साधु को देखकर उन्हें लगा कि ये उन्हीं लोगों के गुरु भ्राता स्वामी तुरियानंद होंगे। विश्वास पूर्वक उन लोगों ने उन्हें जोरों से नाम लेकर पुकारा तथा उनके समीप आने पर देखा, ये तो सचमुच ही स्वामी तुरियानंद है। ये उन दिनों राजपुर में तपस्यारत थे। अप्रत्याशित रूप से दीर्घकाल के उपरांत भेंट होने से सभी आनंदित हुए और कुशल मंगल आदि पूछने के बाद अनेक प्रकार की वार्ताओं में डूब गए। उस समय नवरात्र का मात्र 1 दिन बचा था।
0: स्वामी तुरियानंद सहित सबने यथासंभव शीघ्र देहरादून आकर सर्वप्रथम सिविल सर्जन श्री मैक्लारेन से मिलकर रघुनाथ बाबू द्वारा उनके नाम दिया गया परिचय पत्र उन्हें दिया। पत्र पढ़कर और स्वामी जी से धर्म के संबंध में बातचीत कर डॉक्टर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े यत्न के साथ स्वामी अखंडानंद की छाती की परीक्षा कर कहा, अब किसी भी स्थिति में पहाड़ पर नहीं चढ़िएगा, बहुत दिनों तक समतल प्रदेश में रहकर भली भांति चिकित्सा कराइए।
1: अब समस्या ये खड़ी हुई कि देहरादून में ठहरेंगे कहाँ, वहाँ कोई परिचित तो है नहीं। स्वामी जी स्वयं घर घर जाकर आश्रय की भीख मांगने लगे, किंतु कहीं जगह नहीं मिली। फिर वे जगह खोजते रहे। बहुत प्रयास करने के बाद अंत में साधुओं ने एक नव निर्मित एवं अधूरे बने मकान में आश्रय पाया, किंतु जमीन पर सोना अनुपयुक्त था और खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए उन लोगों ने खाट पर सोने और भिक्षात्र मात्र से जीवन यापन करने का निश्चय किया, किंतु कमरा इतना सीलन भरा था कि रोगी के लिए वहां रहना हानिकर था। कम से कम अखंडानंद के लिए दूसरा आवास चाहिए। ऐसी विकट समस्या के सामने होने पर स्वामी जी यहाँ वहाँ घूम रहे थे। ऐसे समय दैव योग से उनके जनरल असेंबली कॉलेज के सहपाठी हृदय बाबू नामक एक सज्जन से उनकी भेंट हुई। वे एक स्थानीय विद्यालय के शिक्षक थे।
0: वे अखंडानंद का भार लेने को राजी हुए। तदनुसार अखंडानंद के वहाँ जाने पर भी बचपन से ही एक दूसरे प्रकार के परिवेश में पाले पोसे जाने के कारण उनके लिए इस घर का अभिनव आचार व्यवहार आदि असह हो उठे, अतः वे पहले वाले मकान में ही लौट आए। स्वामी जी ने सारी बातें सुनकर कहा, ठीक किया, परंतु वहां रोगी को रखा तो नहीं जा सकता था, अतः वे फिर मकान ढूंढने निकले और पंडित आनंद नारायण नामक एक कश्मीरी जो स्थानीय वकील थे उनकी सहायता उन्हें मिली। उन्होंने एक छोटे से किराए के मकान में अखंडानंद को रहने दिया और उनके लिए गर्म कपड़े तथा पथ्य आदि की व्यवस्था की।
1: इस प्रकार देहरादून में 3 सप्ताह व्यतीत करने और अखंडानंद की बीमारी समाप्त होने के बाद स्वामी जी ने उन्हें इलाहाबाद में एक रात्रि में एक मित्र के घर चले जाने का परामर्श दिया तथा कृपानंद के ऊपर उनकी सेवा का भार देकर अन्य 2 गुरु भ्राताओं शारदानंद और तुरियानंद के साथ ऋषिकेश की यात्रा की।
0: ऋषिकेश में चंडेश्वर महादेव के मंदिर के सन्निकट पर्ण कुटीर में आश्रय लेकर भिक्षात्र से उदर पालन और गंगावारी से प्यास मिटाते हुए साधुगण हिमालय के पदप्रांत में स्थित इस सुप्राचीन तपस्या भूमि में भगवत चिंतन में निमग्न हो गए। स्वामी जी की तपस्या कामना ने मानो तृप्ति का मार्ग ढूंढ लिया।
1: सभी विषयों में अनुकूल परिवेश होने पर भी ऋषिकेश उन दिनों मलेरिया आदि रोगों की विचरण भूमि था और समीप में चिकित्सा की व्यवस्था भी नहीं थी। अतएव दीर्घकाल तक वहां रहकर तपस्या करने की स्वामी जी की जो आकांक्षा थी उसमें शीघ्र ही बाधा आ खड़ी हुई। वे शीघ्र ही ज्वर ग्रस्त हो गए और वो बढ़कर विकार में परिणत हो गया। दुर्बलता बढ़ जाने से उनकी चलने फिरने की शक्ति भी कम हो गई। हालत ऐसी हो गई कि जमीन पर बिछे एक कंबल पे वे संज्ञाहीन अवस्था में पड़े रहे। निरुपाय गुरु भ्राताओं का मन तब अत्यंत विषादमय और निराशापूर्ण हो गया। कई कोसों तक कोई चिकित्सक नहीं था जिससे सहायता करने का अनुरोध किया जा सके और ऐसे रोगी को दूर ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। इसी से चिकित्सा के अभाव में एक दिन जीवन संदेहास्पद हो गया। उस दिन बार बार पसीना चलने के बाद शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया और नाड़ी छूट गई, मानो अंतिम घड़ी आ गई हो। ऐसे आपदा काल में अनन्य मन से मधुसूदन का नाम स्मरण कर रहे थे, तभी पर्णकुटी के द्वार पर अचानक पांव की आहट सुनकर साधुओं ने आश्चर्यचकित होकर देखा, एक साधु खड़े हैं।
0: उन लोगों के सादर आमंत्रण पर साधु ने कमरे में प्रवेश करते ही अवस्था भांप ली और झोले से थोड़ा मधु और पिप्पल का चूर्ण लेकर उसे मिलाकर स्वामी जी को धीरे धीरे खिला दिया। इससे आश्चर्यकारी फल हुआ। स्वामी जी ने थोड़ी ही देर में आंखें खोलकर अस्पष्ट स्वरों में कुछ कहना चाहा। एक गुरु भ्राता ने उनके मुंह के निकट कान लगाकर उनके द्वारा अध्योच्चारित 1-2 बातें सुनी, किंतु कुछ समझ नहीं पाए। जो हो, वे धीरे धीरे शक्ति प्राप्त करने लगे।
1: स्वामी जी की जीवन रक्षा हो जाने के बावजूद उसी समय अन्यत्र जाना असंभव समझकर गुरु भ्रातागण उनके साथ कुछ दिन और ऋषिकेश में ही रह गए। तत्पश्चात जब प्रतीत हुआ कि वे रास्ते की थकान झेल सकेंगे, तब उन्हें हरिद्वार ले गए। वहां आकर स्वामी शारदानंद जिस झोपड़ी में रहकर तपस्या करते थे वहीं वे सब ठहरे। इसी बीच टिहरी के दीवान पूर्व परिचित श्री रघुनाथ भट्टाचार्य टिहरी राज्य के राजा के साथ अजमेर के मेयो कॉलेज जाने के मार्ग में हरिद्वार आए। वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि एक विद्वान साधु वहां बीमार है। दर्शन करने आने पर उन्होंने पहचाना कि यही उनके पूर्व दृष्ट स्वामी जी हैं। उन्होंने झोपड़ी की मरम्मत के लिए कुछ रुपए दिए और दिल्ली जाकर एक हकीम से चिकित्सा कराने के लिए हकीम के नाम एक परिचय पत्र भी दिया। फलतः झोपड़ी की मरम्मत हुई। स्वामी ब्रह्मानंद उस समय कनखल में तपस्यारत थे। उनकी भी सभी से मुलाकात हुई।
0: हरिद्वार से वे सब सहारपुर गए। वहाँ श्रीयुत बंकू बिहारी चट्टोपाध्याय से उन लोगों ने भेंट की। श्री चट्टोपाध्याय ने ये परामर्श दिया कि मेरठ जाने पर स्वामी जी हर प्रकार की सुविधा पा सकते हैं। इधर स्वामी ब्रह्मानंद बहुत दिनों से स्वामी अखंडानंद से नहीं मिल पाने के कारण मेरठ जाकर उन्हें देखने के लिए विशेष उत्सुक हुए। इसी से दोनों आकर्षणों में पड़कर स्वामी जी ने अन्य सभी के साथ मेरठ जाना ही श्रेयस्कर समझा। अमेरिका जाने के पूर्व स्वामी जी का हिमालय वास इस प्रकार ऋषिकेश छोड़ने के साथ ही समाप्त हो गया। स्वामी जी के साथ हिमालय भ्रमण की कथा के वर्णन के प्रसंग में स्वामी अखंडानंद ने लिखा है, स्वामी जी और मैं चल रहे हैं। एक स्थान पर देखता हूं कि एक साधु ध्यान करने बैठा है। अच्छी तरह कपड़े से सिर तक ढका है और जोरों से नाक बज रही है। उसे इस तरह खर्राटे मारकर सोते देख स्वामी जी हंस पड़े। उन्होंने कहा,

0: इसे देखो, इसे जरा धक्का तो दो, ध्यान लगाने का बहाना बनाकर सो रहा है, ये तो हद हुई।
1: अखंडानंद जी ने उसे हल्का सा धक्का देकर जगाया और उसके सिर पर से कपड़ा हटा दिया। वो हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ।
2: कौन हो तुम लोग?
0: हम सन्यासी हैं।
2: सन्यासी होकर दूसरे सन्यासी का ध्यान भंग करते हो? क्यों करते हो? कहाँ के सन्यासी हो तुम लोग?
0: हम स्वर्ग के सन्यासी हैं। भगवान बहुत देर से तुम्हें सोते हुए देख रहे थे, तुम्हारे खर्राटे सुन रहे थे, इसलिए हमें भेजा है तुम्हें जगाने के लिए।
2: माफ करना बाबा, थका हुआ था ना, इसीलिए सो गया था।
0: तो सो ना, कौन मना कर रहा है? सन्यासियों का सोना मना है क्या? आराम से लेटकर सो जाओ, ध्यान करने का ढोंग क्यों करते हो?
2: जी बाबा, धन्यवाद।
0: सो भाई, ध्यान के समय ध्यान करो और विश्राम के समय विश्राम करो।
3: और दोनों हंसते हंसते आगे बढ़ गए। एक और प्रसंग की जानकारी हमें स्वामी जी के लेखों में मिलती है। वे लिखते हैं,
0: मैं एक बार हिमालय का भ्रमण कर रहा था और सामने फैला था लंबा रास्ता। हम लोगों की तरह गरीब साधुओं के लिए तो कोई और वाहन मिलता नहीं है, इसलिए सारा रास्ता हम लोगों को पांव पैदल ही चलना पड़ता था। हम लोगों के साथ एक वृद्ध साधु थे। पहाड़ी रास्ते की चढ़ाई उतराई कर 100 मीलों तक वे चले थे। वृद्ध ने एक चढ़ाई पर चढ़कर जब देखा कि सामने तब भी कई बार चढ़ना होगा, तब निराशा से भरकर वे कह उठे, महाराज इतना लंबा रास्ता कैसे जाऊंगा? मैं तो और चल ही नहीं पाता हूं, मेरी छाती फट जाएगी। मैंने उनसे कहा, अपने पांव की ओर देखिए। तो उनके वैसा ही करने पर मैंने कहा, पीछे आपके पांव के नीचे जो पथ पड़ा हुआ है, आप उसे रौंद आए हैं, और सामने जो पथ देख रहे हैं वो भी तो एक पथ ही है, वो पथ भी शीघ्र ही आपके पांव से मर्दित होगा।
3: स्वामी जी की बात से उस वृद्ध की निराशा समाप्त तो हो गई और वे फिर पथ पर बढ़ चले। एक और साधु का दर्शन उन्हें हुआ था, जिसकी सौम्य मूर्ति और पवित्र आचार व्यवहार देखते ही वे समझ गए थे कि ये साधु अनुभूति के क्षेत्र में निश्चय ही बहुत ऊपर उठे हुए हैं। फिर उनसे वार्तालाप करने पर उन्हें जिस तथ्य का ज्ञान हुआ, उससे उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। उन्हें ज्ञात हुआ कि यही व्यक्ति एक बार पवहारी बाबा का सामान चुराकर जब भाग रहा था, उसी समय पवहारी बाबा जाग गए थे और चोर सामान फेंककर भागने लगा। तब पवहारी बाबा ने उस सामान को लेकर उस चोर का पीछा किया और बहुत दूर जाने पर उसे पकड़कर उसके हाथों में सारा सामान सौंपकर वे लौट आए।
1: स्वामी जी ने पहले ही गाजीपुर में इस घटना के विषय में सुना था। अब सामने बैठे साधु के अपने मुंह से ये वृत्तांत सुनकर तथा किसी महापुरुष के संस्पर्श से मनुष्य का मन किस प्रकार बदल जाता है, किस प्रकार एक चोर महापुरुष में परिणत हो जाता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर उनका चित्त एक महापुरुष के महात्म्य के प्रति और मानव मन के अंतर्निहित देवत्व के प्रति श्रद्धा से भर गया। साधु ने कहा,
4: बाबा जी ने जब मुझे नारायण ज्ञान से उदारता पूर्वक अपना सर्वस्व सौंप दिया, तब मैं अपनी भूल और हीनता समझ सका और तब से सांसारिक ऐश्वर्य का त्याग कर पारमार्थिक ऐश्वर्य की खोज में घूमने लगा।
1: बहुत रात तक इस साधु के साथ स्वामी जी की बातचीत हुई और वे निश्चय पूर्वक समझ गए कि इस व्यक्ति को सत्य की प्राप्ति हो गई है। इसके पश्चात भी कई दिनों तक उनके मन में ये आश्चर्यपूर्ण घटना बारंबार उभर आया करती थी। वस्तुतः आजीवन उन्होंने इसे याद रखा था। हिमालय भ्रमण के क्रम में किसी एक समय स्वामी जी एक तिब्बती परिवार में रह रहे थे। उस देश की प्रथा के अनुसार उन लोगों की नारियां एक ही समय में अनेक स्वामियों की पत्नी हो सकती हैं। उसी प्रथा के अनुसार उस परिवार के 6 भाइयों की केवल एक ही पत्नी थी। स्वामी जी ने स्वभावतः इस विभत्स आचार की निंदा की थी और इसके विरुद्ध अनेक तर्क भी प्रस्तुत किए थे, परंतु जिस भाई से बातचीत हो रही थी उसने चिढ़कर प्रतिप्रश्न किया,
3: स्वामी जी साधु होकर भी आप दूसरों को कैसे ऐसा स्वार्थ परायण होने को कहते हैं? ऐसी वस्तु का केवल मैं ही भोग करूंगा, दूसरा कोई नहीं, ऐसा विचार क्या निंदनीय नहीं है? हम क्यों ऐसे स्वार्थ परायण होते जाएंगे कि हर व्यक्ति एक ही स्त्री रखेगा? सभी भाई सभी वस्तु समान भाव से पाएंगे, यहाँ तक कि स्त्री तक। ऐसा युक्तिहीन सारहीन लगने पर भी स्वामी जी ऐसी सरलता देखकर मुग्ध हो गए और उन्होंने समझा कि प्रत्येक कार्य के अच्छे बुरे दो पक्ष हैं। सरल पहाड़ी की बात के फल स्वरूप उन्होंने इसके बाद प्रत्येक सामाजिक आचार व्यवहार को उनके पक्षों से परख कर देखने की आवश्यकता हृदयंगम कर ली थी। हिमालय छोड़ने के बाद साधु वृंद हरिद्वार और महापुरुष होते हुए मेरठ पहुंचे और डॉक्टर श्रैलोक्यनाथ घोष के घर स्वामी अखंडानंद को देखने गए। स्वामी जी उस समय अत्यंत दुबले हो गए थे। अखंडानंद उन्हें देखकर चौंक पड़े। तय हुआ कि स्वामी जी वहां रहकर इलाज करवाएंगे। मेरठ में और गुरु भाई भी आ पहुंचे। सेठ जी का बगीचा नामक घर जहां वे सब ठहरे थे मानो बराहनगर मठ में बदल गया।
1: धीरे धीरे विवेकानंद को लगने लगा कि गुरु भाईगण उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही निर्भरशील होते जा रहे हैं। उन्हें लगा कि उनके साथ ज्यादा दिन रहने पर वे सब उनके मुखापेक्षी हो जाएंगे और उन्होंने उन सब से अलग होने का मन बना लिया। उन्हें ये माया का बंधन तोड़ना था। सन 1891 के जनवरी महीने में वे अकेले मेरठ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गंगाधर ने दोषारोप किया,
5: मुझे छोड़कर जा रहे हो? तुम्हारे ही कहने पर मैं मध्य एशिया की यात्रा स्थगित कर बराहनगर लौट आया था।
0: मैं जब भी तपस्या करने की सोचता हूँ तभी गुरुदेव कोई ना कोई बाधा खड़ी कर देते हैं। इस बार मैं अकेले निकलूंगा, कहाँ रहूंगा किसी को नहीं बताऊंगा।
5: तुम यदि पाताल में भी जाओगे ना तो वहां से भी अगर तुम्हें ढूंढकर बाहर ना निकाल सका तो मेरा नाम गंगाधर नहीं

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

सुंदरी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं। इसी के साथ अब ये सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।